0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

श्रोताओं, ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। ग्राम परसेठा जिला फतेहपुर यूपी से हैं रोहित यादव और इनका बेटा पंकज यादव, अंगद, आयुष, आर्यन, आदर्श और हार्दिक यादव। चिनौरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हैं बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा और इनके सभी साथी। ग्राम कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से हैं प्रवीण हागोने, योगिता हागोने, सुश्री प्रियली, पार्थ हागोने और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। शिवरामनगर बसमत रोड परभणी महाराष्ट्र से हैं रणजीत गारवेकर, कंचन कारेगांवकर, सृष्टि कारेगांवकर और समरजीत कारेगांवकर का। मोताला महाराष्ट्र से हैं विजय सुरलरकर, रतनमाला, आरती सुरलरकर। कस्बा उगेती बदायूं से हैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता और कार्तिक गुप्ता का। गंज जुंडवारा से हैं शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान और अनु खान का। सदर बाजार कुरावली से हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से हैं मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकरलाल गगराड़े, वनीता गगराड़े और मोहम्मद हसन हसनैन पवार का। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हैं लालगुरी गोस्वामी, हेमलता हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हैं सतीश रघुवंशी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। सांगली जिले के जत शहर से हैं अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला, सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख का। कटरा चांद का पुराना शहर बरेली से हैं जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि मौर्य और मानवी मौर्य। सालार पहलगाम कश्मीर से हैं पीरजादा मिराज उद्दीन, प्रेम नगर हवाओं से। और ये कमेंट हमारे पास पहुंचा है गांव हीरावली फाजिलका पंजाब से हैं सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का। बाबा कुटीर रायगढ़ से हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान और डुग्गू का। रामचंद्र माखीजा का ये कमेंट हम तक पहुंचा है। जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हैं अशोक बब्बर, पवन, राजेश, अजय, राहुल और मनु। सालपुरा जिला बारा से हैं सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव का। अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से हैं चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर का। साथी हैं जयपाल यादव। बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से हैं ममता बमारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू का। बी शहर महाराष्ट्र से हैं पोपट राव कुलथे, हनुमंत कुलथे, प्रथमेश कुलथे और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। रावर करनाल से हैं विनोद लखनपाल, कोल सिटी बरकाकाना से हैं अफजाल ताज। कोल सिटी बरकाकाना से हैं अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम और निप्पी सहानी। एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोध का। गांधी चौक पर रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर विरग, जयतेक विरग और मीका विरग। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।

लेवई छत्तीसगढ़ से हैं गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी का। ग्राम चांदुर विश्वास जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से हैं किशोर वानखेड़े, उषा वानखेड़े, विशाल वानखेड़े। ग्राम राजूर तहसील मोताला महाराष्ट्र से हैं राज गवई, राजवीर गवई। छत्रपति संभाजीनगर सुरावाड़ी औरंगाबाद से हैं सुषमा बोरगांवकर, प्रकाश बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद विराज, अंशुमन ओवी। सनावत से हैं शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना। कस्बा गुन्नौर यूपी से हैं फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर। मलकापुर से हैं नारायण इंगले, सोपान ताहिड़े, आशीष मुहकर। अडार नानगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं माखन वर्मा चांदनी और राहुल गोपी वर्मा का। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। ग्राम पंचायत बाकरगंज तहसील फरीदपुर से हैं मास्टर सुनील बाबू, शिवम सिंह, अभय मीत, भगवान दे, स्वाति सिंह, तानिया और इनके सभी दोस्त। गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से हैं लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षा लोखंडे का। ओखला संगम बिहार दिल्ली से हैं रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता। गांव पावो पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हैं दिनेश सिंह रावत, सिद्धार्थ और हनी सिंह। गणेशवाड़ी कोल्हापुर से हैं संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार का। शाहूनगर परिते से हैं बाजीराव ढेरे, संगीता और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। गांव खोखरा वाली श्रीगंगानगर से हैं विनोद वारासा, विशाल वारासा, विकास वारासा, रोशनी वारासा और शगुन वारासा। पंचकुला सेक्टर 9 से हैं आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे ढिंगरा और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। आप सभी ने पसंद किया है फिल्म डार्लिंग डार्लिंग का ये गीत। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

0: का टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान, पीएम किसान।
2: माननीय प्रधानमंत्री

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को। जी हाँ, और आप हमें कमेंट करते हैं फेसबुक के माध्यम से, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो आप सभी लोगों की फरमाइश पूरी की जा सके। और इसी क्रम में, कमेंट के क्रम में, ये कमेंट हमारे पास पहुँचा है आप सभी लोगों का। बहादुरगढ़ हरियाणा से हैं महेश अग्रवाल और मीना अग्रवाल, साथ ही इनके परिवार के सभी सदस्य। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुविहा नेवादा। जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। भाटापार छत्तीसगढ़ से हैं हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल साहू और चंपा साहू। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। बीड शहर महाराष्ट्र से हैं नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय ट्यूबल और पी बी कुलथे का। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगिसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुनिशा शबिस्ता, मोहम्मद नसीब पलक, लुबना और यश मंसूरी का। जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हैं रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस और रेहान। जमानिया गाजीपुर से हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। बरबट बकाल बुलडाणा से हैं नारायण, कमल हागे, दिव्या हागे और जय हागे का। नई मस्जिद करेली से हैं इंतजार अंसारी, बेटी हिब्जा नूरी, नथू नन्हे, सूरज मौर्य, असीर अंसारी, प्यारी हिना। शाहूनगर यवतमाल से हैं राहुल मनवर, सल्ला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी का। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर यूपी से हैं अनिश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकाश आकाश राजभर का। कंवर कॉलोनी बड़वाहा जिला खरगोन एमपी से हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली। बेरटी मध्य प्रदेश से हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर। मणिनाथ बरेली सिटी से हैं डॉक्टर अद्भुत कुमार दीक्षित और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा। मजनू का टिल्ला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सतना एमपी से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। मजनू का टिल्ला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। वीरमगांव गुजरात से हैं अजीत कुमार भवसार, प्रमीला भवसार। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव। मोहाली पंजाब से हैं बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। राजपुर मध्य प्रदेश से हैं एकता अस्मिता, सौरभ कुणाल, घिसु दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा और नेहा का। साथी है एकता। पटेल नगर मुलोट पंजाब से हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू का। किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहन दास, आशा देवी। बाबूदीन मेरठ कैंट से हैं। श्रोताओं, कोशिश किया कीजिए जब आप हमें एक बार कमेंट कर देते हैं तो दोबारा कमेंट ना करें।

पुरानी भिलाई 314 छत्तीसगढ़ से हैं नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुद्दीन सिद्दीकी, जिशान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। ग्राम देगांव तहसील पूना महाराष्ट्र से हैं सदाशिव थोरात, कविता थोरात, श्रेया थोरात और बंटी थोरात। जनकपुरी नई दिल्ली से हैं संगीता सलूजा और प्रदीप सलूजा। उदयपुर राजस्थान से हैं बाबू भाई, भारती देवी, रमेश नाचानी और विनीत नाचानी का। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर, लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू। पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त, चेतन नाहटा। लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम सतीश, मुकेश कुमार साहू और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। शास्त्री नगर बीड शहर से हैं किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल का। आप सभी ने पसंद किया है नूरी फिल्म का ये गीत।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

श्रोताओं, ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से हैं, रुपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश संघई और प्रतेश संघई, साथ ही इनके परिवार के सभी सदस्य और साथ ही इनके दोस्त। वडिंग खेड़ा पंजाब से हैं, मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। उत्तम नगर दिल्ली से हैं, कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, गीतिका निशु। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से हैं, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्भी और बेबी बॉय हिमाक्ष का। दिल्ली मोती नगर एरिया जोन से हैं आप सभी लोग, अनिल मानसी, गौरव, कविता और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। मोहन सिंह रावत का कमेंट हम तक पहुंचा है, आकोट से हैं आप सभी लोग, विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए। गांव भोजपुर तगर सहारनपुर से हैं मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद। चिट्टा मंदिर रोड यमुनानगर से हैं मधुबाला प्रजापति, शिवी, शमा, अनुराधा, तेजपाल सिंह प्रजापति। गुजरात पाटन से हैं धीरज वी रवारी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। राजकोट गुजरात से हैं रश्मि झरना और भरत कुमार। गांधीबाग अकोला से हैं रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, धनंजय। सरोज चौक अमरावती से हैं कमरुल्ला और रसीम बेगम। तेलंगाना निजामाबाद से हैं शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख। पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से हैं सैयद भाई, सुफियान, अनस, आयजा, अल्फिया। सरोज चौक अमरावती से हैं कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आफिया और पोत्रा मुस्तावा खान। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से हैं मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। मलियाना सरधना मेरठ से हैं अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन और मुस्कान जैन। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसीर अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ।

अंसारी, नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हैं। अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जिया हुलक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, भाटापार छत्तीसगढ़ से हैं। सोहन जोशी और पायल जोशी खुजा उत्तर प्रदेश से हैं। तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा मोतीलाल बाजार से हैं। अजलान, शामिर खान, सैयद तैमूर, सोहिल शेख, शेख वजीर, शेख शगीर और बबलू का। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से हैं। जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल। सेक्टर 18 जगाधारी जिला यमुनानगर हरियाणा से हैं। विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी, प्लोमा और ईशानी का। खैल बाजार पानीपत से हैं। नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं। पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविक सिक्का। गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से हैं। सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम और सद्दाम अदीब का। मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहू जौनपुर से हैं। इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद और अजरा तबस्सुम का। रायपुर अनेक जिला बनारस से हैं। मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवीन। मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदनी कुमारी का। सोंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं। फरेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार और हियांश कुमार चंदन का। राजकोट से हैं। जयमीन कुमार जैन, हेतल जैन और कृष्णा जैन का। फजिल का पंजाब से हैं। भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी। और ये कमेंट हम तक आया है, मंगल बाजार कटिहार से हैं। रफी रहमान, बेगम शमा रफी, कस्बा अग्रवाल, मंडी बागपत यूपी से हैं। आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ, सारिक अली खान। सिवहारा जिला बिजनौर से हैं। आसिफ चौधरी, अराफत अदीब और कादिर चौधरी। सरलाही सोक नाहा नेपाल से हैं। अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, राहुल कुमार शर्मा, वंदना कुमारी शर्मा, प्रियंका कुमारी और इनके बहुत सारे साथी। जनकपुरी सहारनपुर से हैं। जोन डिक्रेस्ट्रो, रोजी डिक्रेस्ट्रो, पल डिक्रेस्ट्रो और विलेज डिक्रेस्ट्रो का। ग्राम चारभाटा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं। नरेंद्र मेश्राम, मधु मेश्राम, सत्यार्थ और ईवी का। फुलाय नगर बीट महाराष्ट्र से हैं। बालाजी प्रसाद करवा, गीतांजलि करवा, आकाश करवा और आकांक्षा करवा। विराट नगर नेपाल से हैं। रेणुका शर्मा और अरुण चंद्र शर्मा। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से हैं। उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल रश्मि, प्रियंका सृष्टि, बन्नी आरुष, शौर्य और दिनेश। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद दरेली से हैं। लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मुस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अब्दार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन और मुन्ना अंसारी का। एमएलबी रोड ग्वालियर से हैं। सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरफ खुराना और एस के पप्पी का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है गोविंद गोविंद गौतम गोविंदा और इस गीत को गाया है आशा भोसले ने।

0: श्रोताओं, आपकी पसंद की ये आखिरी पेशकश है।
1: दरोगा

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। अब आप सुनेंगे सब रंग, और सब रंग में हम आपको जन सुनवाने जा रहे हैं ये भजन अनूप जलोटा के स्वर में।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं सब रंग आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली और 100.4 FM पर। और लीजिए सुनिए अब ये गज़ल मिताली सिंह के स्वर में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सब रंग। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। प्रातः के 11:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला।

ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर

0: सर अंशु जोशी, परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
1: आकाशवाणी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र प्रथम के मुद्दे पर। तो प्रोफेसर अंशु जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक 12 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही है और इसमें राष्ट्र प्रथम की अवधारणा और खासतौर पर हम जो पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे आप किस तरह से देखते हैं कि वैश्विक परिवेश में, परिदृश्य में किस तरह से इसे एक नई दिशा दी गई है?
2: विगत 12 वर्षों में हमने भारत की यदि विदेश नीति और आंतरिक नीति की दृष्टि से देखें तो वैश्विक राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है, जो सदियों पुराना है।

0: पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है, उसे आप किस तरह से देखते हैं कि वैश्विक परिवेश में, परिदृश्य में किस तरह से इसे एक नई दिशा दी गई है?
1: विगत 12 वर्षों में हमने भारत की यदि विदेश नीति और आंतरिक नीति की दृष्टि से देखें तो वैश्विक राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है, जो सदियों पुराना है, उसको भी वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब नीति निर्माण की हम दृष्टि से देखते हैं तो हमने भारत की यदि हम ब्रांड इमेज को देखें तो वो एक विगत 12 वर्षों में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर ये इमेज वैश्विक स्तर पर बनी है, जिसमें भारत को ग्लोबल साउथ का प्रणेता दूसरे देश मानने लगे हैं। और इसके पीछे कारण है, उदाहरण स्वरूप जब 2023 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, जिसे कि पश्चिम के शक्तिवान देशों का एक मंच माना जाता था, उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा। तो इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की नेतृत्व की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो पश्चिम के तमाम शक्तिवान देश हैं और ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देश है, उनके बीच संतुलन बनाए रखने का एक पुल का काम भारत ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा है। तो जब बात आई कोविड के काले समय के दौरान हमने न सिर्फ अपने लिए 140 करोड़ हमारी आबादी के लिए हमने टीके बनाए, होम ग्रोन वैक्सीन्स बनाए, हमने दुनिया भर के देशों को, लगभग 150 देशों को हमने जीवन रक्षक दवाएं और टीके भेजे और वैश्विक स्वास्थ्य की जो कूटनीति है उसमें एक नया हमने अध्याय शुरू किया। एक रणनीतिक संतुलन हमारी नीति के माध्यम से हमने बनाए रखा, तो हमने नॉन अलाइंड की बजाय ऑल अलाइंड की नीति अपनाई, जिसमें एक ही समय में एक तरफ हम रूस के एक नेचुरल अलाय वर्षों से हैं, उस यात्रा को हम जारी रख पाए, और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सफल अध्याय शुरू किया। हम इजराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन हमारी विदेश नीति में पैलेस्टीन को भी मान्यता है। तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है। वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति की वजह से, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में 30 से अधिक देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है, और इसी से समझ में आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से भारत किस तरह से एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया गया, क्या लगता है आपको, कैसा बदलाव रहा है, ये अच्छा बदलाव रहा है या कुछ चुनौतियां भी रही है?
1: ये एक बड़ा और सफल बदलाव मैं मानती हूँ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब शीत युद्ध चल रहा था, जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया, और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था, जिसमें हम न USSR के ब्लॉक के साथ, न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए, बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट है या हित है, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाए, हैंडशेक करें। तो भारत विगत 12 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये रहा कि नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड देश बना, और यही कारण है कि एक और रशिया के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, हम नेचुरल अलाय है रशिया के, दूसरी ओर अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर हमने विशेष तौर पर काम शुरू किया, और वही एक इशू बेस्ड इंगेजमेंट भी हमने कूटनीति में जोड़ा। और वो क्या है, तो अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हम देख लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक की दुनिया को देख लें, कृषि का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें, या सामरिक क्षेत्र देखें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ हम जुड़े। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विगत 12 वर्षों में पहली बार इतना करीब गए। हम अफ्रीका के देशों के पास गए। इन देशों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल

0: सोर्सेज हैं, लेकिन ये अविकसित देश है। तो इनके साथ भारत ने एक रोड मैप बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अलग अलग देशों के साथ शुरू की। एशिया में हमने अपने पड़ोसियों के साथ और चीन जैसे देश के साथ में रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास किया। हालांकि चीन की तरफ से जिस तरह से हमारी सीमाओं पर लगातार चुनौतियां प्रस्तुत की, तो वहां पर फिर हम चुप भी नहीं रहे। तो सबसे हमारी यदि विगत 12 वर्षों में मैं विदेश नीति की सफलता बताऊं, तो वो ये है कि हम एक तरफ राष्ट्रप्रथम की भावना के साथ, लेकिन विश्व बंधुत्व का दर्शन रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मल्टीपोलैरिटी को, मल्टी अलाइनमेंट को, वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे देश जब आकर हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न करते हैं, या पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को लगातार पल्लवित पोषित करता है, तो फिर वहां पर भारत सक्षम, समर्थ और सशक्त रूप से जवाब भी देता है। तो इसमें चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आती हैं जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने हो, जो अपने प्रॉक्सीज को या आतंकवादी संगठनों को लगातार एक्टिव करके आगे बढ़ाते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता हो। लेकिन दूसरी ओर द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर हमने जो साख बनाई, जो सफलता आई, जिस तरह से दूसरे देशों की सहायता की जब उन पर जरूरत पड़ी, तो फिर यहां पर इन चुनौतियों का समाधान भी हम निकाल पाने में सफल रहे हैं।
1: बिल्कुल, जाहिर है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी भारत को हासिल हुई उसके बारे में जोशी जी बता रही थी। अब हम रुख करते हैं एमपी नथैलस साहब का। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, तो पिछले 12 सालों में हुए बदलावों को आप किस तरह से आंकते हैं और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
2: जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अभी एनवायरमेंट है, ये आप देखेंगे पहले काफी डिस्ट्रिक्ट में माओइस्ट का काफी प्रभाव पड़ा हुआ था, जिसके वजह से वहां पर डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था। लेकिन अब जो है, पिछले कुछ सालों में इतना जोर दिया गया माओइस्ट को खत्म करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि हमारे गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च तक 2026 में एक बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सीआरपीएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफी जोर लगाकर, खासकर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे, इनके पीछे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लगाए, और उन ऑपरेशन में कई माओवादी को मार गिराया, और उनको मार गिराने की वजह से इनका मनोबल इतना नीचे गिर गया कि करीबन 5000 माओवादी पिछले 2 साल के अंदर अपने आप खुद आके सरेंडर कर गए। और सबसे बढ़िया ये इसका प्रभाव रहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम निकाला, स्कीम निकाला, जिसमें कि उनको 50,000 रुपए दिए जा रहे थे, उसके अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और मकान दिए जा रहे थे। इनके वजह से काफी तादाद में माओइस्ट अपना जो जंगल में रिहाइश थी वो छोड़ के बाहर आए और सरेंडर कर दिए फोर्सेस के सामने, जिसके वजह से माओइस्ट का बिल्कुल खात्मा हो गया है। और यहाँ इनके नेता भी जो थे, वो भी कई नेता, बड़े बड़े नेता जो कि पहले बड़े कट्टर आतंकवाद थे, उन्होंने आगे आकर अपने आप आत्मसमर्पण किया, और इसके वजह से माओइस्ट तकरीबन खत्म ही हो गया है। अभी केवल एक ही बचा हुआ है झारखंड में, जो कि पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में वो भी मारा जाएगा या वो खुद सरेंडर कर लेगा, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब यह चलने वाला नहीं है। उन्हीं के कई फॉलोअर्स सरेंडर कर चुके हैं, और ये मिसर बेसरा के पास केवल कुछ ही आदमी बच गए होंगे जो कि सेरेंडा फॉरेस्ट के जंगलों में घूम रहे हैं, और ऑपरेशन भी कोबरा के बड़े जोरों से जारी है, और कुछ दिनों में ये मारे जाएंगे या खुद सरेंडर कर देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में करीबन 8000 जो मिलिटेंट्स थे, इंसर्जेंट्स थे, उन्होंने खुद सरेंडर किया, जिसमें कार्बी अंगलोंग के इंसर्जेंट्स थे, बोडोस के इंसर्जेंट्स थे, और आसाम के भी इंसर्जेंट थे, और उसके अलावा मणिपुर में जो यूएनएलएफ के इंसर्जेंट से सबने सरेंडर किया है। और उनके सरेंडर करने के बाद काफी मात्रा में वहां पर हथियार खत्म हो गए और इंसिडेंट भी खत्म हो गए, और उस वजह से काफी

0: काफी वहां पर शांति फैलाया गया उस इलाके में और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफी जोरों से चल रहा है और इन डेवलपमेंट के वजह से लोगों को बहुत फायदा चल रहा है। पहले यह डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे क्योंकि आतंकवाद ने काफी जोरों से वहां पर कब्जा मार के रखा हुआ था और इसको खत्म करने के बाद अब डेवलपमेंट जारी हो गई है। सड़कें बन रही हैं हर जगह, कनेक्टिविटी बढ़िया बन रहा है और करीबन 70 से 80 एयर स्ट्रिप्स भी रिवाइव कर दिए गए हैं कई जगहों में और जिनके वजह से अब वहां पर एयर फ्लाइट्स भी शुरू हो गए हैं। अब लोगों को काफी सुविधा पहुंच रही है कि वो एक जगह से दूसरे जगह नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आराम से सफर कर सकते हैं।
1: इसके अलावा आप ये भी समझना चाहेंगे कि घरेलू मोर्चे पर अपने रक्षा उत्पादों में हम किस तरह से और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो उत्पादन किस तरह से हो रहा है जो भारत को और मजबूती की तरफ आगे बढ़ा रहा है?
0: इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई जो इक्विपमेंट्स है वो इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं और आत्मनिर्भर को अपने फोकस में रखते हुए तकरीबन 38,400 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट वो अब जो है शुरू कर दिया गया है। हमारे यहाँ से हथियार बन रहे हैं और ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा पहले जो हम हथियार मंगा रहे थे बाहर से उसमें भी काफी गिरावट आई है। करीबन 5,500 डिफेंस आइटम्स जो पहले हम बाहर से मंगाते थे वो हमने मंगाना बंद कर दिया और अपने ही देश में इन सब का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। तो इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे देश के इकोनॉमी को हो रहा है और उस वजह से जो युवक हैं उन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में। तो इस तरीके से काफी नौकरियां अभी लोगों को मिल रहे हैं, 15 लाख जवानों को इससे काफी फायदा हो रहा है। आज ही के दिन करीबन 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, अब रुख करते हैं प्रोफेसर जोशी का। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में भारत को एक रिएक्टिव नेशन के बजाय एक प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम उदाहरणों का जिक्र किया आपने कि एक जो ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज बन रहा है भारत, साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की भी पहल भी मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इन सब चीजों का एक फायदा अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें भारत को, तो वो किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
2: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ा, क्योंकि अक्सर हम अपनी विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं, हमने किस प्रकार के की नीतियां बनाई और किस तरह से विश्व के अलग अलग कोनों में जाकर के किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर मित्रता के नए प्रतिमान स्थापित किए, हम इस पर तो बात करते हैं, पर इसके जो आउटकम्स हैं उसकी चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ ऐसे टेंजिबल आउटकम्स हैं जो हमने अर्जित किए। उदाहरण बताती हूँ कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण एफटीए है और इसके साथ साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट भी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ साइन किया और ये एशिया में भारत दूसरा देश है जिसके साथ ये डिफेंस पैक्ट ईयू ने साइन किया है। अब इस एफटीए के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार से सकारात्मक टेंजिबल दृष्टि से आउटकम्स इसके निकल के आएंगे और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन को तो बहुत उछाल मिलती हुई दिखाई पड़ती ही है। प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से भी हमारे पास, हम इस वक्त दुनिया की जो यूथ आबादी है, हमारे पास 22% जो यूथ पॉपुलेशन है उसका हमारे पास शेयर है। यदि हम प्रोफेशनल्स की दृष्टि से देखें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और यंग फोर्स का हम देश है, वी आर अ यंग नेशन। तो यूरोप के इन देशों को इसी प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो आप देखिए, अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा, हमारा जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड है ईयू के सदस्य देशों के साथ उसमें इजाफा, तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू जनरेशन में और एफडीआईज में इजाफा, तो इससे ओवरऑल जीडीपी में बढ़ोतरी। और फिर इसके साथ साथ जो एक रोजगार की बात आती है, क्योंकि हम एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड देश है, तो उसमें फिर हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसा हम अलग अलग, यदि आप यूएई के साथ के अपने एफटीए को और हमारी व्यापारिक डील को देखें तो वहां पर भी प्रोफेशनल मोबिलिटी इज इन द सेंटर। आप यदि अभी हमारे साथ, हमारी मर्कोसुर के साथ जो कि लैटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ भी एफटीए को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज्ड है।

0: पश्चिम एशिया के संकट की वजह से जीसीसी के देशों के साथ भी हमारा एफटीए लगभग फाइनलाइज था, थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमता हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो अब जैसे यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं, तो पहले हम एक नेट इम्पोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपनी सफल विदेश नीति के चलते आज हम एक एक्सपोर्टर देश बनके इस एक डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में उभरे हैं, जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में विशेषकर हमारे होम ग्रोन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको देख करके और चमत्कृत थे, और भारत से उन्होंने हमारे जो होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट है, वो लेना शुरू किया है। बहुत सुखद समाचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा जो मेक इन इंडिया का और विकसित भारत 2047 का रोड मैप है, तो कुछ इस प्रकार के आउटकम्स है। उदाहरण स्वरूप वैक्सीन मैत्री, जब हमने 150 देशों को अपने यहां के वैक्सीन भेजे, तो उस समय के ब्राजील के, ये उदाहरण है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी का चित्र लगाया और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप नहीं जानते आपने ब्राजील के लिए क्या किया। इसके बाद ब्राजील के साथ हमारा एक अलग स्तर पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग और पार्टनरशिप शुरू हुई। तो हमने जब सोलर अलायंस और बायोफ्यूअल अलायंस की स्थापना की, इसको पायनियर किया, तो ब्राजील उसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोगी देश बनकर के सामने आया। तो ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ पॉजिटिवली किसी दूसरे देश के लिए अच्छा करते हैं, तो उसके कुछ ऐसे आउटकम्स आते हैं जो फिर हमारे जो ये लंबे सुदीर्घ विकसित भारत की यात्रा है उसमें हमें योगदान करते हुए नजर आते हैं। मैं अमेरिका का उदाहरण दूं, अमेरिका के साथ बहुत महत्वपूर्ण डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में लेमोवा, कॉमकास्टा और बेका नाम के लॉजिस्टिक सप्लाईज को लेकर के हुए बड़े महत्वपूर्ण समझौते हैं, और अमेरिका ने अपना रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस भारत को देना शुरू किया जो कि ऐतिहासिक है। तो ये काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म की दृष्टि से देखें या अपने सामरिक क्षेत्र में अपर हैंड की दृष्टि से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे क्वाड का मंच हो, ब्रिक्स का मंच हो, एससीओ का मंच हो, इप्सा हो, तो I2U2 की हम बात करें, तो भारत जिस प्रकार से अलग अलग अपने इनिशिएटिव्स के चलते आगे बढ़ा है, तो उसमें ग्लोबल साउथ की हमने आवाज मजबूत की, एक पुल के रूप में हम पश्चिम के देशों के और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में एक साथी बनकर के आए, और इसके अलावा हमने हमारे मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए विकसित भारत 2047 की यात्रा के लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स जो है वो अकम्प्लिश किए हैं।
1: और शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में G7 की बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी को एक टफर निगोशिएटर कहा, क्योंकि जब तमाम बायलैटरल ट्रेड समझौतों की जब बातचीत हो रही, तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भारतीय निर्यातकों के साथ जो है किसी भी तरह के लिए उनके लिए नुकसानदायक डील नहीं होनी चाहिए, और भारत का सामान, मेक इन इंडिया सामान जो है बिकना, वही प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री मोदी की।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, आपने इस बिंदु को भी चर्चा में जोड़ा, और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में हम देख सकते हैं कि 30 से अधिक दुनिया के देशों ने सर्वोच्च उनके राजकीय सम्मान से नवाजा है। भारत की क्या साख है, भारत का क्या परचम लहरा रहा है दुनिया में, इस बात का ये प्रतीक है। और बिल्कुल टफ नेगोशिएटर है, तो मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं, तो उसमें लगातार अमेरिका की तरफ से दो बिंदुओं पर हम पर प्रेशर बनाया गया कि एक तो हम रशिया से तेल और गैस लेना बंद करें, और दूसरा ये कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दें। तो चाहे आप पश्चिम एशिया के देशों या मंचों के साथ अपने एफटीएस को देखें, आप हाल ही में हुए EU के साथ के अपने एफटीए को देखें, आप दूसरे जो एक दर्जन भर के लगभग अपने एफटीएस हैं, और अलग अलग जो सेपा है, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक हमारे जो अग्रीमेंट्स हुए हैं कई देशों के साथ में, तो हमने इस बात को जब नेगोशिएशन के लिए स्टेक होल्डर्स बैठते थे, तो इस बात को हमने स्पष्ट किया था कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर किसी के लिए नहीं खोल सकते, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है। हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स और इससे जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं, या जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, फिशरीज से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लघु और मध्यम उद्योग, और विशेषकर जो भारतीय कला से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे नए नए बाजार मिल सके, उनको कैसे हम प्रमोट कर सके, ये भी जब भी हमने आर्थिक और तकनीकी कूटनीति के हमने समझौते किए हैं या इसको लेकर हम आगे बढ़े, तो वहां प्रधानमंत्री ने इसकी बात की है। तो आखिरकार जब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील अनाउंस हुई, तो उसमें फिर ये बात स्पष्ट होकर के आई कि इन दोनों बिंदुओं पर

0: भारत ने किसी प्रकार का नेगोसिएशन नहीं किया। और वहीं जैसे रूस से जो तेल और गैस लेने की बात है, सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हमें रूस से तेल और गैस मिल रहा था, तो हमको उर्सुला वॉन ने भी 2 या 3 साल पहले लगभग ये चेताया था कि हम रूस से तेल और गैस लेना बंद करें, लेकिन तब भी हमारे विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को केंद्र में रखते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए वही डिसीजन लेता है जो भारतीयों के हित में है। जब हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणाएं की, तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को मैं इसका नुकसान नहीं उठाने दूंगा और मेरा व्यक्तिगत इसमें नुकसान हो सकता है, मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इसके बाद भारत ने लगातार अपने जो ये तमाम सफल विदेश नीति से मित्र बनाए हैं, तो हमने इन सबसे सहायता ली, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, अपने एक मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस को फिर हमने बढ़ाया, और इसके चलते देखिए हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसा इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा हम पर जब प्यूनिटिव टैरिफ्स लगे, बड़ा हल्ला मचा था कि अब क्या होगा और नुकसान होगा और अब हम क्या करेंगे, लेकिन आप देखिए कि हमने 7% से ज्यादा और फिर 8% की क्वार्टरली हमने जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर की थी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रोथ रही। तो ये इस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ में इस प्रकार के अलग अलग अकम्प्लिशमेंट्स के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
1: अब हम रुख करते हैं एमपी नथारिया साहब का, उनसे पूछते हैं कि सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेड कॉरिडोर से ग्रीन जोन में बदलने की रणनीति अपनाई गई थी और वहां भी कामयाबी हासिल लगी, नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा संवाद और समन्वय के भी परिणाम सामने आए, तो आपसे जानना चाहेंगे जो एक और 3 बड़े ऑपरेशन हुए थे, उरी का हम जिक्र करें, बालाकोट का जिक्र करें या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों का, तो ये 3 जो बड़े एक्शन रहे हैं, इसको भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन ऑपरेशंस ने किस तरह से परिभाषित किया और क्या मायने आप देखते हैं यहाँ पर जो एक एक्शन रहा?
2: इसमें सबसे बढ़िया चीज ये था कि जैसे ही वो कहीं इस तरीके वारदात कर रहे थे, जैसे कि अटैक किया उन्होंने कॉन्वॉय सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर, उरी में अटैक किया और उसके बाद जो पहलगाम में अटैक किया, हमने तुरंत उसका जवाब दिया। ये नहीं कि हम रुके रहे, सोचते रहे क्या करना है, लेकिन तुरंत अटैक करके हमने उनको साबित कर दिया कि इस तरीके के हरकत अगर आप करेंगे तो हमारा कार्रवाई एकदम जवाबदारी होगी। और इसमें खासकर जो पहलगाम अटैक हुआ था, जिसके बाद ऑफ सिंदूर चला, उसमें करीबन 100 जो आतंकवाद टॉप के, उन लोगों को मार गिराया और कई उनके आतंकवाद के जो बेस अक्रॉस द बॉर्डर थे वो भी खत्म कर दिए गए। हमारे एयरक्राफ्ट ने जाके वहां पर अटैक किया और उनका खात्मा किया, जिसके वजह से उनमें काफी ढीलपना आ गया, अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। और इसके अलावा ये भी है कि जब भी वो कोशिश करते थे पहले बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, काफी बार सफल हुए, मैं खुद वहां श्रीनगर में रहा हूँ, गए दिन हमारे एनकाउंटर होते रहते थे। अब जो है हालात काफी सुधर गए हैं और सुधरने की वजह से ये है कि वहां पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है और यहाँ तक कि डेवलपमेंट ट्रेन भी चलने लगे हैं, राइट फ्रॉम जम्मू से लेकर बारामूला तक चल रही हैं। पहले ये सब हम सोच नहीं पाते थे। और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो मिजोरम कनेक्ट हो गया रेलवे से, पहले हमें सिलचर जाना पड़ता था, सिलचर से फिर बाय रोड जाना पड़ता था, अब जो है रोड कनेक्टिविटी इतना बढ़िया हो गया थ्रू रेलवे कि लोग सीधे ऐजवाल तक पहुंच सकते हैं दिल्ली से लेकर वहां तक। तो ये जो कनेक्टिविटी है इससे काफी बड़ा फायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को आने जाने में काफी इसमें सुविधा पहुंची है। इसके अलावा ये है कि जब भी वहां से कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका हमारा इंटेलिजेंस जो है इतना रोबस्ट हो गया है कि हमें सब पता चल रहा है कि वहां पर अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है और उसी वक्त कार्रवाई कर दी जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इससे काफी लाभ पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि कश्मीर में काफी पीसफुल सिचुएशन है, अभी अमरनाथ यात्रा भी होने वाला है, काफी तादाद में फोर्सेस पहुंच रहे हैं वहां पे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहां पर कई जिलों में जहां आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतना वहां पर शांति फैल चुका है कि AFSPA की बाद में जरूरत भी नहीं पड़ी।
1: सर, क्योंकि आपने तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए आपसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को जो लोग पालते पोसते थे उस दौर में या आज से एक दशक पहले की अगर हम बात करें, 12 साल पहले की बात करें, तो उस रुख को आप किस तरह से बदला हुआ आज पाते हैं?
2: पहले ये था कि हमारे पास इंटेलिजेंस का थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब जो है इंटेलिजेंस इतना हमारा रोबस्ट हो गया है कि जैसे ही उन

0: का कोई कार्रवाई वो वहां से करने की कोशिश करते हैं, उससे पहले ही हम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो हमारे जवानों पे या हमारे इलाके के अंदर आके हमला ना कर पाए।
1: इतने दिनों में भारत की एक नई डिफेंस कैपेबिलिटी भी सामने आई है, हम चाहे मेक इन इंडिया की बात करें या जिस हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जा रहे हैं, तो ये अब इनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में होने लगा है क्योंकि भारत की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इस पे आप कितना ज्यादा जो है इजाफा मानते हैं कि दुनिया के देशों में निर्यात कितना ज्यादा बढ़ा है, उस मोर्चे पर कितनी सफलता मिली है?
0: ये जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें पाकिस्तान ने भी काफी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इनके जितने भी अटैक करने की कोशिश की गए वो सब विफल कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो था एयर डिफेंस सिस्टम काफी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके वजह से उनके जितने भी अटैक्स हो रहे थे वो विफल कर दिए गए और हमें ज्यादा उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता जो कि शील्ड जैसे बन गया था, तो हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता था। लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम के वजह से हम लोग उनको रोक पाए और वो नुकसान नहीं कर पाए।
1: प्रोफेसर जोशी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत की उभरती हुई वैश्विक भूमिका विकसित भारत की तरफ है, इसमें आपको क्या लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को किस तरह से गति मिल रही है और आने वाले दिनों में जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसे हम किस तरह से पूरा होते हुए देखेंगे?
2: देखिए, जब हम अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हैं तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत की जो सफल विदेश नीति है, विगत 12 वर्षों में हम जिस तरह से एक ऑल अलाइंड पॉलिसी पर चले हैं, इसने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। तो भारत के यदि हम आर्थिक विकास की ओर देखें, तकनीकी प्रगति की ओर देखें, वैश्विक सुरक्षा, अपनी आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो हमारी विदेश नीति जो है इसके माध्यम से हम इनसे जुड़े हुए लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए लगातार अपने विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जब कूटनीति को हम देखते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है, मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। हम किसी एक देश की हेजेमनी की नहीं बल्कि मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसका मुख्य
3: यूपी टेट एग्जाम जुलाई में है, पर क्या आप अभी भी सिर्फ सिलेबस पूरा करने

नहीं बल्कि मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे वैश्विक राजनीति में लोकतंत्र को बनाए रखना है और साथ साथ हमारे देश का विकास हो और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिले। तो यदि हम अपने आर्थिक मोर्चे पर जाएं और अपनी आर्थिक कूटनीति की बात करें तो विकसित भारत 2047 को यदि हम देखते हैं तो हमारी विदेश नीति का एक बड़ा जो फोकस एरिया रहा है वो FDI रहा है। किस तरह से हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, मैंने लगातार अलग अलग FTAs का उदाहरण दिया जिनके माध्यम से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर। फिर यदि हम तकनीक की दुनिया में चले तो चाहे AI की बात करें या हम डिजिटलाइजेशन की बात करें तो AI समिट का ग्लोबल साउथ का भारत पहला देश है जिसने इस बार होस्ट करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जिसमें देश विदेश से कई राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की और AI को लेकर के जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है उसमें भी भारत एक प्रणेता की भूमिका निभा रहा है। फिर आप सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में चले, क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया चले, तो इन सब में अपनी विदेश नीति के माध्यम से हमने जो नई मित्रताएं लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन देशों के साथ जोड़ी है, आगे बढ़ाई है, उसके माध्यम से हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर पा रहे हैं क्योंकि ये विकसित भारत की यात्रा का एक बड़ा ही तो इसके जरिए हमारे जो भारतीय उद्योग हैं वो मजबूत होते हैं और जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे हम अपने उद्योगों को जोड़ते हुए एक यहाँ पर अपना एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। फिर हम ग्लोबल साउथ की आवाज प्रणेता बन के जो उभरे तो उसमें जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों का डेमोक्रेटाइजेशन हो और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसमें जो ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसके नेतृत्व की बात करते हैं, इसको आज पूरी दुनिया अपना समर्थन दे रही है, चाहे यूरोप के शक्तिवान देशों को आप देखें या लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के हमारे समकक्षी देशों को देखें। तो UNSC जैसे संस्थानों में भारत लगातार भारत जैसे देशों के नेतृत्व की मांग कर रहा है और अपनी स्थायी सदस्यता के लिए तो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर गए तो वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इस बात को फिर पुरजोर तरीके से रखा कि भारत को UNSC में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो एक वैश्विक समर्थन जो है वो आज हमें हासिल हुआ है और ये विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे लिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी नेतृत्व की भूमिका बढ़े। फिर यदि हम अपनी सुरक्षा की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो आसपास एक फ्लक्स की सिचुएशन है, दो युद्ध चल रहे हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी लगातार तनाव बना रहता है, इन सब के बीच हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से लगातार

0: हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे। और अभी पश्चिम एशिया की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरह से ईरान ने बंद किया और पूरी दुनिया ने संकट को झेला, 40% लगभग तेल, गैस और एलपीजी पूरी दुनिया को सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से, और कुल जरूरत का 80-90% अपना तेल, गैस और एलपीजी चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश मंगाते हैं। हमने लगातार 27 देशों की बजाय 41 देशों से तेल, गैस और एलपीजी मंगाने का हमने पिछले 12 वर्षों में ये काम किया, और अपनी जो ऊर्जा आयात हमारा जो है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया। तो हमने अपनी इस प्रकार की डायनामिक ऊर्जा पॉलिसी के चलते ऊर्जा सुरक्षा हम बरकरार रख पाए, तब जबकि दूसरे देशों में 40-60-70% तक की मूल्य वृद्धि हुई। आप देखिए कि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रही, ऑयल गैस की हमारी निर्बाध आपूर्ति लोगों को मिली। फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है उस पर एक विशेष हमारा ध्यान है, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनके उभरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र में। हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से पहले सागर डॉक्ट्रिन प्रस्तुत किया जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल था। फिर जब दोबारा मॉरिशस की यात्रा की तो उन्होंने महासागर नीति रखी जो कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है। तो तमाम हिंद महासागर के जो लिटोरल देश हैं और जो इंडायरेक्टली जुड़े हुए देश हैं वो सब आज भारत को प्रणेता मानते हुए भारत से जुड़ रहे हैं और हम इन देशों के साथ साझा विकास भी कर रहे हैं। और फिर विदेशों में जो अपने भारतीय प्रवासी हैं जो हमारे लिए, हमारी जीडीपी के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं योगदान तो करते ही है, हमारी संस्कृति के वहां के एम्बेसडर्स हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण को भी हमने प्राथमिकता दी है। तो आप देखिए जब जब अलग अलग विश्व में हमने संकट देखे वहां भारत ने तुरंत इवैक्यूएशन प्लान्स लॉन्च करके भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया, और जो भारतीय वहां पर रह रहे थे उदाहरण स्वरूप रशिया यूक्रेन वॉर में उनको तुरंत भारत वापस लाने की पहल और सफलतापूर्वक इसका भी अकम्प्लिशमेंट हमारी विदेश नीति की वजह से हो पाया। जब हम विकसित भारत 2047 के सामरिक लक्ष्यों को देखें, आर्थिक लक्ष्यों को देखें, तकनीकी लक्ष्यों को देखें, वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ने के लक्ष्य को देखें, तो अपनी विदेश नीति के माध्यम से हम लगातार अपने विकसित भारत के विजन को, मिशन को साकार कर पा रहे हैं।
1: आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्र प्रथम की नीति रही है भारत की, वो शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं अपने नागरिकों की बात करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो ये एक नीति इसने देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को किस तरह से और कितना मजबूत किया है, क्या मानते हैं?
0: ये जब हम इस नीति को देखते हैं या इस पूरे फिनोमेना को देखते हैं तो ये हमारी विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में हैं और इसके माध्यम से हम किसी के दबाव में नहीं आते, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और विश्व मंच पर अपने हित की तो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित रखते हैं कि देश विदेश में जो अपने लोग रह रहे हैं, भारतीय प्रवासी जो हैं, उनकी सुरक्षा और उनके विकास को हम आगे बढ़ा सके। और इसमें फिर हम देखिए एक संतुलन बना के रखते हैं और इसके जरिए हम अलग अलग जो स्वभाव के देश हैं उनके साथ अपने पारंपरिक और नए तरीके के संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। संकट के समय हम दूसरे देशों की तो सहायता करते हैं लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लोग किसी संकट में ना फंसे। तो ये हमारी नेशन फर्स्ट की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि संकट में फंसे हुए भारतीयों को हम सुरक्षित रूप से स्वदेश लेकर के आते हैं। सबसे बड़ा बिंदु आतंकवाद पर जिस प्रकार का रुख पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनाया है, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, तो ये अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता है, ये नेशन फर्स्ट की बात है, ये पीपल फर्स्ट की बात है। और इसमें एक बहुत ही गजब का समन्वय हमने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी रक्षा शक्ति के बीच में एस्टेब्लिश किया है और इसके चलते, इस नेशन फर्स्ट की बात के चलते आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हमने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी दृढ़ता से रखा है।
1: बिल्कुल, तो अंशु जोशी जी और एमपी नाथाले साहब आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, आप सुनेंगे हमारे अगले कार्यक्रम, रिले करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

दीदार तो नहीं हो सकता आपका, लेकिन हाँ हमारी मुलाकात जरूर होती है भाई। आप अपने प्यारे प्यारे मेल्स हमें भेजते हैं और हम अपनी आवाज के जरिए आप सभी के साथ जुड़ते हैं। बस यही बहुत है हम सभी को खुश रखने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 100.7 FM रेनबो पर। 12:11 का वक्त, मतलब 12:11, ये टाइम भी कैसा चल रहा है। खैर सेकेंड जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, 48, 39, 50, ये देखिए तो बस इसी तरह से टाइम चल रहा है और आपका हमसे मिलना यहाँ पर हो चुका है। सैटरडे है तो ये जो प्यारे प्यारे से वाइब्स आते हैं ना छुट्टी वाले, वो बिल्कुल शुरू हो जाते हैं। सैटरडे मॉर्निंग्स है एंड आई नो आप लोग की भी जिंदगी में ऐसा ही होता होगा। मतलब मंडे का जो एक लो फीलिंग होती है ना, वो सैटरडे संडे को जाकर के बिल्कुल सही हो जाती है। खैर बहुतों की ऐसे हैं शायद छुट्टी ना भी हो सैटरडे को, लेकिन वाइब्स हमेशा सैटरडे अच्छी दे रहा होता है। संडे से ज्यादा अच्छी वाइब्स सैटरडे को मिलती है एंड आई एम श्योर आप उसी वाइब्स को जरूर इंजॉय कर रहे होंगे। और इसी के साथ बिल्कुल रेडी हो जाइए क्योंकि सैटरडे को हम 12 बजे लेकर आते हैं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम फैमिली फन। अच्छा छुट्टियां थी, गर्मियों की छुट्टियां ऑलमोस्ट अभी खत्म होने वाली और सब लोग कहीं ना कहीं घूमने गए होंगे। कुछ लोग नानी मामी चाची के घर गए होंगे, कुछ कहीं बाहर गए होंगे, कुछ आसपास भी शायद घूमने गए होंगे। और घूमने जाओ जब और उसके बाद वहां से वापस आओ तो एक चीज माइंड में जरूर रहती है कि आप भैया दुनिया घूमाओ, कहीं भी हो आओ, कितने भी दिन क्यों ना रह रहा हो, एक चीज जो हमेशा आपको मिसिंग रहती है लाइफ में, एक चीज जहां आकर आपको सुकून मिलता है, एक चीज या एक जगह जो आपको लगता आपकी अपनी है, वो होता है हमारा घर, हमारा परिवार और हमारे परिवार के लोग, है ना। ये बिल्कुल सही चीज है और यही हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इन्हीं को मिलाकर हमारा ये प्रोग्राम भी बनता है जिसको हम कहते हैं फैमिली फन। तो बस आज की फैमिली फन में भी हम ऐसी ही कुछ बात करने वाले हैं कि क्या कुछ होता है, क्या कुछ हमारे रिश्ते हैं और किस तरह हम अपने घर के लोगों से जुड़े होते हैं, जो शायद एक ऐसा रिश्ता है जिसको हम चाहकर भी कभी भी खटास के वे में नहीं ले जा पाते, है ना। तो चलिए बहुत सारी बातें करेंगे बट फिलहाल अगला गाना आप सभी के लिए और इसी के साथ बहुत सारी बातों और बहुत सारे गानों का जो यहाँ पर मेरे पास पिटारा है उसको भी मैं आपके लिए खोलूंगी। तो फिलहाल अरिजीत की आवाज में इस ट्रैक को एंजॉय करिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। और हाँ शायद मैं बताना भूल गई हूँ क्योंकि रत्ना जी पहले ही बता के गई हैं कि इस वक्त है आपकी दोस्त जरीना आप सभी के साथ।

0: 93.7।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, टोल कर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

भाई एक चीज तो हमेशा से ही आपको माननी पड़ेगी और जिंदगी की रियलिटी भी है कि भाई परिवार सिर्फ कुछ लोगों का साथ नहीं होता, बल्कि भावनाओं, विश्वास, त्याग और प्यार, ये सारी चीजों का एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होता है। खूबसूरत सा संसार होता है जो हमारी जिंदगी को मायने देता है। हमारी माँ की ममता, पिता का संरक्षण, दादी, नानी और ये परिवार के जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनका स्नेह, भाई बहनों का साथ और बच्चों की मुस्कान, हर रिश्ता अपने आप में बेहद खास, बेहद अनमोल होता है। और जब कहते हैं ना कि किससे ज्यादा प्यार किया जाता है, मतलब हर परिवार में ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं, तो शायद यहीं पर प्यार जो है वो उसकी डेफिनेशन या उसका दायरा फेल होता है, क्योंकि आप इस चीज को तोल नहीं सकते हैं। हर एक इंसान की अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी एक अहमियत होती है हम सभी की जिंदगी में, जिसको शायद ऊपर नीचे या ग्रेडिंग करके बयां कर पाना बेहद मुश्किल होता है। भाई अगर हम अलग अलग रिश्तों की बात करें तो सबसे पहले आ जाती है हमारी माँ, मतलब हम सभी की माँ। और माँ ये सिर्फ एक शब्द नहीं होता, बल्कि दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों की खुशी के लिए हर तकलीफ को मुस्कुरा कर सह कर जाती है, और शायद उस चीज़ का कभी हम सबको एहसास भी नहीं होने देती है। उसकी दुआएं ही हमारे लिए, हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए ढाल बनती है, और उसका प्यार हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। बचपन में जब हम गिरते हैं ना, तो या संभलने की कोशिश करते हैं या बोलते हैं, और लोग, मतलब समाज में क्या, घर में भी लोग हमारी बातों को समझ पाते, उस वक्त वही होती हैं जो हमको समझती हैं, और वहां से लेकर अब तक वो हमको हमेशा ही हर एक चीज में आगे बढ़ाती हैं, आगे लेकर जाती हैं। तो शायद ये वो रिश्ता होता है जो सारी चीजों में, सारे रिश्तों में, हर एक एहसास में सबसे ऊपर आ जाता है, और शायद इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो मुझे लगता है बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। तो चलिए आज कोशिश करते हैं कि हर परिवार के जो सदस्य हैं उनकी इंपॉर्टेंस को अपनी ज़िंदगी में समझने की, उनके बारे में कुछ कुछ बातें करने की। और हाँ, एक और चीज़ मैं साथ में कहना चाहूँगी कि अगर आपके परिवार में भी कोई एक पर्टिकुलर सदस्य जो है वो जो आपको हमेशा मोटिवेट करता है, जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा शायद अहमियत रखता हो, वो अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं, तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। आपके मेल्स का इंतज़ार रहेगा, और वैसे कुछ मेल्स जो हैं वो आना भी शुरू हो चुके हैं। मतलब मैंने ऐसा कुछ टॉपिक आपको नहीं दिया जहां पर आपकी कुछ हमें ओपिनियन चाहिए, तो फिलहाल वो मैंने अब आपको बताया, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, लगातार हमारे एफएम के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे कि भैया मोनू सेठ जी, आपने भाई हमारा वेलकम कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राजन शर्मा जी का भी मेल यहां पर आया, लेकिन उन्होंने गाने की फरमाइश की है। और ऐसे ही हम पूरी उम्मीद में हैं कि आप भी अपनी जो भी परिवार के प्यारे प्यारे लम्हे हैं, कोई बहुत खास इंसान है आपकी जिंदगी में, या कोई ऐसा बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो वो जरूर हमारे साथ शेयर करिए। हम यहां पर इंतजार कर रहे हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। फिलहाल ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए, आप सभी की रेडियो सेट पर, एंजॉय करिए इसको और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL Gold TMT सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: जी हाँ दोस्तों, 100.7 FM रेनबो पर इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है फैमिली फन। और देखिए 12:31 का वक्त ऐसे भागते भागते होता जा रहा है कि मतलब वक्त को पकड़ना सीरियसली बड़ा मुश्किल होता है। खैर आपको एक अपडेट दे देते हैं कि कल यानी सेम टाइम पे 12 बजे से और 12 से 1 के बीच में आप हमारा स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस सुनेंगे। और आपको बता देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम रहेगा ये। श्री कृष्ण दत्त मिश्रा जी जो कि एक योगाचार्य हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से, वो रहेंगे आपके साथ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो बस प्रोग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कल दोपहर 12 बजे। और इसी के साथ आप

बिल्कुल भी मत भूलिएगा कल दोपहर 12 बजे। और इसी के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि कार्यक्रम आज के मेहमान में श्री रंजन कुमार जी रहेंगे, जिससे आप जिनकी वार्ता सुन सकते हैं सुभाष खन्ना जी के साथ। और श्री रंजन कुमार जी प्रमुख सचिव हैं आयुष विभाग उत्तर प्रदेश के। तो ये कार्यक्रम भी 21 जून को सुबह 10 बजे सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी के साथ भाई आपको बता देते हैं कि प्रोग्राम फैमिली फन में और ये जो परिवार की बातें होती है वो चल रही है, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं कि हर रिश्ते की हमारी जिंदगी में एक अलग, एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, जिसको शायद अलग तरह से बयां करना, अलग तरह से कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ मेल्स भी मैंने कहा था, अगर आप किसी परिवार के पर्टिकुलर सदस्य के लिए कुछ भेजना चाहते हैं तो जरूर हमें लिखकर भेजिएगा। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने एक ही बात लिख कर दी है कि भाई माँ का रिश्ता दुनिया के सभी रिश्ते से सबसे ऊपर हो जाता है। भैया मोनू सेठ जी ने भी मेल लिख दिया है कि भाई माँ का रिश्ता दुनिया से सबसे ऊपर है, सबसे पवित्र रिश्ता है, अनमोल और निस्वार्थ रहता है। ये केवल एक जैविक बंधन नहीं बल्कि प्रेम, सुरक्षा, त्याग और जीवन के पहले मार्गदर्शन का प्रतीक है। इसी के साथ साथ और भाई किसका किसका मेल आया हुआ है। पिंकू सोनी जी ने लिखा है कि मैम जी सादर प्रणाम, मैं पिंकू सोनी, मेरे जीवन में सबसे ज्यादा मेरी माँ का ही अहम रोल होता है, मेरे साथ नहीं है। इन्होंने लिखा है थैंक एट माई मेल टिकैत नगर बाराबंकी से ये मेल इन्होंने लिखा है। और पिंकू जी, मैं मानती हूँ कि इस समय या आज के समय में आपकी माँ आपके पास नहीं है, लेकिन ये वो रिश्ते होते ना जो शायद हमेशा ब्लेसिंग बनकर हमारे साथ रहते हैं। उनका एहसास ही बहुत बड़ी चीज़ होती है जो हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल लिखने के लिए और इतनी प्यारी प्यारी बातें लिखने के लिए। और इसके अलावा और भी मेल यहाँ पर आए हुए हैं। मैम जी सादर प्रणाम, ओके ओके, पिंकू जी आपने फिर से वही सेम मेल लिख दिया है तो मैं दोबारा इसको नहीं लेती हूँ। लेकिन ऑब्वियसली माँ का जो रोल है हमारी ज़िंदगी में वो सबसे बड़ा होता है। लेकिन हाँ, अगर हम परिवार की और हम सभी की छत की बात करें, हौसलों की छत की अगर हम बात कर लें, तो उसमें एक नाम जो सबसे ऊपर आ जाता है ना, वो होता है पिता का, फादर का, यानी हम सभी के पापा का नाम। भाई पिता जो है या जो पापा है हमारे, वो परिवार का वो मजबूत स्तंभ होते हैं जिनके सहारे पूरा घर खड़ा रहता है ना। शायद आपके साथ भी यही चीज़ होता होगा, आप इनको अज्यूम करके देखिए। तो अक्सर जो हमारे फादर होते हैं, हमारे पिता होते हैं, अपने जज्बात कम जाहिर करते हैं, लेकिन उनकी हर चिंता, हर मेहनत, हर संघर्ष अपने परिवार के लिए ही होता है। वो खुद धूप में खड़े रहते ताकि उनके बच्चे कभी धूप में ना आए, है ना। उनके सपनों में अक्सर अपने बच्चों का भविष्य बसा रहता है। और पिता का प्यार शायद माँ की तरह दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसकी जो गहराई होती है किसी समुंदर से कम नहीं होती। जब भी हम जिंदगी में किसी भी मुश्किल का सामना करते हैं तो पिता की दी हुई सीख और उनका भरोसा हमें हमेशा आगे बढ़ने का हौसला देता है। तो बस यही चीज़ है कि हर परिवार का जो रिश्ता है वो अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है। और भाई इंडियन फैमिलीज की बात ही हम क्या कहें, हमारा ये जो परिवार है, हमारा जो रिश्ता है ना, वो वहाँ से शुरू हो जाता है जहाँ पर पापा की डांट मार, मतलब लड़कियों को तो नहीं पड़ती लेकिन लड़कों को तो जमकर पड़ती है, वहाँ से लेकर वो मोमेंट भी जहाँ पर एक इंसान, एक लड़का और एक बच्चा अपने पापा के लिए, अपने माँ के लिए और अपने पिता के लिए रो देता है ना। तो बस ये रिश्ते कुछ ऐसे ही हैं, खट्टी मीठी यादों से भरे हुए। तो चलिए आप भी हमारे साथ शेयर करिए और भी अपने जो भी फीलिंग्स हो अपने परिवार के किसी भी पर्टिकुलर सदस्य को लेकर, जो भी आप कहना चाहें, fmakashwanilakhnow@gmail.com पर कहिएगा। और एक हाँ चीज़ बहुत मुझे इम्पॉर्टेंट लगती है हम सभी की ज़िंदगी में, कि अगर आप किसी से भी जुड़े रहना चाहते हैं ना ताउम्र, आपको लगता है कि वो इंसान आपके लिए ज़रूरी है और आप उस चीज़ का एहसास उस इंसान को नहीं करा पा रहे, तो बस एक छोटा सा काम करिए, उस इंसान से हमेशा उसकी खैरियत पूछते रहिए। और हाँ, ये भी कोशिश करिए कि वो जवाब में सिर्फ ये ना कहे कि हाँ भाई सब बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है, जो उसके दिल की बात हो, जिस तरह का वो इंसान उस हालात में हो वो आपको बता सके। तो ये खैरियत पूछना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है हर किसी की ज़िंदगी में। बस ऐसा ही कुछ ये गाना भी है, इन्जॉय करिए इस गाने को, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, आपकी दोस्त जरीना के साथ।

जी हाँ दोस्तों, 100.7 FM रेनबो पर इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है फैमिली फन। और आज हम बात कर रहे हैं कि भाई हम सभी की जिंदगी में अपने परिवार के सदस्यों की जो अहमियत होती है वो बिल्कुल अलग अलग तरह से होती है। और हम वही आपसे जानना भी चाह रहे हैं कि आपके किसी पर्टिकुलर सदस्य की आपके परिवार में आपको क्या लगता है, क्या इंपॉर्टेंस है। वैसे मेल्स यहाँ पर लगातार आते जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं अपनी बात कहूंगी। एक्चुअली होता क्या है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, कुछ ऐसी कैटेगरीज होती जिनको बच्चे बड़े पसंद होते हैं और कुछ को लगता है ना कि भैया बच्चे हमसे दूर ही रहें तो बेहतर है। मतलब कुछ को लगता है कि बच्चे बड़े इरिटेटिंग होते हैं। लेकिन एक सही बात जो है, जो हमारी इंडियन सोसाइटी में है, हमारी इंडियन फैमिलीज में है, वो ये है कि बच्चे जो है वो ऑब्वियसली हर घर की, हर परिवार की रौनक होते हैं, है ना। अगर हम असली रौनक की बात करें, असली चहल पहल की घर में बात करें, तो वो बच्चे ही होते हैं। आप कभी अज्यूम करके देखिए कि जिस घर में बच्चे हैं, और अगर 2-3 घंटे के लिए भी वो बच्चे अगर गायब हो जाएं, कहीं घूमने चले जाएं, और आप उस घर में एंटर होकर देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि कितना सन्नाटा है इस घर में। मतलब घर की दीवारें ना काटने को एकदम दौड़ती हैं। तो बच्चों की जो चहचहाहट है, या जो उनकी किलकारियां हैं, या जो उनकी शरारतें हैं, वो हमेशा से ही हर परिवार के लिए एक बहुत ही बड़ी चमक का काम करते हैं, जो हमेशा बढ़ती ही जाती है। बच्चे बड़े होते हैं, उनकी हरकतें, उनकी बातें, उनकी चीजें बढ़ती हैं, जो परिवार को एक बहुत अलग तरह से बांधे रहती हैं, है ना भाई। जब हम बात करते हैं ना बच्चों की हंसी, उनकी शरारतों की, उनकी मासूम बातों की, तो ऑब्वियस

देखा जाता है कि खुशियां बिखेर देती हैं, वो हर किसी की जिंदगी में होता है। और अगर आप कितने भी उदास क्यों ना हो, आप बस आधा एक घंटा बच्चों के साथ बिता कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जिंदगी कितनी प्यारी है, कितनी मासूम है, कितनी एक्साइटमेंट्स के साथ भरी हुई है। तो चलिए इसी के साथ भाई अगला जो मेल है वो शामिल कर लेती हूँ। रविंद्र सिंह ने हमें मेल लिखा है राजेंद्र नगर लखनऊ से। अरे वाह, पास से ही ये मेल आ गया है। और इन्होंने जो लिखी है बात, वो ट्रस्ट मी, मुझे बहुत बड़ी और बहुत जरूरी बात लगती है। इन्होंने लिखा है कि जो घर के बुजुर्ग हैं वो अनुभवों का खजाना होते हैं। उन्होंने लिखा है घर में दादा दादी या नाना नानी को होना किसी भी बरकत से कम नहीं होता। उनकी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि जीवन को अनमोल सबक सिखाती हैं। उनके पास अनुभवों का ऐसा खजाना होता है जो पीढ़ियों को जोड़कर रखता है। उनकी बातें, उनका स्नेह और उनकी दुआएं परिवार की सबसे बड़ी पूंजी होती है। और आगे ये लिखते हैं कि बचपन में उनकी गोद में बैठकर सुनी गई कहानियां, उनके हाथों का प्यार शायद ही कभी भुलाया जा सके। वो परिवार की उस जड़ की तरह होते हैं जो हर सदस्य को अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों से जोड़े रखते हैं। तो बस ये लिखकर दिया है रविंद्र सिंह ने। और सीरियसली ये बहुत ही बड़ी बात लिख कर दी है, मतलब आज के समय में शायद ही कोई इस चीज को समझ पाए, लेकिन ये रियलिटी है। आप अगर नहीं भी समझेंगे, समझने से इनकार करेंगे, तो आप इस सच्चाई को कभी भी नकार नहीं सकते हैं कि जो परिवार है, जो परिवार के बुजुर्ग हैं, वही हमें हमारी संस्कृति, हमारे समाज, हमारे परिवार से जोड़ते हैं। वो उस जड़ की तरह होते हैं ना कि जो अगर मजबूत नहीं होगी, जो नहीं होगी, तो शायद वो पेड़ ना बन पाए, उस पेड़ पे फल फूल ना आ पाए और उसमें हरियाली कभी नहीं आ सकती। तो थैंक यू सो मच रविंद्र जी, आपने इतना प्यारा मेल लिखा और इतनी प्यारी बात उसमें लिख कर दी। और इसी के साथ और भी मेल्स आए हुए हैं जी। किसका मेल है? ये अमेठी से मेल आया हुआ है, ग्राम गौतमपुर से। और मेल क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिलहाल जो अगला गाना है वो आप सभी के रेडियो सेट तक पहुंचाऊंगी। तो बस भाई बहनों की बात हुई, उनके रिश्तों की बात हुई, उनके रिश्तों की चमक की बात हुई, तो ये गाना कैसे ना आए, ऐसा हो नहीं सकता।

जी हाँ, इतना प्यारा सा गाना है, तो बस बिल्कुल रेडी हो जाइए इस गाने को एंजॉय करने के लिए श्रेया घोषाल की आवाज में। और जब तक आप इस गाने को एंजॉय करते हैं, मैं बस देखती हूँ अगला क्या आपको सुनाऊं, क्या बातें करूंगी, और जो मेल है वो बस शामिल करने की तैयारी करती हूँ। फिलहाल सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, आपकी दोस्त जरीना के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
4: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
3: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
4: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
5: धड़कन लखनऊ की
4: 100.7 FM रेनबो।

जी हाँ दोस्तों, 12:50 का वक्त हो चला है, प्रोग्राम चल रहा है फैमिली फन, और फैमिली फन में बहुत सारी बातें आपके साथ हो रही है। और भाई जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने गाना सुना रक्षाबंधन फिल्म का, ओब्वियसली उसको सुनते हुए एक चीज जो मुझे लगता है जो कभी भी मिस आउट नहीं हो सकती है, जो कहीं से भी कम नहीं हो सकती है, वो है भाई बहन का प्यार। भाई भाई बहन का जो रिश्ता है शायद दुनिया का सबसे अनोखा रिश्ता होता है ना, सबसे स्पेशल, सबसे डिफरेंट, जिसमें दोस्ती भी होती है, लड़ाई भी होती है, शिकायतें भी होती है और बेशुमार प्यार भी होता है। बचपन की शरारतें हो, छोटी छोटी नोकझोंक हो, या फिर एक दूसरे को परेशान करने की जो अनगिनत किस्से हैं, यही यादें जिंदगी भर चेहरे पर मुस्कान लेती आती है ना। आप भी शायद इस चीज को कोरिलेट कर सकते हो ना, कि मतलब बचपन में आपने अपने भाई से, अपनी बहन से जिस तरह से लड़ाई की होगी ना, मतलब ये मार, वो उठाओ, पटक, ये वो, तो अगर जब बड़े हो जाते हैं ना, कुछ टाइम उस चीज को बीत जाता है, या जब आप अच्छी एज में आ जाते हैं, आपको लगता है कि अब ये सब नहीं करना, तब वो किस्से जब आप याद करते हैं तो सीरियसली वो लाइफ के सबसे फन लविंग मोमेंट्स हो जाते हैं ना। कितनी भी क्यों ना बहस हो जाए भाई बहन से, लेकिन मुसीबत के समय वही जो है वही सबसे पहले काम आते हैं, साथ खड़े दिखाई देते हैं, और यही वो लोग होते हैं जिनसे हम अपने दिल की हर बात को आसानी से शेयर कर लेते हैं। मतलब लड़ाई झगड़ा हो भी रहा है तो भी हमें पता होता है कि ये फला बंदा, मतलब मेरी बहन या मेरा भाई, जाके मम्मी पापा को जरूर कान में ये बोल देगा या नहीं बोलेगा। तो ये सारी चीजें हम सभी के माइंड में हमेशा चला करती हैं, और एक वक्त के बाद यही सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत,

रिश्ता बनता जाता है। तो चलिए गाना अगला हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मेल्स भी यहाँ पर कुछ आए हुए हैं तो उनको भी शामिल कर लेती हूँ। मैं सौरभ उत्तर प्रदेश जिला मेठी ग्राम गौतमपुर से ये लिखकर दिया है सौरभ जी ने, और लिखते हैं मैम जी नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। इन्होंने लिखा है हम भी अच्छे हैं, आशा है कि हम सब अच्छी हों। बिल्कुल सब ऑब्वियसली बिल्कुल अच्छे होंगे। इन्होंने लिखा है कि हमने दो लाइंस लिखी हैं, ये लाइंस हमने खुद लिखी हैं। तो लाइंस कुछ इस तरह है कि कुछ गुजारिश है रब से कि कभी दूर ना होवे वो हमसे। आप समझ रहे हो ना, हम सब समझ चुके हैं कि इन लाइन से और कुछ नहीं हो, मतलब इन्होंने ये पर्टिकुलर लाइन्स लिख दी हैं और आगे लिखते हैं कि मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। और हम दो लोग आपको सुन रहे हैं, प्रिंसी और सौरभ, बाकी सभी लोग इनके घर में सो रहे हैं और हम आपका प्रोग्राम सुनते सुनते मैथ्स के सवाल हल कर रहे हैं। क्या बात है, मतलब इंटरटेनमेंट के साथ स्टडीज भी आप करते जा रहे हैं। तो चलिए अपने आप सवाल हल करते करते इतनी प्यारी आपने बात लिख दी, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मेल लिखने के लिए। नेक्स्ट है अंशु गुप्ता जी, लिखते हैं मैम नमस्ते, मैं नारायण गुप्ता। ओके, मेल आईडी अलग है, अंदर इन्होंने नाम लिखा हुआ है कि नारायण गुप्ता टिकैतनगर से हूं। मेरे जीवन में मेरा पूरा परिवार इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए माता पिता का साथ और फैमिली का प्यार हमें मजबूती प्रदान करता है। मेरे दोस्त हैं पिंकू सोनी। ओ, पूरा परिवार, पूरे दोस्त सब मिलकर मेल कर रहे हैं। पिंकू सोनी जी का पहले भी मेल आ चुका है और उनका नाम जरूर ले लेना, इन्होंने लिखा है। उन्होंने हमें रेडियो सुनने के लिए प्रेरित किया है। इन्होंने लिखा है कि ऐड माय मेल, तो देखिए आपका मेल जो है वो ऐड हो चुका है। और पिंकू जी थैंक यू सो मच, आप जिस तरह से प्रमोट कर रही है हमारे चैनल्स को, हमारे एंकर्स को, हमारे प्रोग्राम्स के लिए, वो बहुत बहुत शुक्रिया। और अंशु गुप्ता जी का फिर से भी मेल आया, तो दोबारा नहीं पढ़ते हैं। सोनू परवाना जी क्या लिखते हैं, हमारे सभी बहनों की शादी हो गई है, वैसे इस समय एक बहन मेरे पास है क्योंकि गर्मियों में घूमने आई है और सबसे मिलने आई है। आंचल सेठ ने ये मेल लिखा हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया सेठ फैमिली, वी आर सो प्राउड कि आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं। और आगे इन्होंने लिखा है कि अगले मेल में एक्चुअली लिखा है कि बहन चाहे सिर्फ प्यार दुलार नहीं मांगती, बड़े उपहार, रिश्ता बना रहे सदियों तक, मिले भाई को खुशियां हजार। बहुत प्यारी बात लिखी है। भैया मोनू सेठ जी क्या लिखते हैं, भाई और बहन का रिश्ता बना कर रखें क्योंकि जैसे भाई भाई जैसा भाई दोबारा नहीं मिलता, और मेरे भैया मेरा अभिमान है। बहुत बहुत शुक्रिया मोनू सेठ जी। और देखिए पता है बहुत बार क्या होता है ना कि ये जो बातें आपने लिख कर दे दी ना कि मेरे भैया मेरा अभिमान है, या मेरी बहन मेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है, या मेरी माँ जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है, या मेरे पिता या मेरे दादी दादा, वो बहुत बार ये हमारी परवरिश उस तरह की होती है या हम उस तरह के माहौल में पले बड़े होते कि हम ये बातें उनको नहीं जल्दी कह पाते हैं। और ऐसे में रेडियो या जो हमारा चैनल है वो एक बहुत खूबसूरत जरिया बनता है जहाँ पर आप इतनी प्यारी प्यारी बातें आप अपने अपनों तक पहुँचा पाते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप में से भी बहुत सारी ये बातें लोग अपने, जैसे भैया मोनू सेठ ने लिख दिया ना अपने भाई के लिए, मुझे पता है शायद ही आप कभी ये बात सामने से अपने भाई को बोल पाए, लेकिन जब हमें जरिया मिल जाता ना तो हम बेझिझक दिल खोल कर अपनी बातें अपने अपनों के लिए, अपने प्यार के लिए कह पाते हैं। तो इतने सारे मेल्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए भी, इतनी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए भी, और हमारी बातें सुनने के लिए भी। और हम यही चाहेंगे कि भाई आपके अपने परिवार में जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी क्लोज्ड हैं आप, जिनके जो आपके अपने करीबी हैं, वो हमेशा आपके साथ रहें और उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो आपकी जिंदगी में हमेशा बनी रहे। तो चलिए अब इसी बात के साथ मुझे दीजिए इस प्रोग्राम से, फैमिली फन से इजाजत। अगला प्रोग्राम लेकर जल्दी से वापस आती हूँ। फिलहाल ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए, और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, दोपहर के 1 बजे हैं और अब आप सुनेंगे आपके पत्रों पर आधारित अनुरोध गीत।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनुरोध गीत में, और साथ ही कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि कल है विश्व योग दिवस, जी हाँ, कोशिश कीजिएगा कि कल एक अपने आप से प्रॉमिस कीजिएगा, अपने आप से एक आपको पूरा डिटरमाइंड होना है इस बात के लिए कि कल से आप, कल तो योग दिवस हम सभी मनाएंगे कि कहीं रिपोर्ट देनी होती है या कहीं फोटो सेशन देके भेजना होता है ऑफिशियल तौर पर, और कहीं कहीं लोग प्राइवेट सेक्टर में भी हैं तो वहाँ भी होता है कि योगा कर डालिए, लेकिन आप अपने आप पर्सनल केयर के लिए अपने लिए चाहे आप 15 मिनट निकालें, कोई लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं तो 15 मिनट तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं, कुछ नहीं सिर्फ प्राणायाम और कपालभाती, इन दो योगाओं को तो अपनी दिनचर्या में आप जरूर शामिल करें इन दोनों योग के लिए। और ये सभी के लिए ज़रूरी है कि जो कर सकता है वो ज़रूर इसको करे, क्योंकि ये आपके लिए ही नहीं, आपके सेहत के साथ साथ आप अपने परिवार के लिए बहुत महत्व रखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से मैं ये बात महिलाओं के लिए ज़रूर कहना चाहूँगी, वो ये सोचती हैं कि मैं सबका ख्याल अच्छे से रखूँ, सबका सब कुछ कर सकूँ, ज़रा सोचिए आप सबका सब कुछ तभी तो कर पाएं।

जब आप अपना सब कुछ अच्छे से कर पाएंगी। इसीलिए अपने आप से पहले ईमानदार रहिए, बाकी सब काम तो अपने आप हो ही जाएंगे। और एक अच्छी शुरुआत जब हम करते हैं ना, तो उसके साथ कई अच्छी शुरुआतें अपने आप हो जाती हैं। बस ज़रूरत इस बात की होती है कि हम अपने काम के प्रति, अपने जो हमने प्रॉमिस किया है, डिटरमाइंड हुए जिस बात के लिए, उसके प्रति हम ईमानदार रहें। बस इस बात की इतनी सी ज़रूरत होती है। और आज पहला पत्र आप सभी का अनुरोध गीत में हम तक पहुंचा है। बेरडी से हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर। ग्राम बगबुड़वान पथरिया से हैं नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम का। औरंगाबाद से हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, रानी तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आशिफ। छत्तीसगढ़ भाटापारा अतरेंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जाविंद्र कुमार वर्मा। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बिसरपुर जिला पीलीभीत से हैं विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से हैं मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतशा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री का। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये का। गज डुंडवारा से हैं आप सभी लोग मुनव्वर लल्ला भाई, मिर्जा नसरीन बबली, अरबाज खान, शहबाज खान, पप्पू भाई, अफसाना बेगम, महजबी शेख और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। गुरु नानक नगर मलोट पंजाब से हैं राजीव सेतिया, रजनी सेतिया, आरती सेतिया, तनिष सेतिया। और भटिंडा पंजाब से हैं जगमाल सिंह डांगला, हैप्पी डांगला, जे एस नायक, शोभा नायक और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। आप सभी ने पसंद किया है विवाह फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है बाबुल सुप्रियो और श्रेया घोषाल ने।

0: मेगाहर्ट्ज़ यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हां, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें, हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।
1: और ये पत्र हम तक भेजा है दिल्ली शहर मोरी गेट से हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। हरिद्वार आजाद नगर लक्सर से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से हैं अनिल कुमार, अंजू लता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव का। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवि श्रीवास्तव का। बड़ा बांबो गांव सुपाई साई से हैं देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेंद्र जी का। आकाशवाणी श्रोता संघ जिला जलगांव से हैं आप सभी लोग रविन्द्र सोनार, नरेंद्र डंगवाल, संतोष कुमार सोनार, सन्नी मुन्ना और बंडू दादा का। मोहल्ला गड़गिया बरेली मस्जिद के पास से हैं मोहम्मद केसर शमसी, अजीम शमसी, सलीम शमसी, मोहम्मद नवेद शमसी, रजिया शमसी और बेबी का। बिलराम गेट कासगंज से हैं एम असलम सैफी, जबुनिशा बेगम, अक्रम सैफी और आबाद खान। बुड़गहन से हैं छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, राम शरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता प्रजापति और शशिकांता प्रजापति। गांव कुमार हेड़ा जिला सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, गुलजार जहां, अजहर हसन, इब्राहिम, नाजिया और आफिया। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हर

से मीका, बलविंदर विरक, जैतिक विरक और मीका विरक मलोट कैंप पंजाब से हैं। सतीश मिगलानी, सीमा शाइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया अनमोल, धर्मपाल और रमेश मिगलानी डाबर तालाब लोनी से हैं। रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा का आप सभी लोगों ने पसंद किया है घराना फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है अमित कुमार और अलका याग्निक ने।

मेगाहर्ट्ज यानी आकाशवाणी बरेली आपके सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत, आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@gmail.com।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली ऑन 100.4 FM पर। और ये पत्र हम तक पहुंचा है आप सभी का, मनकारा मंदिर वीडियो कॉलोनी करगना बरेली से हैं बेरी सिंह सागर, पनीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता, दिव्या, रचना, श्रीमती ओमवती भारती, रवनक, शुगुन, सारांश, आयाश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रताप सिंह का। वजीरगंज जिला बदायूं से हैं प्रेम कमल वाशने, सुशीला कमल वाशने, प्रभात, अमरीश, सलोनी, सचिन, नीरू, देविका, कार्तिक और वेदरिचा। साथी हैं ऐश्वर्या कमल वाशने। ग्राम रट्टे नगला अलीगंज एटा से हैं दीपक शाके, ज्योति शाके, अंकित शाके, पूजा और सक्षम। मोहल्ला हलवाइयां शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कौसर का। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं अभिजीत घबड़ाकर, राही सरिता घबड़ाकर, सिद्धांत घबड़ाकर, प्रिंस एकांश घबड़ाकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से हैं शैलेश घबड़ाकर, वैशाली, श्वेता सुमित, कुमारी ध्वनि घबड़ाकर, परीका। अजीत नगर मलोट पंजाब से हैं छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और रौनकदीप कौर का। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से हैं कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, पोत्रा मुस्तावा खान, राउत भाई, शाहिद भाई। गांधी बाग अकोला से हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। सिंधौली मीरगंज बरेली से हैं जीशान वारसी, अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, नावेद खान और इरम शेख। प्रणा तालाब डुमराव से हैं वली उल्लाह अंसारी, अरमानाज अंसारी और इनकी बेटी है सोनम। सारिंगपुर बक्सर से हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और मोहम्मद समी अंसारी। इंदिरा बिहार दिल्ली से हैं डब्लू अंसारी, बेबी अंसारी। छटिया पोखरा डुमराव से हैं लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, थनक्ष, आरू साहू। कुंज निवास धाकुंज इज्जतनगर बरेली से हैं वीके जौहरी विनोद, अर्चना जौहरी, अर्पित जौहरी और शायना बी। राजनंद गांव से हैं याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा और जेल रोड रायगढ़ से हैं रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है भीगी पलकें।

0: FM 100.4 MHz यानी आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@gmail.com।
1: श्रोताओं, ये पत्र हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। जिला खंडवा ग्राम लोहारी से हैं राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धनजे का। खुर्दी रोड मानपुर से हैं विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। पीपरपारा पालचुआ मुंगेर छत्तीसगढ़ से हैं उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन वंशिका दिवाकर। कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 प्राण शहर बरेली से हैं अनोखीलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश रिंके, कपिल वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति का। प्रमीलागंज आलोड जिला रतलाम मध्य प्रदेश से हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति, अतुल पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा का। ग्राम अमलेश्वर से हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति, प्रियांश और गुड़िया ठाकुर का। ग्राम बठेना पाटन से हैं बलकरण, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, मुरली, शिवम। चटौदा सारा गांव से हैं सुजान, सुहद्रा वर्मा, आयुषी, निर्मला और कृष वर्मा का। मॉडल टाउन करनाल से हैं आप सभी लोग सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप कुगलानी, जगमोहन सिंह प्रजापति। दौलतबाग मुरादाबाद से हैं जाफर हुसैन।

नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी, सुंदरखेड़, राजमाता नगर, बुलढाणा महाराष्ट्र से हैं नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार, लक्षनपुर से हैं रामजी साहू, जीवन लाल रजक, मोपका भट्टापारा से हैं देवेंद्र कुमार साहू, लक्की हर्षित और सुमित्रा साहू, बरेली जंक्शन से हैं गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, मोहन लाल, सोनू, विक्की भारद्वाज, पदम भारद्वाज, सुंदर भाई, प्रदीप पाल और नमन का, करगैना करेली बरेली से हैं गणेश कुमार, शगुन शर्मा, कार्तिक शर्मा, युवराज, इशिता, वीर, संदीप, चंचल, सूरज, चिंकी, अब्रार अंसारी और लाल मोहम्मद अंसारी। आप सभी ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है दिल का क्या कसूर और इस गीत को गाया है आशा भोसले और कुमार सानू ने।

0: मेगाहर्ट्ज़ यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।
1: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं अपने पत्रों पर आधारित अनुरोध गीत, और ये पत्र हम तक पहुंचा है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुविहा नेवादा गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय शेरपुर कला गाजीपुर से हैं, अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय कस्बा शीशगढ़ से हैं, गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी, जिला बदायूं कस्बा बिलसी से हैं रहमान अलवी, अनोखी बेगम अलवी, फिरासत अलवी, गुलशन अलवी, जानवी अलवी, हानिया अलवी, निजाकत अलवी, शाहीन, आहिल बाबू और आदिल अलवी का। कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता का। मिलक भूजपुर आशा जिला मुरादाबाद बड़ी मस्जिद के पास से हैं रजा हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन और शहजाद हुसैन। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, रतरेंगी से हैं भागवत वर्मा, लेवई से हैं गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से हैं विश्वनाथ साहू, चर डोगरी विपरिया से हैं दुर्गाराम साहू। जिला जालना से हैं आप सभी लोग सुरेश अप्पा दसमले, सौरभ दसमले, सुधाकर, जयश्री दसमले, शिवानी दसमले, अर्चना काटे, आकांक्षा काटे और इनके परिवार के सभी सदस्य। मस्तानपुरा से हैं आप सभी लोग अनंता भगत, अरुणा भगत, लोचना भगत और चेतन कुमार भगत। कृष्णा नगर टीवी टावर, सेमेरी हिल्स नागपुर से हैं नाना डोंगर दिवे, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई डोंगर दिवे, रीमाताई, दीक्षाताई और राहुल डोंगर दिवे का। वीरमगांव गुजरात से हैं हेतल कृष्णा, जैमिन भवसार, अजीत भवसार और भावेश सनी का। रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हैं हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर बाई, प्रभुलाल बागरी, सत्यम, शिवम और साथी हैं सुंदरम। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से हैं अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निसार, मस्तान बाबा, मोहम्मद तबरेज अंसारी, लालू अंसारी। गांव चौहलदा बागपत से हैं संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, मुस्कान और कुणाल। बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास से चनेटी बरेली से हैं विनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है मेहरबान। इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम ने।

4 मेगाहर्ट्ज यानी आकाशवाणी बरेली आपके सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत, आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें

0: तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareilycbs@gmail.com।
1: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।

श्रोताओं, इस समय आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। जहां हैं आप वहां हैं हम। और ये पत्र हम तक पहुंचा है अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद बहादुरगंज गाजीपुर से हैं, आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद, आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंटी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा, पीर बहुड़ा परेली से हैं आजाद खां, दिलशाद, मुस्तकीम और तबस्सुम का, मोहल्ला तलैया उड़ला जागीर से हैं फजरुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई, रामप्रसाद शर्मा, बबलू अलवी, वेड़ी से हैं अंजुम भाई और खालिदा बेगम, पहली जंक्शन से हैं गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, विक्की भारद्वाज, अमान भारद्वाज, महीपाल, प्रदीप पाल, नमन, संतोष, नीतीश और सोनू का, नगरिया सोवरनी शीशगढ़ बरेली से हैं आप सभी लोग जगवंती देवी, संतोष शर्मा, अंजू पाठक, राजीव और रघुवीर पाठक का, परी महल कासगंज से हैं आवाद खान, गजाला खान, अल्ताफ नबील, गंज डुंडवारा से हैं शमसुल कमर राही, यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार, ग्राम बहरामपुर जिला खरगोन मध्य प्रदेश से हैं त्रिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन, समर राज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा, फूलबाग किला छावनी बरेली से हैं विशन दत्त भारद्वाज, शिवदत्त भारद्वाज, गंगा दत्त, विक्की, वर्षा, कविता, कल्पना, ईशु, भावना, आदित्य, देवकी देवी भारद्वाज, शिप्रा नीलम भारद्वाज, मुन्नी देवी भारद्वाज और श्री राम राठौर का, खुर्जा उत्तर प्रदेश से हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा, और ग्राम शकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से हैं सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद यादव, सनोज यादव, अमन यादव, सोनी, अंकिता यादव, विनीता, अनीता यादव, सुनीता यादव और सूरजश्री यादव का, खमरिया बिलासपुर से हैं साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति और प्रतीक कुमार, बक्सरिया फैजपुर बरेली से हैं रामप्रसाद तोमर, मुरली देवी, मनोरमा देवी, भाग्यवती तोमर और अक्षपाल राठौर का, साथी हैं बिट्टू तोमर। और ये पत्र हमारे पास पहुंचा है आप सभी लोगों का, रजऊ परसपुर से हैं बहादुर, आरिफ, शाहिफ, राशिद और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। और ये पत्र हमारे पास पहुंचा है जिला बदायूं कादर चौक से हैं यामीन, शामीन, राफिया, नाजिया, अल्फिया और राबिया बेगम का। आप सभी ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है मेरे यार की शादी है इसका टाइटल सॉन्ग और इस गीत को गाया है उदित नारायण, सोनू निगम और अलका याग्निक ने।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत रोचना मिश्रा के साथ। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 2 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जनमंच।
1: सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम जनमंच में, और आज के हमारे जनमंच कार्यक्रम का विषय है सरकारी योजनाओं से बदलता गांव का स्वरूप। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने बुलाया है ग्राम चेना नवाबगंज बरेली से बुंदन बख्श जी को, श्री छेदालाल जी को और रूफी अली जी को। आप लोगों का कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: अब हम छेदालाल जी आपसे जानना चाहते हैं कि कौन सी सरकारी योजना का लाभ आप उठा रहे हैं? किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है?
3: हाँ, मिल रहा है।
1: क्या फायदा है उससे?
3: फायदा हमारे लिए, हमने पहले जब वो लेकर आ था बैंक लोन
1: केसीसी के थ्रू,
3: हमने मकान बनाया। मकान बनाने के बाद में हमने खेती पैदा करी थी, तो उसके बाद में हमें सिलेंडर भी मिलता है।
1: अच्छा,
3: केसीसी है,
1: मतलब केसीसी जो योजना है किसान क्रेडिट कार्ड, उसका लाभ भी उठा रहे हो।
3: हाँ।
1: और उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर भी
3: उसका भी उठा रहे हैं।
1: और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है आपको?
3: हाँ, मिल रहा है।
1: तो उसमें क्या मिलता है?
3: खाने पीने के लिए वाली बच्चे हमें फ्री मिल रहा है। पहले तो मुझे पैसे देने मिलता था, अब फ्री मिल रहा है। सब
1: फ्री मिल रहा है। तो जो गल्ला है, गल्ला आपको राशन की दुकान गाँव में ही है?
3: नहीं, बरखन में है।
1: बरखन में है। तो कैसे मिलता है गल्ला, किस हिसाब से मिलता है राशन की दुकान से?
3: राशन दुकान तो हम जाते हैं, जाने पता है अंगूठा लगाने के लिए। अंगूठा लगाने जाए तो उसके बाद में गल्ला मिलता है।
1: तो कितने सदस्य हो आप घर में?
3: घर में हमें 7 जने।
1: तो कितना गल्ला मिलता है?
3: 35 किलो हो गया हम लोग।
1: 5 किलो हर आदमी के हिसाब से मिलता है।
3: हाँ।
1: तो इससे क्या लाभ हुआ है आपको जो सरकारी गल्ला मिलता है?
3: सरकारी गल्ला जो लाभ मिलता है, फ्री में खा रहे हैं।
1: हाँ हाँ,
3: हमारे बाली बच्चे सब पल रहे हैं।
1: पल रहे। तो मतलब सरकार जो है गांव के विकास में काफी योगदान कर रही है।
3: योगदान कर रही
1: है, बिल्कुल। रूफी अली जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, एक योजना है उज्ज्वला योजना, जिसके तहत गांव में सिलेंडर बांटे गए हैं महिलाओं को, जो पात्र महिलाएं थी उनको सिलेंडर मिला है। इससे क्या फायदा हुआ है लोगों को?
4: सर, हमें बहुत फायदा है। हमारी माँ बहने पहले खत घर जो कच्चे थे उसमें धुआं धक्कड़ ज्यादा होता था, और हमारी माँ बहने परेशान होती थी, बीमार होती थी, और देरी काफी होती थी। अब जल्दी से खाना पकता है, स्वस्थ खाना बनता है, और अच्छे से माँ बहने भी हमारी रहती हैं।
1: जी जी, बहुत अच्छी। रूफी अली जी, आपने बात बताई कि सिलेंडर मिलने से जो माँ बहनाएं हैं उनको बड़ा सुकून मिला।
4: सुकून मिला।
1: देखो, ईंधन से धुआं आता था,
4: धुआं आता था, धूम में खाना पकाती थी, लकड़ी गीली होती थी, नई भी होती, ऐसी गुजारा करती थी, और सब्सिडी भी ज्यादा मिल रही है।
1: बिल्कुल। तो मतलब एक तो ये हुआ कि सिलेंडर मिलने से जो बीमारियां हमारे घर की महिलाओं को हो जाती धुएं से, और आपने देखा है खास करके चौमासे के महीने में जब ईंधन गीला होता था
4: तब तो बहुत दिक्कत होती थी।
1: हाँ, तो ये एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है हमारी केंद्र।
4: अच्छी योजना, बहुत बढ़िया योजना चलाई है।
1: अब बात करते हैं बुंदन बख्श जी से। बुंदन बख्श जी, आप कौन सी योजना का लाभ उठा रहे हैं?
5: हम हर योजना का लाभ उठा रहे हैं। हम सम्मान निधि हमें जो मिल रही है उससे हम खेती में पैसे लगाते हैं, फसल उससे अच्छी होती है हमारी, पानी भी लगाते हैं, सौर ऊर्जा हमारे पास है।
1: बिल्कुल।
5: हाँ, उससे हम पानी अपनी खेती में समय समय पे लगाते हैं, उससे हमारी खेती सूखती नहीं है।
1: बिल्कुल। देखिए, सरकार का उद्देश्य है कि हम किसानों तक हर योजना का लाभ पहुंचाएं। सरकार जो भी योजनाएं चलाती है वो दृष्टिगत रखती है हम सबको कि किस चीज की आवश्यकता है, उस तरह की योजना चलती है, उसका लाभ हमें लोगों को मिलता है। अब बुंदन बख्श जी, आप बता रहे कि आपको किसान सम्मान निधि मिलती है।

0: है, उससे आप खेतों में दवाई, खाद, पानी की सब व्यवस्था कर
1: हाँ
0: लेते
1: सब
0: हैं।
1: व्यवस्था हम कर लेते हैं, खेती में पैसे ज्यादा लगाते हैं सम्मान निधि वाले। हाँ और अपने पशु भी पालते हैं हम,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और
0: तो
1: उसमें हमारी भैंस भी है, और भैंस के साथ एक पड्डा है, दो पड़ियां हैं,
0: जी जी
1: और
0: जी
1: एक बकरी है, दो बकरे हैं, उससे हम दूध भी बेच लेते हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और हमारी वो सब्जी चल जाती है उससे, और पैसा हम भी इकट्ठा कर लेते हैं उसका।
0: बिल्कुल। सरकारी योजनाओं का लाभ तो उठा ही रहे हैं, साथ ही साथ आप पशुपालन से भी लाभ ले
1: हाँ
0: रहे हैं।
1: पशुपालन से भी लाभ ले रहे हैं हम।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो छेदालाल जी, अब हम आपसे जानना चाहते हैं, जो केसीसी का लोन आपने बताया है, तो वो कैसे मिलता है, क्या क्या जरूरत होती है उसमें कागज की?
2: भामत इसमें कागज अपना बैंक किताब आधार और जमीन खतौना खतरा खतौनी वो लेके गए थे, तब तो हमें लोन मिला था
0: तो उसमें कोई समस्या तो नहीं आती है लोन लेने में?
2: ना, हमें कोई दिक्कत नहीं थी इसमें।
0: अच्छा। तो जब एक बार आप लोन ले लेते हैं, तो उसको कब जमा करना पड़ता है?
2: साल ही साल
0: साल के साल।
2: ब्याज जमा करते हैं,
0: अच्छा,
2: असल नहीं करते हैं,
0: ब्याज जमा कर देते हो और फिर से लौट हो
2: फिर
0: जाती
2: से
0: है।
2: लौट करते हैं।
0: तो जैसे कितना लोन लिया है आपने?
2: लोन तो हमने लिया है 35,000, एक मिला है हमारे लिए और 1,00,000 रुपये एक मिली है।
0: एक मिला है, तो इससे ये फायदा हुआ, एक तो आपने घर बनवा लिया, खेती में भी पैसा लगा।
2: खेती में लगाई है।
0: हाँ। तो बुंदन बख्श जी, और दूसरी एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका लाभ भी किसान भाई उठा रहे हैं गांव में?
1: हाँ
0: बहुत।
1: उठा रहे हैं, बहुत लोग उठा रहे हैं, हम भी उठा रहे हैं। हमने फसल बीमा कराया था, फसल बीमा हमारी एक बार फसल नष्ट हो गई गेहूं की, ओले पड़ने से। हम तहसील गए थे, तहसील में हमने एप्लीकेशन लगाई तो उसमें लेखपाल पहुंचे, सर्वे की, सर्वे करने पर फिर बीघा के साथ 1,500 रुपये बीघा पैसे आए थे, उससे
0: बिल्कुल
1: हमें थोड़ा आराम मिला।
0: बिल्कुल। अब ये है, सरकार तो योजनाएं चलाती है, क्रियान्वयन करती है, लेकिन हम लोगों को भी जागरूक रहना पड़ता है उसका लाभ लेने के
2: लाग
0: लिए।
2: लेंगे।
0: रूफी अली जी, जैसे जो गांव में बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे आपने अभी ये बताया उज्ज्वला योजना का लाभ ले रहे हैं, इसी तरीके की और योजनाओं का लाभ ग्रामीण ले रहे हैं गांव वाले?
3: बहुत ले रहे हैं, भरपूर ले रहे हैं सर जी।
0: अच्छा। क्या क्या लाभ ले रहे हैं, कौन कौन सी योजनाओं का?
3: योजनाओं का आयुष्मान कार्ड है,
0: हाँ
3: किसान क्रेडिट कार्ड है,
0: हाँ
3: और सम्मान निधि है, उज्ज्वला राशन फ्री मिल गया है, सोलर पैनल फ्री सब्सिडी वाले लग रहे हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
3: बहुत सरकार फायदा दे रही है। बढ़िया रोड मिल रहे हैं, बढ़िया स्कूल मिल रहे हैं, बढ़िया अस्पताल मिल रहे हैं।
0: अब जैसे गांव की विकास की बात करें, देखो गांव की विकास की बात तो तभी संभव है जब गांव के आदमी का विकास होगा। तो इन योजनाओं का लाभ लिया है लोगों ने, तो लोगों का विकास हुआ है?
3: बहुत 100%, 100% गांव का भी विकास हो रहा है, आदमी का भी विकास हो रहा है। बढ़िया रोड, बढ़िया सीसी, पहले कीचड़ों में चलते थे, अब बढ़िया सीसी रोडों पे चल रहा है, बढ़िया रोडों पे चल रहा है।
0: भाई, प्रधानमंत्री सड़क, ग्रामीण सड़क योजना एक ऐसी योजना आई जिसने गांव गांव तक सड़क पहुंचाई। अब जैसे हम गांव में रहते हैं, और पहले देखा आपने, खड़ंजे होते थे, चकरोड़े होती थी,
3: गड्ढे होते थे, बहुत
0: बरसात में
3: बहुत धूल
0: निकलना मुश्किल।
3: नाली, बहुत दिक्कत होती थी, गिरते थे, पड़ते थे। अब पक्की सड़क है, अच्छा पानी मिल गया है,
1: मनरेगा है,
3: बढ़िया घर घर पानी, घर घर रोड, मनरेगा की सुविधा, बहुत लाभ मिल रहा है सर।
0: तो बुंदन बख्श जी, जल जीवन मिशन एक योजना चलाई है जिसमें घर घर टंकियां पहुंची
1: घर
0: हैं।
1: घर टंकी है, टंकी से पानी आ रहा है, करीब 410 फीट गहराई का पानी है, उससे बीमारी कम हो रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ उससे, और चेहरा और जो शरीर नहाने में आराम है उससे। हाँ
0: भाई, एक तो बात यह है कि आपको शुद्ध पानी मिल रहा है,
1: शुद्ध
0: जो
1: पानी
0: कि
1: है।
3: पहले
0: हम
3: कम उस पर नल होते थे, कपड़े पीले पड़ जाते थे, दांत पीले पड़ते थे, आदमी बीमार पड़ता था। अब शुद्ध पानी मिल रहा है, अच्छा पीने को, रख के भी बेकार नहीं होता, अपने बहुत आराम मिल रहा है।
0: हाँ बिल्कुल। वो तो जितनी नीचाई से आ रहा है पानी, उतना
3: हाँ
0: शुद्ध है। तो मतलब कहने का ये है कि सरकारी योजनाओं का खूब लाभ गांव
3: खूब
0: वाले लोग
3: भरपूर
2: खूब उठा
3: 100% आदमी उठा रहा है,
0: उठा रहा है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें लाभ नहीं मिल रहा है, तो क्या वजह है?
3: लाभ
1: जागरूक
3: मिलने
1: नहीं है, जागरूक नहीं है। वो प्रधान के भी पास नहीं जाते हैं,
0: की
1: ब्लॉक भी नहीं जाते हैं, बीडीओ एडीओ साहब से नहीं मिलते हैं, तो उन्हें क्या लाभ मिलेगा, वो घर पे ही रहते हैं।
0: सही बात कही बुंदन बख्श जी ने कि आप जब घर से निकलोगे ही नहीं, तो योजनाओं का लाभ कैसे लोगे?
1: कैसे?
0: क्योंकि हर योजना की एक शर्त होती है,
3: शर्त होती है।
0: पात्रता की शर्तें होती हैं। जो जरूरी कागज हैं वो तब तैयार करोगे, तभी
1: हाँ
0: किसी योजना का लाभ
1: साल
0: मिलेगा।
1: मिलेगा,
2: घूमो फिरोगे तो ही मिलेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो बुंदन बख्श जी क्या काम करते हैं आप?
1: हम खेती भी करते हैं, हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं।

0: अच्छा, शिक्षक
1: हाँ
0: भी हैं।
1: शिक्षक भी हैं।
0: तो आप आज बताइए इसी में कि बच्चों को जागरूक करते हैं कि किस तरह से सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ लें घर वाले।
1: हाँ उसमें बच्चे हम कहते हैं और उसको पढ़ाने के लिए और अच्छी पढ़ाई करते हैं, हम ट्यूशन के बजाय पढ़ा रहे हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ आई अर्थ तक के बच्चे पढ़ाते हैं हम।
0: तो कैसा आपको महसूस होता है बच्चों को पढ़ाते समय?
1: पढ़ाते समय हमें अच्छा लगता है,
0: अच्छा।
1: अच्छा उससे हमें भी अनुभव होता है ज्यादा, और अच्छी नई किताबें आ गई हैं, पहले थी पुरानी किताबें, उनसे अब जागरूक आदमी ज्यादा है।
0: जैसे बच्चे अगर पढ़ लिख लेंगे तो उन्हें क्या फायदा चल मिलेगा आगे चल के?
1: फायदा अगले चल के जो नेट का सिस्टम है, वो नेट वाला सिस्टम, बच्चे अधिक से अधिक जानकारी ले रहे हैं, उससे आदमी ज्यादा जानकार बच्चे हैं। पिछले जो पुराने लोग थे वो कम नॉलेज थी उनके पास, अब जो नॉलेज ज्यादा है बच्चों में,
0: बच्चे होशियार
1: बच्चे
0: हैं
1: होशियार हैं,
0: और सीख भी रहे हैं।
1: सीख
0: दूसरी
1: रहे हैं।
0: बात यह है कि कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं सरकार द्वारा, जहां मतलब जैसे जो आदमी काम कर सकता है, चाहे लकड़ी का काम कर सकता है, मशीनों का काम कर सकता
1: हाँ
0: है, रिसाइकिल रिपेयरिंग का काम कर सकता है, तो ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों पे भी लोग जा रहे हैं, भेज रहे हैं बच्चों
1: हाँ
0: को।
1: भेज रहे हैं, उससे कपड़ा कटिंग का काम कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं बच्चे, और साइकिल भी संभाल रहे हैं और मोटरसाइकिल भी संभाल रहे हैं।
0: जी
1: वो
0: जी
1: पढ़ाई के अनुसार भी है, उसमें जो पुर्जे का नाम होता है वो लिखने में आसानी होती उन्हें।
0: आसानी होती है। तो रूफी अली जी, आप बताइए, जो सरकार योजनाएं चला रही है, चाहे तो वो पढ़ाई के क्षेत्र में है, गांव के विकास के क्षेत्र में है, तो उनका किस तरह से, गांव में कोई दिक्कत तो नहीं आती है लोगों को?
2: कोई दिक्कत नहीं है।
0: छेदालाल जी, आपने बताया आपके पास आयुष्मान कार्ड भी है, उससे क्या फायदा मिलता है?
3: उससे फायदा यही मिलता है, इलाज फ्री होता है हमारा, खाने को पैसा हो जाता है, जुगाड़ जुगाड़ सब भी अपने कमा रहे हैं, अपने खाए पी रहे हैं, इलाज फ्री चल आए,
0: इलाज फ्री। तो कितने लाख तक का इलाज मिल जाता है उसमें फ्री?
3: कम से कम 5 लाख रुपए तक।
0: 5 लाख। तो उसमें कितने लोग हैं आपके आयुष्मान कार्ड में?
3: आयुष्मान कार्ड में 5 लोग, 4 लोग
0: 4 लोग। तो सभी को मतलब 5-5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में मिल
3: मुफ्त में,
0: सकता
3: हाँ फिर
0: है।
3: मिलते हैं।
0: इस योजना के बारे में क्या कहना चाहती हो आज?
3: तो हम तो इसको योजना के लिए बहुत बढ़िया समझते हैं इसे, कि हम पूरा लाभ मिल लिया इससे तो, और पैदा कर रहे हैं अपने, खाए पी रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
0: कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, इसका लाभ लेने के लिए क्या काम करना पड़ा आपको?
3: स्मार्ट कार्ड जो गए थे नवाबगंज, सबसे पहले शुरू शुरू में बना था भाई नवाबगंज स्कूल में, तो लेखपाल साहब बोले बोले स्मार्ट कार्ड बन रहे हैं, पहुंचो जाए हुन, तो हम लोग हम गए हुन, उनने लिया कुछ नहीं, उनने बैठा रहा, फोटो खींचा, उनने बना दिया।
0: बिल्कुल, आपका नाम लिस्ट में होगा।
3: हाँ नाम लिस्ट में था।
0: हाँ, अच्छा, आपने देखा है रूफी अली जी, गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आवास भी मिले,
2: आवास
0: तो
2: मिले
0: आवास जो मिले हैं तो उससे क्या फायदा हुआ है ग्रामीणों को?
2: पहले गांव में छत कच्चे मकान होते थे, आदमी परेशान होता था, हमारा मकान कच्चा है, छतें टपक रही हैं। अब आदमी भरपूर अपने छाए में रह रहा है, भरपूर अपने खा पी रहा है आराम से, घर की टेंशन होती थी, हमारा घर कच्चा है, हम कहाँ कमाने जाएंगे, क्या घर करेंगे, सरकार पूरी योजना दे रही है, लैट्रिन बाथरूम की बहुत बहुत अच्छी, लोग खेतों में जाया करते थे, अब तो स्वच्छ भारत योजना चली है, इससे बहुत आदमी अपने
0: हाँ,
2: संतुष्ट
0: मतलब आवास योजना से ये है कि जिनके पास, बेचारों के पास रहने को घर नहीं
2: है,
0: था,
2: नहीं थे
0: उनको घर मिला है, अब वो सुरक्षित तरीके से रह रहे हैं, आंधी बारिश सबसे
2: बारिश,
0: अपना बचाव कर पा रहे हैं।
2: पूरा परिवार संतुष्ट अपने अच्छे उससे रह रहा है।
0: बिल्कुल बुंदन बख्श जी, एक स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक योजना चलाई गई है घर घर शौचालय निर्माण की, उसकी स्थिति आपके गांव में क्या है?
1: हमारे गांव में स्थिति ये है, अब बाहर लैट्रिन करने के लिए कोई नहीं जा रहा है, नहीं पुरुष जा रहा है, नहीं महिला जा रही, नहीं बच्चे जा रहे हैं, वो अपने शौचालय को प्रयोग कर रहे हैं, और वहां पर पानी की टंकी भी पहुंच गई है, उस टंकी से पानी भी डालने में आराम मिल गया है। बुजुर्ग लोग हैं वो परेशान लैट्रिन जाने के लिए बेरार होते थे, अब वो परेशानी उनकी दूर हो गई है, घर घर शौचालय बनने से आराम मिला है।
0: और देखो, कई बार क्या है कि बरसात हो रही है और
2: बरसात हो रही
0: हमें
2: है,
0: लैट्रिन जाना है,
1: जाना है,
0: तो फिर कितनी बड़ी समस्या होती थी गांव में, है, और जाना पड़ता था, उसके लिए रोक भी नहीं सकते। तो ऐसे में जो शौचालय घर घर बनाए गए हैं उससे कितना फायदा हुआ है?
1: बहुत फायदा हुआ है,
2: बहुत।
1: परेशानी दूर हुई है, उससे चोट भी लग जाती थी, बरसात में जाते थे गिर जाते थे, कहीं पैर टूट गया, कहीं हाथ टूट गया, कोई चोट लग गई तो वहां फिर डॉक्टर के लिए जाने पड़ता था,
0: जंगल में कीड़ा मकोड़ा
1: हाँ
0: भी काट
1: कीड़ा में,
0: लेता था,
1: हाँ
0: और महिलाओं के लिए तो
2: बहुत,
0: असुरक्षा भी थी।
1: हाँ
2: हम
1: सुरक्षा
2: सुरक्षा थी,
1: थी
2: अब बहुत सुरक्षा, अपने घर में ही सेफ है अपने।
0: हाँ, सेफ है, जब महिलाएं जंगल में नहीं जाएं।

0: तो
1: नहीं जाएंगे तो
0: सुरक्षित रहेंगी,
1: सुरक्षित
0: कई
1: रहेंगी,
0: बार यौन हिंसा का शिकार हो जाती हैं
1: शिकार हो जाती
0: महिलाएं।
1: थी
0: तो ये सब योजनाओं का लाभ बहुत
2: बहुत।
1: हाँ जी,
2: घर
1: बहुत
2: घर लाभ घर घर पहुंच रहा है जी।
1: बहुत लाभ
0: हाँ
1: पहुंचे
0: जी,
1: हैं सरकार ने।
2: प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी योजना चलाई थी जी।
0: जी। अब बात करते हैं जैसे स्वास्थ्य के लिए है, जिसके आयुष्मान कार्ड बने हैं उनके लिए तो योजनाएं हैं, और सरकारी अस्पतालों की स्थिति में भी अब बदलाव
1: बहुत
0: हुआ,
1: बदलाव है।
2: बदलाव
0: कैसे देखते हैं उसको आप?
2: सरकारी अस्पताल में हम जाते हैं तो 1 रुपए का पर्चा बनता है, उसमें डॉक्टर चेक भी करता है तो बुखार है या कोई कमी और है पैर में या आंख में या कोई जगह है, वो चेकअप करके दवाई देते हैं। दवाई उस दवाई से फिर लाभ होता है, फिर 2-3 दिन की दवाई मिलती है और फिर दोबारा फिर जाते हैं, उस पर्चे से 15 दिन तक दवाई मिलती है।
0: बिल्कुल। तो गांव में ये सुविधा हो गई है कि अब मान लो हम सरकारी अस्पताल से दवा लेंगे तो
1: दवा
0: हमारे
1: लेंगे,
0: पैसे की
1: पैसे
0: बचत होगी।
1: बचाऊंगे।
0: तो केसीसी के माध्यम से, और आपके गांव की क्या स्थिति है, किसान भाई लाभ ले रहे हैं केसीसी का?
3: हाँ, लाभ ले रहे हैं,
0: अच्छा, तो कैसे, क्या लोगों की तरक्की हुई है?
3: बहुत तरक्की हुई है हमारे गांव में, बहुत तरक्की हुई है।
0: अच्छा।
2: केसीसी हमने करवाया था अपनी जमीन पर, 1 एकड़ पर, उससे हमने कराया था, करीब 80,000 रुपए मिला। 80,000 रुपए मिलने से हमने एक कमरा बना लिया और उससे हमने एक करीब गाय ली थी, गाय एक भैंस ली। ब्लॉक गए थे, ब्लॉक जाने पर हमें एक भैंस के लिए उससे लोन मिला, वो लोन लेने से हमें आधे उसको पैसा जमा करना पड़ा, आधी हमें छूट मिल गई
0: हाँ
2: और दूध का हमने प्रयोग किया था घर पर भी और आधा अपना बेच देते थे।
0: हाँ
2: उससे हमारे बच्चे और जागरूक हो गए और हमें पढ़ाई में खर्चा आराम मिला और पैसे ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे हो गए।
0: बिल्कुल। तो जैसे बात है कि हम अगर जो लोन लिया हमने सरकार से, देखो
2: हाँ,
0: सरकार तो योजनाएं चला रही
2: योजना
0: है,
2: चला रही है।
0: हमें केसीसी के थ्रू लोन लिया, घर का काम किया, खेती में पैसा लगाया, कुछ भाई हमारे भैंस खरीदी, गाय
2: गार
0: खरीदी,
2: खरीदी
0: और आज उन्होंने भैंस और गाय खरीद के दूध का काम शुरू कर दिया, तो उससे और इनकम हुई। तो सरकार जो पैसा देती है या लोन के माध्यम से हम जो पैसा लेते हैं वो बहुत सुरक्षित है, लेकिन बस ये उसे लेके भूलना नहीं चाहिए,
1: भूलना नहीं
2: नहीं
1: चाहिए,
2: चाहिए।
1: हमें ध्यान रखना चाहिए,
2: समय समय से उसका निपटारा करें।
0: निपटारा करें, क्योंकि अगर हम समय से लोन देते रहेंगे तो हम एक बैंक की नजर में
2: अच्छे अच्छे आदमी आएंगे।
0: अच्छे कस्टमर रहेंगे तो बैंक भी हमें कभी भी लोन देने से मना नहीं
1: मना
0: करेगा।
1: नहीं करेगा, आगे चल के आसानी होगी।
0: बिल्कुल। तो अब रूफी अली जी, जैसे आप युवा हो, गांव में रहते हो, गांव के विकास की बात हर आदमी को सोचनी पड़ती है, केवल गांव का प्रधान ही नहीं, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है
1: जिम्मेदारी है।
0: कि गांव के विकास में सहयोग दें। तो आप युवा हो तो आप कैसे गांव में भलाई का काम कर सकते हो, किस तरह के काम कर सकते हो?
1: मैं तो सर ऑटो चालक हूँ, ऑटो चलाता हूँ। बहुत पहले नुकसान हुआ करता था, अब तो रोड बढ़िया है, कम बना बिगड़ी होती है, मुनाफा ज़्यादा होता है। युवा अच्छे रोजगारी में वो हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं।
0: बिल्कुल। अच्छा, जैसे पहले बुंदन खां जी, आप चूंकि शिक्षक हैं बुंदन बख्श जी,
2: हाँ
0: तो जैसे शिक्षा का जो स्तर था, शिक्षा में इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, गांव गांव स्कूल नहीं
2: हाँ
0: थे,
2: नहीं
0: दूर दूर
2: थी।
0: स्कूल थे, आज क्या स्थिति है?
2: आज तो गांव गांव में स्कूल हैं और बड़े बड़े विद्यालय भी खुल गए हैं, उससे आदमी जागरूक ज्यादा बच्चे हो गए हैं और कंप्यूटर भी लग गए हैं और शिक्षक पढ़े लिखे हैं, फ्री में शिक्षा मिल रही है, उसमें किताबें भी मिल रही हैं
0: बिल्कुल।
2: और ड्रेस भी मिल रही है, खाना भी मिल रहा है।
0: अब देखो कितनी अच्छी सुविधाएं हैं कि सरकार किताबें भी दे रही है, ड्रेस भी दे रही है और खाना
1: खाना
0: भी
1: भी दे
0: खिला रही
1: रही
0: है
1: है,
0: बच्चों
1: रहती
0: को,
1: दे रही है।
0: तो भी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं स्कूल में।
2: बहुत जा रहे हैं बच्चे
0: छेदालाल
2: हमारे
0: जी, आपके कितने बच्चे हैं
3: हमारे 4 हैं,
0: पढ़ने जा रहे हैं स्कूल?
3: पढ़ने भी को नहीं जाता है,
0: क्यों?
3: सब पढ़ गए, बड़े हो गए।
0: अच्छा, बड़े हो गए तो पढ़ाए तो आपने अपने बच्चे।
3: हाँ पढ़ाए थे सब।
0: बिल्कुल। तो बुंदन बख्श जी, आप अपनी बात जारी रखिए भाई, अगर बच्चा शिक्षित होगा तो क्या क्या फायदे होंगे?
2: उससे वो बहरान निकलेगा तो पैसा कंपनी में या नौकरी में फार्म डालेगा तो उसके नौकरी का नंबर आ गया तो अगले विकास बढ़ेगा उसका, उसके बच्चे भी अच्छे होंगे और माँ बाप का भी पालन पोषण अच्छा होगा उसकी नौकरी।
0: बिल्कुल। देखो बच्चे जब हमारे शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे। देखो भले से अगर नौकरी नहीं भी करते हैं तो उन्हें जानकारी होगी कि हमारा क्या अधिकार है,
1: हर काम में आसानी होगी,
0: क्या कर्तव्य है, हम कौन सी योजना का लाभ उठा सकते हैं, क्या क्या कागज चाहिए होगा। अगर हमें जानकारी पढ़े लिखे होंगे तो हम पढ़ के समझ लेंगे कि हमें आधार चाहिए, पैन।

0: कार्ड चाहिए, बैंक खाता चाहिए, खतौनी चाहिए, खसरा चाहिए, लेकिन अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो फिर हम कैसे योजनाओं का लाभ ले
1: कोई
0: पाएंगे?
1: लाभ नहीं पता लगेगा।
0: बिल्कुल, तो योजनाओं का लाभ लेने के लिए शिक्षित
1: शिक्षक
0: होना
1: आदमी होना जरूरी है।
0: जरूरी है। तो छेतालाल जी, और क्या काम करते हो आप?
2: तो बस खेती किसानी करते हैं।
0: खेती किसानी में कौन कौन सी फसलें करते हो?
2: गन्ना वो धान हो गेहूं।
0: तो धान की तैयारी कर रहे हो इस समय?
2: हाँ धान की तैयारी कर रहे हैं।
0: तो धान, कौन सा धान लगाओगे इस बार?
2: धान तो हमने लगाया 26-26,
0: लगा दिया,
2: अभी लगाया नहीं, बेर डाल दी।
0: बेर डाल दी। 26-26 प्रजाति का चयन आपने किया, क्या क्या खासियत है इसकी?
2: वो सही है, खाने में बढ़िया है।
0: अच्छा, और उत्पादन क्या दे देती है?
2: उत्पादन तो यही लगाते हैं इसमें, खाद पानी और नराई फराई करा देते हैं।
0: तो मतलब 3-4 क्विंटल का कट जाता है?
2: हाँ 3 का कट जाता है बहुत आराम से।
0: बहुत आराम से। तो अब जैसे पौध डाल दी है, अब खेतों की तैयारी करोगे धान की रोपाई के लिए,
2: हाँ
0: कैसे करोगे?
2: जुतवाएंगे खेत ट्रैक्टर से, जुतवाएंगे उसके बाद हम कंधार बनवाएंगे, कंधार बनाए फिर लगाएंगे उसे हाथ से।
0: हाथ से लगाएंगे। तो धान की फसल से अच्छा उत्पादन मिले इसके लिए मतलब क्या क्या काम करने होंगे किसान भाइयों को?
2: कहाँ जे काम करने पड़ेगा, उसे नराई करने पड़ेगी, उसकी खाद डालनी पड़ेगी, तो उसके बाद में काटने भी पड़ेगा, जब पक जाएगा तो फसल आ जाएगी, तो फिर उसके बाद में उसकी झड़ाई भी करनी पड़ेगी, तब
0: बिल्कुल
2: तो फिर झाड़ उड़ू तो घर पे लाने पड़ेंगे।
0: लान पड़ेंगे। तो रूफी अली जी, जैसे और भी सरकार बहुत सी योजनाएं चलाती है, कुछ ग्रामीणों के लिए, कुछ महिलाओं के लिए है, गर्भवती महिलाओं को भी बाल विकास योजना के तहत पुष्टाहार मिलता है, और उनको भी रिफाइंड दाल,
1: रिफाइंड
0: दलिया
1: दाल
0: ये सब मिलता
1: दलिया
0: है, इससे क्या फायदा है महिलाओं को?
1: बहुत फायदा है, अपने मिल लिया है, अपने पका रही हैं, खा रही हैं आराम से, टाइम से। नहीं होता था, मजबूर थी, कहाँ जाए लेने, सरकार अब दे रही है उन्हें, टाइम पे दलिया मिल लिया है, दाल मिल रही है टाइम पे, अपने खा पी रही हैं अपने।
0: तो इससे महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।
1: जी
0: बुंदन बख्श जी, बच्चों का टीकाकरण भी सरकार द्वारा कराया
1: हाँ,
0: जाता है, उससे क्या लाभ है और कितने लोग उसका लाभ ले रहे हैं?
1: बहुत लोग लाभ ले रहे हैं। उस बच्चे को पहले तो उसे तोला जाता है कितने बजने का है, उसमें टीकाकरण में फिर उसे बुखार जाड़ा या और कोई बीमारी से बचाव होता है उसे टीकाकरण से। और औरतें भी जानकारी हैं, उससे बीमारी कम लगती है
0: हाँ
1: और उनका जो दूध होता है वो सुरक्षित होता है दलिया से, और उसमें बेसन चना की दाल से बेसन वेसन है, और बच्चों को पकाकर खिला देती हैं वो।
0: बिल्कुल, मतलब ये है कि जो आंगनवाड़ी केंद्रों से महिलाओं को जो मिलता है, उससे महिलाओं के लिए जैसे कुपोषण, कुपोषित नहीं होंगी,
1: हाँ
0: महिलाओं में एनीमिया की शिकार हो जाती थी,
1: हाँ
0: महिलाओं में खून की कमी हो जाती थी, तो आयरन की गोलियां भी वहां से दी जाती हैं।
1: वहाँ दी
0: तो
1: जाती
0: जो
1: हैं।
0: सरकार की सुविधाएं हैं आज, उनमें बड़ा बदलाव हुआ है।
1: हाँ
0: पहले लापरवाही ज्यादा थी, लेकिन अब लापरवाही आपको देखने को नहीं
1: नहीं
0: मिलेगी।
1: मिलेगी।
0: तो सरकार तो अपना प्रयास कर रही है, हम लोगों को, गांव वालों को क्या प्रयास करना चाहिए योजनाओं का लाभ लेने के लिए?
1: प्रयास ये करना चाहिए कि समय से वो आएंगी तो तुम उनके लिए अच्छे तरीके से जाने, वहां पर जाओ पुष्टाहार लेने, तो उनका वो कह रही हैं कि जे ले जाओ या वो ले जाओ सौदा, जैसे दाल है, दलिया है, चना है, जे लेने के लिए जाते हैं तो झगड़ा करते हैं लोग, वो झगड़ा करने से बचाव करें।
0: अब बात करें छेदालाल जी आपसे, तो उज्ज्वला योजना के तहत कितने सिलेंडर सरकार देती है?
2: 12 सिलेंडर देती है।
0: 12 सिलेंडर देती है, लेकिन इसमें कुछ फ्री भी देती है, वो कब कब देती है?
2: वो होली पे और दीपावली पे।
0: होली और दीपावली पर फ्री भी देती है और सब्सिडी भी देती है।
2: हाँ सब्सिडी आती है,
0: कितनी सब्सिडी आ जाती
2: तीन
0: है?
2: सौ आती है।
0: 318 रुपए आती है। तो इससे क्या महसूस करते हैं आप?
2: महसूस भाई महसूस, खाने को मिल लिया खूब आराम से, बना खा के फ्री मिल लिया माल, तो कोई चलो फिर ले आइए रहिए सब्सिडी
0: हाँ।
2: आने से।
0: तो सरकार ने आपके उत्थान के लिए काम किया है, तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे?
2: हाँ
1: हाँ
2: धन्यवाद
1: बहुत
2: धन्यवाद
1: धन्यवाद धन्यवाद
2: बहुत
1: बहुत
2: धन्यवाद,
1: बहुत अच्छी सरकार है।
0: जी, मतलब सरकार जो प्रयास कर रही है गांव के विकास के लिए, ग्रामीणों के विकास के लिए, तो उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? मतलब सरकार अच्छा काम कर रही है,
1: हाँ
0: गांव के विकास में योगदान दे रही है, तो हम सबका भी कर्तव्य है कि सरकार जो योजनाएं चला रही है उनका
1: वो
0: लाभ ले
1: अच्छे ले और सरकार का साथ दें।
0: साथ दें, और अगर हम केसीसी के माध्यम से लोन लेते हैं तो उसको समय पे चुकाएं
1: चुका है
0: और अपना काम भी करते रहें और समय पे लोन भी चुकाते रहें, तभी हम एक अच्छे नागरिक, अच्छे ग्रामीण,
1: बिल्कुल

0: अच्छे ग्रामवासी कहलाएंगे। आज आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि कोई गीत सुनना चाहेंगे कार्यक्रम के आखिर में,
1: कोई अच्छा गीत सुना दिए।
0: ठीक है, हम सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जनमंच 100.4 FM पर। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। आइए अब आपको जोड़ते हैं विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण,
2: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी और नंदा की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे, जब जब फूल खिले फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार।

गीता दत्त की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे प्यासा फिल्म से। साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन की तर्ज थी। आप इस वक्त सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में गीत आप मधुमति फिल्म से सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, सलिल चौधरी का संगीत था।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

मेरे महबूब इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्ट कार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्ट कार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। पहली पेशकश आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। आंखें फिल्म से हमने से लिया है, रवि का संगीत है, साहिर लुधियानवी ने से लिखा।

0: साथ कभी कभी।
1: फिल्म आंखें से लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनना चाहा था इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू ने। साथ ही शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन, रोजी, बिट्टू, साजदा और हिना ने। और उल्लास, माफ कीजिए, अहिल्यानगर केड़गांव से भाऊ साहब नवथर, अक्षय, चंदन, जय कुमार और रुचिता ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

0: सुरेश वाडकर की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम रोग फिल्म से। संतोष आनंद ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी और इसे सुनना चाहा था ककराला बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, अमजद अंसारी और समस्त परिवार ने। उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन ने। जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, विमला देवी, शंभू दयाल खटक ने।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे याराना फिल्म से। अनजान ने इसे लिखा, राजेश रोशन का संगीत था। इसे सुनना चाहा था कपाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक ने। जसपुर उत्तराखंड से रियाद हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन और मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर ने इस गीत को सुनना चाहा था। गंगानगर बीकानेर से कैलाश सैनी, गोविंदा और उत्तम।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे धरती फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इसे सुनना चाहा था रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी रवि और अक्षय शर्मा ने जालंधर से, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता शर्मा और माया कुमार ने।

0: कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजों में गीत आप सुन रहे थे हम है राही प्यार के इस फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहा था छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम ने, अमर सिंहपुरा बीकानेर राजस्थान से सिकंदर अली खान और उनके परिवार ने, और बिलई छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिम्पल देवांगन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मन चाहे गीत यही समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का हिंदी अनुवाद, मृत्युहीन प्राण। हिंदी अनुवादक दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। आइए आज सुनते हैं इस नाटक का पहला भाग।

0: सांझ होती जा रही है। इस पार्क में अकेले अकेले लगता है सचमुच बेंजामिन का सिर फिर गया है। पता नहीं उसकी ऐसी कौन सी गुप्त खबर है जिसे वो मुझसे ही भिजवाना चाहता है। आखिर ये गुप्त खबर हो क्या सकती है? अभी तक किसी का भी कोई पता नहीं, और मैं यहाँ झूठ मूठ चली ही जाऊं अब।
1: जिनी।
0: हाँ
1: जिनी।
0: कौन? बेंच।
1: खामोश। आहिस्ता, इधर इस तरफ,
0: लेकिन
1: इस झाड़ी के पीछे।
0: आखिर मामला क्या है बेंच, इतना छिपा? मुझे तो डर लगने लगा है।
1: तुम्हारे डरने की कोई बात नहीं है जिनी, हमारे यहाँ पहुँचने की खबर पुलिस को पहले लग गई है, इसलिए प्रोग्राम में कुछ चेंज करने पड़े हैं।
0: बेंच, डर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी है।
2: उस तरफ, उधर, जरा और आगे।
1: जिनी, तुम फौरन उस बेंच पर जाकर बैठ जाओ।
0: अच्छा।
2: जुड़ू, भाई बात क्या है? इसी पार्क के पश्चिम वाले गेट की बाईं ओर उनकी मीटिंग होने की बात है। वक्त शाम के 4 बजे का था, पर अब तो सांझ हो चुकी है, कहीं कोई एक भी बदमाश नजर नहीं आया।
3: सर, फिलिप्स ने कहीं हमें गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी?
2: नहीं, फिलिप्स गलत इन्फॉर्मेशन देने वाला आदमी नहीं है। मुझे लगता है जुडू, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है शायद उसकी भनक उन्हें पहले ही लग चुकी है। सच, इन्हें गिने कुछ का

0: वाले कुत्तों पर अभी तक हम काबू नहीं पा सके हैं। दिस डिस्ग्रेसफुल ऑन आवर पार्ट।
1: उस बेंच पर कौन बैठा है? कोई लड़की है शायद, क्यों?
0: हाँ, वही तो देख रहा हूँ।
1: हाँ, बड़ी हिम्मत वाली मालूम पड़ती है छोकरी।
2: ए लड़की, यहाँ अकेली क्या कर रही हो?
0: लुक छिप कर कुछ प्यार मोहब्बत करने आई हो शायद? हाँ
3: नहीं नहीं, मतलब यूं ही जरा घूमने आई थी, बस मैं घर ही जा रही हूँ।
0: ठहरो।
3: हाँ?
0: कितनी देर से तुम यहाँ बैठी?
3: जी बस थोड़ी देर से, मतलब सांझ से।
0: सांझ से? बस जी थोड़ी देर से। और अब इस सांझ ठेले तक?
3: जी मैं खा

0: इस सांझ ठेले तक?
1: जी, मैं घर जा रही हूँ।
2: तुमने यहाँ कोई मीटिंग होती देखी है?
1: मीटिंग? नहीं तो, नहीं देखी।
0: मीटिंग मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है, कुछ लुच्चे लफंगे छोकरों की जमात और क्या।
1: नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा यहाँ। अच्छा तो अब मैं चलूँ?
0: हाँ हाँ, जाओगी
1: जी।
0: जाओगी क्यों नहीं। अच्छा क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो?
1: जी हाँ।
0: कविताएं पढ़ती हो? मान लो जैसे बेंजामिन मोलाइज की कविताएं पढ़ती हो?
1: हाँ पढ़ती हूँ, बहुतेरे पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं।
0: उसे जानती भी हो?
1: बेंजामिन को? अब बेंजामिन को भला जानूंगी कैसे,
2: वो ऐसा कोई खास रिप्यूटेड कवि नहीं है शायद।
1: अच्छा तो अब मैं चलूं।
0: हाँ जाओ जाओ।
2: मिस्टर थॉमसन, बेंजामिन मोलेज क्या बहुत ही डेंजरस एलिमेंट है?
0: आदमी के हिसाब से डेंजरस है कि नहीं नहीं मालूम, बट हिज पेन, उसकी कलम बंदूक से भी ज्यादा खौफनाक है, और कविताएं तो जबरदस्त खतरनाक।
2: ओह।

0: हाँ, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, मृत्यु के अधरों छिपी है, सही शब्द नहीं सूझ रहा, मृत्यु के अधरों छिपी। हाँ, माँ
1: क्यों रे बेंच, क्या बात है, क्यों बुला रहा है?
0: माँ जल्दी से जरा इधर तो आना,
1: सूप उतार कर अभी आती हूँ, जरा रुक।
0: मुझे सही शब्द चाहिए ही, समय बहुत कम है, बस कुछ एक दिनों के बाद सोयोटो दिवस स्मरण का प्रोग्राम है, इसी बीच इसे प्रेस में भी देना है।
1: क्या बात है बेंच, क्यों बुला रहा था?
0: माँ सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये मृत्यु के अधूरों छिपी है के बाद क्या शब्द होगा?
1: इसके बाद क्या होगा, अरे किसका क्या होगा?
0: माँ सुनो ना, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये छिपी है के बाद क्या शब्द होना चाहिए?
1: मुझे नहीं मालूम, जाने क्या ऊटपटांग बके जा रहा है।
0: ऊटपटांग नहीं है माँ, सुनो, मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का, मृत्यु में है सार्थकता सार जीवन का, मृत्यु देती प्रेरणा प्रतिकार करने की, जुल्म का अन्याय का संहार करने की।
1: चुप कर चुप कर, दीवारों के भी कान होते हैं।
0: नहीं माँ, अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा, अब तो मजबूत गले से अपनी आवाज बुलंद करने का वक्त आ गया।
1: नहीं बेंच, ऐसी बातें मुंह से ना निकाल, देखता नहीं देश भर में दिन पर दिन कैसी कैसी घटनाएं घटती जा रही हैं।
0: मैं तो देश के बाहर नहीं हूं माँ, घटनाएं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हमें भी। खैर छोड़ो इन बातों को, पहले मेरी कविता के लिए जरा शब्द तो बताओ।
1: कविता के लिए शब्द?
0: हाँ।
1: अच्छी बात है, तो फिर अपनी लाइन और एक बार बोल।
0: सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, इसके आगे
1: मृत्यु के अधरों छिपी है श्वास जीवन की।
0: श्वास? कोई और शब्द बोलो माँ, कोई दूसरा शब्द बोलो ना।
1: संतरास।
0: संतरास? इस शब्द में जाने कैसी भीरुता मिश्रित नीचता की गंध है माँ, ये तो कायरों की निशानी है।
1: अधरों प्यास शब्द जोड़ता है। हाँ तो फिर इसे लिखो, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
0: और राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक शब्द है माँ, सच माँ, माँ हो माँ, तुम कवि बेंजामिन मोलेस की सचमुच की माँ हो, एक बहुत बड़ी कवित्री, बहुत बड़ी माँ।
1: अरे छोड़ भी, पागल कहीं का।
2: मासी।
0: जीनी।
1: आ बेटी अंदर आ जा। बता क्या खबर है, तेरे माँ बाप सभी अच्छे हैं ना?
2: हाँ मौसी, सभी अच्छी तरह से है। वो परीक्षा नजदीक आ पहुंची है, तभी बेंच से इकोनॉमिक्स के चैप्टर को समझने के लिए आई हूँ।
1: अच्छी बात है, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो।

0: मैं जरा रसोई घर में जाती हूँ।
1: जी अच्छा।
2: जीनी कौन सी परीक्षा तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है?
1: बहुत ही भयंकर परीक्षा बेंच, उसे अग्नि परीक्षा भी कह सकते हो।
2: अच्छा होगी कोई। हाँ? पर इतना जरूर है कि तुम्हारी पहेलियों को समझ पाना मेरे लिए टेढ़ी खीर है। खैर इस कविता को सुनो। मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की, गीत जीवन का सुनाने की लिए अभिलाष, संधि क्षण में पहुंचकर वे हुए घोर हताश, क्रूर निर्मम दानवी निर्लज्ज पंजों में, जकड़कर सीसा उंडेला गर्म आंखों में, यह नहीं प्रतिवाद या संवाद की वेला, ये असह्य अन्याय हमने किस कदर झेला, रक्त रंजित राह पर बढ़कर करो जय घोष, सुप्त मन में रह न जाए उबलता आक्रोश, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
1: वाह वाह क्या बात है बेंच, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यू आर नाउ अ पोएट एंड इन टाइम यू विल बी अ ग्रेट पोएट बेंच।
2: हाँ वो पढ़ते हैं मेरी कविताओं को, इसीलिए तो मुझे छुप छुप कर भागते रहना पड़ रहा है।
1: हाँ
2: हाँ हकीकत यही है। खैर अच्छा बताओ इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ोगी?
1: कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, पढ़ने नहीं आई हूँ।
2: अरे पढ़ने नहीं आई हो तो फिर किस लिए आई हो?
1: किस लिए आई हूँ, क्यों आती हूँ, क्या तुम नहीं जानते?
2: नहीं
1: कुछ भी नहीं समझते।
2: बताओगी नहीं तो समझूंगा कैसे?
1: सारी बातें मुंह से कही नहीं जा सकती बेंच, समझ लेनी पड़ती है। क्यों तुम्हारी बातें सुनने के लिए भागी चली आती हूँ, क्यों तुम्हारी कविताएं मुझे बेचैन कर डालती हैं? क्या तुम मेरी आंखों की भाषा पढ़ नहीं पाते?
2: जिनी तुम्हारी दृष्टि मेरे सीने में एक अजीब लहर सी पैदा कर देती है, मेरी कविताओं को अनुप्रेरित करती है, पर केवल इस तरह की अनुभूतियों को लेकर झूठ मूठ समय बर्बाद करने का वक्त अभी नहीं है जिनी।
1: झूठ मूठ समय बर्बाद क्यों करेंगे बेंच? पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक दूसरे की अनुभूतियों को सच कहकर स्वीकार ही ना करें।
2: देखो दिल की बात दिल में ही रहे तो ठीक है, क्या जरूरत है उसे बाहर सबके सामने खड़ी कर स्वीकृति जताने की?
1: बेंच
2: तुम तो जानती हो मैं खतरनाक राहों का राही हूं, मेरी स्वीकृति का मतलब ही है तुम्हारे ऊपर अतिरिक्त खतरे का बोझ लाद देना, मैं वैसा कतई नहीं करना चाहता जीनी।
1: बेंच तुम्हारे लिए डर से दिन रात मेरा कलेजा कांपता रहता है, भारी बूटों की आवाज कानों में आते ही मैं चौंक चौंक जाती हूँ।
2: मेरे लिए तुम्हारी छाती डर से कांपती है तभी तो मेरा सीना हिम्मत से फूल उठता है जीनी।
1: जरा सावधानी के साथ चला फिरा करो, भेड़िए तुम्हारे चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तुम ही तो मेरी आंखें हो बेंच, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी बेंच।
2: जिनी हाथ छोड़ो, शायद मां आ रही है।
1: अच्छा तो मैं जा रही हूँ मौसी, अब मैं चलती हूँ।
3: लिखाई पढ़ाई हो गई?
1: हाँ मौसी हो गई।
3: अरे थोड़ी चाय तो पी कर जा।
1: नहीं आज रहने दो मौसी, कुछ जल्दी में हूँ, मैं चलती हूँ।
3: बड़ी प्यारी लड़की है,

0: सर बहुत ही भला लड़का है। जहां तक मुझे खबर मिली है बेंजामिन मॉलियस जैसा लड़का उस मोहल्ले में दूसरा और कोई है ही नहीं। लिखाई पढ़ाई स्वभाव
1: विल यू स्टॉप टू डू।
0: यस सर यस मिस्टर थॉमसन मैं तो
1: कुछ नहीं जानता।

0: उसकी लिखी कविताएं पढ़ी हैं तुमने?
1: नहीं, पर मैं
0: कविताओं का हर शब्द एक एक बुलेट है और इन सब का इस्तेमाल किया गया है श्वेत सरकार यानी हम लोगों के खिलाफ।
1: पर बात ऐसी है सर कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली
0: सारी गलत है। बेंजामिन मोलाइस भला लड़का है, उन ब्लैक स्वाइनों के लिए हमारे लिए नहीं, इस बात को याद रखो।
1: यस सर।
0: तुम्हें पता है हमारे सबसे ज्यादा वफादार इन्फॉर्मर फिलिप स्लेपी का इन लोगों ने ही खून किया है।
1: अच्छा, इनकी इतनी हिम्मत, तब तो फौरन इनके खिलाफ कार्रवाई ना करने से दूसरों का मनोबल टूट जाएगा सर।
0: यस, चारों ओर से कॉम्बिंग अभियान शुरू कर दो, काले कुत्तों का एक भी पिल्ला बच ना निकले।
1: ओके सर।
0: मेरा नाम थॉमसन है, स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के थॉमसन द टेरर को भला कौन नहीं जानता। हमारे लोगों पर हाथ उठाकर सोचा है बच निकलोगे बच्चों? सारा कुछ जलाकर राख का डालूंगा। कमान चुटो।
1: यस सर।

0: जेम्स, इतनी रात में भला कौन आया होगा?
1: मैं तो तुमसे कहना ही भूल गया बापू, आज जोहान्सबर्ग गणतंत्र के फ्रंट की एक मीटिंग होगी यहाँ, लगता है वही सब आए हैं, देखता हूँ।
0: तो जेम्स तुम भी?
1: हाँ बापू, मेरे जैसे हजारों हजार लड़के अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए जूझ पड़े हैं जिस स्वाधीनता की लड़ाई में, उस लड़ाई में मैं भी शरीक हूं बापू। आइए आइए मिस्टर जैकब। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार मिस्टर खापड़कर।
2: नमस्कार।
1: बेंज अंदर आ जाओ ना।
3: माँ, हम तुम्हारे वही बेटे हैं, इस बार जीवन की आशा को लौटा लाए हैं, अटल विश्वास का एक कमल खिलाया है माँ।
4: ये क्या तुम्हारी कविता है बेंज?
3: नहीं, एंगोला के प्रसिद्ध कवि ऑगस्टिनो नेटो की है।
1: अरे तुमसे परिचय तो करवा दूं, ये मेरे पिता मिस्टर जोसेफ पिस्से हैं, और आप हैं हमारे संगठन शाखा के नेता टॉम्स जैकब।
2: नमस्कार।
5: नमस्कार।
1: और आप रॉबिन खापड़कर हैं, इनके जिम्मे ही नाटाल प्रदेश का नेतृत्व है।
2: नमस्कार।
5: नमस्कार। खापड़कर माने भारतीय वंश के?
1: हाँ बापू, ये भारतीय वंशोद्भूत हैं।
5: अच्छा अच्छा, बैठिए आप लोग, बैठिए।
1: बाबू जी, बेंजामिन को तो तुम जानते ही हो।
5: अरे इसे भला नहीं जानूंगा मैं। अच्छी तरह से जानता हूँ। यही तो है हमारा कवि सिपाही, जिसके कलम से फूट निकलती है काले लोगों के रुदन खून पसीने से लिखी कविताएं।
3: नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए, भला मुझमें इतनी ताकत कहाँ?
6: अरे भाई, किसकी ताकत कितनी है और वो कहाँ छिपी रहती है, इसे वो खुद भी नहीं जानता।
3: देखिए, अब इस तरह से मुझे ऊपर ना उछालिए मिस्टर जैकब, मैं तो मातृभूमि का एक मामूली अदना सा सेवक हूँ।
5: अच्छा भाई, तुम लोग बातें करो, मैं जरा चाय का पानी चढ़ा।
1: ठीक है बापू। बापू पानी जरा ज्यादा ले लेना, और भी चार पांच जने आएंगे।
5: अच्छा।

0: आज भी नहीं आया बेंच। आज 5 दिन होने को आए और बेटे को घर लौटने की फिक्र तक नहीं। इधर शहर भर में पुलिस वालों ने उथल पुथल मचा रखी है। ईश्वर जाने बेंच क्या करता है, क्या सोचता है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता।
1: मौसी, मौसी।
0: जिन्नी, आओ बेटी, आओ इस कमरे में चलो, आओ बैठो।
2: बेंच की कोई खबर मिली मौसी?
0: अरे मुझे कैसे खबर मिलेगी बेटी, मैं तो तेरे भरोसे ही बैठी हूँ। कोई खबर मिली?
2: मुझे तो कोई खबर नहीं मिली,
0: पर क्या
2: न जाने वो पूछो।
0: जिनी बता बेटी, क्या खबर है मेरे लाल की, बेंच कहाँ है, कैसा है?
2: ऐसी कोई बात नहीं है मौसी, जरूर ठीक ठाक ही होगा। वो एक मीटिंग
0: मीटिंग

0: किसकी मीटिंग?
1: अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की गुप्त शाखा की एक मीटिंग है। शायद पेंज वहीं गया होगा।
0: ये मीटिंग कहाँ है?
1: अब ये तो नहीं मालूम मुझे मौसी।
0: मीटिंग, गुप्त समिति।
1: हाँ।
0: इधर उस पुलिस जासूस फिलिप्स के खून होने के बाद से भेड़ियों की नजरें चारों ओर घूम रही हैं। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा।
1: जरूर अच्छा होगा, ठीक होगा मौसी, निश्चित रूप से सही सलामत होगा। उसे कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जरूर अच्छी तरह से होगा, जरूर राजी खुशी होगा, है ना मौसी?
0: तुम ठीक कहती हो बेटी, मेरा बेंज जरूर राजी खुशी है, राजी खुशी ही रहेगा। हाँ।

0: इस वक्त हमारी स्वाधीनता की लड़ाई जनयुद्ध में बदल चुकी है और यही वजह है कि स्वाभाविक रूप से हमारी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई।
1: इसी सिलसिले में मिस्टर जैकब, मेरा ये निवेदन है कि आज अपनी गुप्त शाखा गठन के पूर्व इतिहास की जानकारी सबको दे दी जाए, क्योंकि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, हालांकि उनके लिए भी ये सब कुछ जानना जरूरी है। मैं समझता हूँ इसी क्षण इस बात को भी निपटा लेना उचित होगा। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है?
2: बिल्कुल, मिस्टर रॉबिन खापड़कर का सुझाव एकदम सही है,
0: लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हम स्वाधीनता संग्राम के मूल स्रोत से कहीं कट ना जाएं, खासकर आम जनता से कहीं दूर ना हो जाएं।
3: तो फिर सुनिए, सन 1952 में चंद काले लोग पैदल चलकर श्वेत आदमियों के खेलकूद के लिए सुरक्षित इलाके में घुसे थे, रंग भेद नीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। उस दिन की उस घटना ने धीरे धीरे आगे चलकर सारे राष्ट्र में अहिंसक प्रतिवाद का रूप ले लिया,
1: और उस प्रतिवाद के कंठों को दबोचने के लिए शार्पेविले की सरकार ने एक जघन्य तरीका अपनाया था।
3: हाँ, 700 राउंड गोली चली, 67 लोग मरे और 186 घायल हुए। उसके बाद ही केवल अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस ने उमखंटो उइसिजुई अथवा राष्ट्रीय बख्तरबंद के नाम से एक सशस्त्र वाहिनी गठित करने का प्रस्ताव पारित किया।
0: कौन हो सकता है? कौन है? अरे, ये तो जोन्सबर्ग के एक नेता मिस्टर रोयंगा की आवाज है। जेम्स, जल्दी से दरवाजा खोलो।
4: अरे, कैसे हुआ ऐसा?
0: क्या बात है?
4: क्या हुआ?
0: खून खून है क्या? किसने ऐसा किया?
5: पुलिस ने
6: पेशवर,
5: यहाँ आने के लिए निकला था, बाद में मालूम हुआ कि कर्फ्यू लग गया, चक्कर काट कर गलियों से आ रहा था कि अचानक देखा अफसर टॉमसन अपने दलबल के साथ सामने मेरी ओर चला आ रहा है।
4: ओ, तब तो उन्होंने आपको जरूर देख लिया होगा।
5: हाँ, देख ही लिया था, तभी तो चेस किया मुझे। मैं एक ऊंची दीवार फांद कर इस ओर भागाया, लेकिन इसके पहले एक गोली लगी मेरे पैर में।
4: ठहरिए, पहले मैं ये बैंडेज बांध दूं।
0: बांधा। देखो, जैसे भी हो, रोयंगा को अभी इसी वक्त डॉक्टर मॉरिस के पास ले जाना होगा।
1: कंधे के सहारे चल सकेंगे ना?
5: जरूर चल सकूंगा।
0: तो फिर बस अब चलिए, और देर करना ठीक नहीं। आइए,
7: पीछे वाले दरवाजे से निकलकर बाईं ओर नहर के रास्ते से चले जाइए।
0: देखो,
7: ईश्वर इनकी रक्षा करे। जेम्स, अब हमें क्या करना चाहिए?
4: बाबू, दरवाजा जरा देर से खोलना।
7: अच्छा, आता हूँ।
8: हिंस!
0: आप लोग
8: जुलूम, अंदर देखो, ये जल्दी, क्विक, कहाँ है ये सब?
9: तो आप ही जोसेफ पिस्से हैं?
7: जी हाँ सर।
9: ये कौन है? सर, वो लड़का है, क्या नाम है तुम्हारा?
0: जी, जेम्स पिस्से।
10: टॉयलेट का दरवाजा खुला है, लगता है उसी ओर से भागे।
7: आखिर मामला क्या है सर? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है।
9: हाथ नीचे कीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। बताइए, अभी अभी पैरों में गोली खाकर जो छोकरा आया था कहाँ गया?
7: यहाँ तो कोई भी नहीं आया सर।
9: शट अप, झूठा कहीं का। किधर है वो शैतान?
10: नहीं सर, उस तरफ कोई नहीं है।
0: मैं सच कह रहा हूँ सर, यहाँ कोई नहीं है।
9: मैं भी तो सच ही जानना चाहता हूँ। तुम्हारे दोस्त के खून के दागों ने हमें

0: चने पर पहुंचा दिया।
1: मिल गया सर।
0: क्या मिल गया?
1: जख्म पर पट्टी नहीं बांधी गई है, ये रही खून में सनी रुई, तभी खून के दाग और पीछे की ओर दिखाई नहीं पड़ रहे।
0: यू आर राइट
1: सर। इसके अलावा इस कमरे में इन दोनों को छोड़कर और भी कम से कम 5 जने थे। अभी कुछ एक मिनट पहले उन लोगों ने यहाँ बैठकर चाय की चुस्कियां ली हैं। ये देखिए, चाय के 7 कप पड़े जो अभी भी ठंडे नहीं हो पाए हैं।
0: तो मिस्टर जोसेफ पित्से, अब जरा बताइए तो सही, आपने अपने उस मेहमान का कहाँ चालान कर दिया
2: जी?
0: समझ तो रहे हैं, हम सब कुछ जान चुके हैं।
2: नहीं जी, मतलब हाँ सर, अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी उधर,
3: हम लोग उसे बिल्कुल नहीं जानते सर।
0: मैंने तुमसे नहीं पूछा है। तो आप कहिए।
4: तारकेश्वर में आयोजित एक समारोह में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
5: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस। और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है, जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर, जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे। और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह, और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
6: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द कंट्री, अ विकसित बंगाल, अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड बंगाल, अ डेवलप्ड इंडिया। The resolve to make the country a Viksit Bharat, a developed India by 2047, to make the lives of the people of our great nation safe, successful and sustainable, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day, because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India, with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams, and we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
5: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने, और जिस तरह की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं, और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहाँ की यह है कि इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसान

0: लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव, या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जा रही है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और यह भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी, और उससे ज्यादा हो गई। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
1: Absolutely, Siddharth, to make the incomes of the farmers go double and triple. When the country develops, we have to take care of every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of the foundation of all the missions, which is Antyodaya. When we keep the last man in mind, we always keep the fact in mind that yes, we have to grow the country, we have to make the country develop, but we have to keep each and every person in the policy, in its execution. We have to take everyone along. And today's event, Siddharth, will be graced by the esteemed presence of course, the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, and apart from him, the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, the Chief Minister of West Bengal, winning a historic election, Sri Suvendu Adhikari, Sri Rajiv Ranjan Singh, the Union Minister of Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Ashwini Vaishnav, Union Minister of Railways, Information Broadcasting and Electronic and Information Technology, Sri Shantanu Thakur, Union Minister of States for Ports, Shipping and Waterways, Sri Sukanta Majumdar, Union Minister of State of Education and Development of Northeast Region, Sri Samik Bhattacharya, Member of Parliament, among many other distinguished guests. And Siddharth, many schemes and many events have been organized across the state and the country in the district and block levels and gram panchayat levels with the support of the KVKs and local agriculture officers, celebrating the day of the release as PM Kisan Utsav Divas. Excitement across the people, farmers gathering at the event, continuous craning of the necks. They are all happy and they wish to see the Prime Minister and they wish to see the promises which the Prime Minister did come true.
0: बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जो जनमानस है, माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही देर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और यहाँ तारकेश्वर में गणमान्य अतिथियों के साथ विशाल जन समुदाय प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है। और जिस तरह से बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जिस तरह का विशाल मैंडेट दिया है, आज बंगाल की जनता अपने लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। और जैसा कि हमने बताया कि आज इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री आर एन रवि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुवेंदु अधिकारी, माननीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय रेल सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री तनु ठाकुर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं।
1: Absolutely, to see these ministers that the people are waiting for, and the people have actually voted for these ministers who will now be gracing the stage. It's actually a very exciting day for everyone. It's not just the financial benefit that is being transferred. It's not just the fact that the PM had made a vow, he had made a promise, and that promise is being coming alive. That promise is, proving to be correct. But the fact that, yes, we are on a mission mode. We as a country, as a people, we are going towards the fact that we have to make this country develop. We have to make a Viksit Bharat till 2047. That's exactly the aim of the Honorable Prime Minister. More than 1 crore farmers are expected to connect to the main event via video conferencing at the Krishi Vigyan Kendras, the KVKs, ICAR institutes and universities, farmer producer organizations, agriculture mandis, PM Kisan Samriddhi Kendras, Prime Minister

0: The rainfall at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. IMD has also predicted heavy rainfall conditions over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and northeastern parts of the country during the day. Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Matheus Cunha starred for the five-time world champions, scoring twice in the first half. Vinicius Junior added a third goal before the break to give Brazil a commanding lead. The score remained unchanged in the second half as Brazil controlled the match and secured all 3 points. And that is the end of this news bulletin.
1: जी हाँ श्रोताओं, हम लोग आपको दोबारा से तारकेश्वर लिए चलते हैं और इस समय अब से कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, सभी को बेसब्री से इंतज़ार है इस कार्यक्रम के शुरू होने का। और आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि पश्चिम बंगाल दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और तारकेश्वर का भी ऐतिहासिक महत्व रहा है। वैभव, अगर तो देखते हैं इसमें, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से 1947 में बंगाल विभाजन की रूपरेखा और निर्णय से जुड़ा है। ये 15 अप्रैल 1947 को तारकेश्वर में ही बंगई हिंदू महासभा का एक महत्वपूर्ण 3 दिन का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के गठन के लिए कदम उठाने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था। और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है।
2: सिद्धार्थ, इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्ट ऑप्रेशन एंड इफ नेसेसरी रिटेलिएट। These were the words of this great man who gave vision to the people of West Bengal that yes, we as part of India have to make India a Soni Ki Chidiya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great. And today's occasion, wherein we remember all those great years during the critical years of 1946 to 1947, Dr. Shyama Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी, तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास। राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को ये दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है। और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है, और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहाँ का साहित्य, वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
2: Absolutely, Siddharth. This is the promise with which the government has been formed in Bengal after years and years of injustice. Now we see that the government And this will be a government, which will be a government of double engine. And today's function, Siddharth, is not just something that we are seeing for the first time. This is the 23rd installment. This is a direct transfer. We don't just see one promise. We see many promises.

0: together, we see an actual execution of the digital Bharat. We see no middlemen. We see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now, and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country. Along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi, the following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity, and limited credit flow. Imagine, we are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers. It's not just the money that is going to the farmers. It is also fertilizers. It is also the good quality of seeds. It is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है, ये ना सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है. और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं. इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है. प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा. 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी. और इसके अलावा, जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्री स्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं. इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा. और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी. तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट.
0: एब्सोल्युटली, एज यू सेड, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी. And I want to say that it won't just be the procurement of things that will happen in a very smooth and a very functional way, but the whole line of credit. Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into those, you get those raw materials into the soil, which is being continuously made fertile by more fertilizers, again, through natural and organic ways. Then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate, again, benefit to the farmers. And then when you get those rates, and when you have to improve, or let's say you have to develop your farms, you have to expand your farms, you get the credit facilities. So at each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. The kisan or the farmer brothers and sisters are getting support from the government, and that is exactly what should happen. That is the feeling, that is the concept of Antyodaya. When you include each and every person who is there in the nook and corner of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get a developed Bharat. That is exactly when you get a Viksit Bharat.
1: बिल्कुल, विकसित भारत की बात आपने की है और एक सरकार की एक जो नई पहल है देश में, जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया जा रहा है, जो मिडिलमैन की भूमिका है उसको खत्म किया जा रहा है ताकि किसानों

0: आपको सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके। आप ऐसा सोचिए कि वैभव किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस होता है या वो प्रोडक्ट होता है उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है कि देश में ज्यादातर जो कोऑपरेटिव्स को हम डेवलप करें, इस फॉर्म को डेवलप करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ें ताकि एक एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले। जैसे आपने आज आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात करी है कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए, और जितनी भी सारी उसमें इस पूरी प्रोसेस में इस पूरी प्रक्रिया में जहां जहां किसानों को चाहे हम किसान की सॉयल की बात करनी हो, चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो, चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो। आज ड्रोन दीदी की बात होती है तो किस तरीके से आज वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है, हम हर तरीके से वैज्ञानिक रूप से किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: Absolutely, Siddharth, the word that you've used and you had used this word earlier as well, which is sashakt banana. That is to make the farmer brothers and sisters empowered. How do you make them empowered exactly? That is the question. And that was probably the question in the mind of the Honorable Prime Minister when he had introduced the Digital India Mission. Because imagine a farmer sitting in one corner of a village somewhere completely disconnected what is going on in the world. But he knows and he trusts the government. And then he realizes that now is a scheme wherein he will be getting a direct transfer. What happens? You go and you get a mobile phone. If you do not have a mobile phone, or if you do have a mobile phone, you learn how to get those applications. That is a new chapter, a new phase in the lives of those farmers. You do not have to depend on anyone else. Now you are self-empowered, you are self-reliant. Aap atmanirbhar hain ki aap swayam wo faisla le paaye, aap swayam us device se. Using that mobile phone, you can do whatever you wish to. You can get that direct transfer, you can check your bank account, you can be a part of the Digital India Mission, you can be a part of the banking system, of the financial system, you can get all those benefits together. And how exactly does that help you? It helps you to be a farmer of the 21st century. It helps you to biodiversify. It helps you to not just get stuck in the rut like the farmers of the yesteryear governments who were just stuck because they did not have the credit support, they did not have the support of the raw materials, they did not have the support of logistics. Imagine the kind of work that is being done through infrastructure, through the line of credit, through raw materials, through credit providing to the farmers. Drone Didi ka apne zikr kiya. How important is that for women now who are earning lakhs and lakhs through a technology that was not even visible a few decades back? What is this drone? What is this thing flying in the air?
0: Even इस तरह की जो तकनीकी है वैभव, आज से एक जैसा कि तुमने कहा कि एक दशक पहले इस तरह की परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते थे कि इसके माध्यम से आप कुछ कर सकते हो। और डिजिटल, जैसा कि आज पीएम किसान के तहत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के खातों में जो पैसे पहुंचने वाले हैं 18,880 करोड़ रुपए, तो ये भी डिजिटल होता जा रहा है। और इस बीच हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं।

0: जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र
0: माननीय
1: मोदी जी
0: प्रधानमंत्री जी का
1: हमारे
0: मंच
1: देश में
0: पर
1: उपस्थित हैं
0: आगमन
1: और
0: हो
1: हम
0: रहा
1: उनका
0: है और
1: हार्दिक
0: वो
1: स्वागत
0: मंच पर
1: और
0: पहुंच
1: अभिनंदन
0: गए हैं,
1: करते हैं।
0: और चारों
1: पश्चिम
0: तरफ
1: बंगाल
0: से
1: दिवस मनाने
0: ये
1: के
0: लोगों की
1: अलावा
0: आवाजें,
1: आज माननीय
0: उनको अभिवादन
1: प्रधानमंत्री
0: करते
1: श्री
0: हुए,
1: नरेंद्र
0: उनका
1: मोदी जी
0: स्वागत करते हुए
1: विभिन्न
0: लोग यहाँ पर
1: मंत्रालय
0: खड़े
1: के
0: हुए
1: कई
0: हैं, और
1: परियोजनाओं
0: माननीय
1: का
0: प्रधानमंत्री महोदय
1: शुभारंभ
0: ने अपना
1: उद्घाटन
0: स्थान ग्रहण
1: तथा
0: कर लिया है
1: राष्ट्र
0: और
1: को समर्पण करेंगे।
0: The Honorable Prime Minister
1: मेरे
0: on the
1: स्वागत के
0: stage
1: साथ
0: sitting along with
1: इंटरनेशनल
0: the Governor of West
1: साथ
0: Bengal, Shri R. N. Ravi, and the Chief
1: इंटरनेशनल
0: Minister of West
1: इवेंट के
0: Bengal, Shri Shuvendu Adhikari,
1: फॉलो
0: people
1: वन
0: craning their
1: प्लीज
0: necks.
1: राइज
0: Now,
1: इंटरनेशनल सॉन्ग
0: the
1: नेशनल
0: national
1: एंथम
0: anthem and the national song.

0: धन्यवाद।
1: Listen to that roar, Siddharth. Listen to those voices coming from Tarkeshwar. Look at those faces, happy faces, craning necks. So excited to see the Honorable Prime Minister. So excited to see their Chief Minister. And so excited for the fact that all the promises that were being made, that have been done, are now coming true, are now being seen, the face of execution. They know that all these things are coming true. And the Honorable Prime Minister getting up from his seat along with the Governor of West Bengal and the Chief Minister of West Bengal.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री, इस समय उनका स्वागत किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं इस समय और प्रधानमंत्री जी के साथ
0: अभिनंदन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी,
2: माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय शुभेंदु अधिकारी जी
0: और सम्मान का प्रतीक है पहले बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति।
2: जी हाँ, बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति, उनको भेंट करते हुए और बंगाल में माँ दुर्गा का बहुत महत्व है और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट देते हुए
0: और आइकॉनिक मिठाई रसगुल्ला यानी रसगुल्ला
2: और वह बंगाल का जो रसगुल्ला है वो तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसको भेंट दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को।
0: जल भरा संदेश यानी संदेश के अंदर रस से भरा हुआ एक अनमोल मिठाई।
1: Siddharth, you should remember that this is not just a culmination of religion, it's not just a culmination of tradition, of legacy, of heritage, of sweetness, of all the things that now people are expecting from the government. The sweetness of those dreams and aspirations that the people have from the Honorable Prime Minister.
2: और वैभव उसकी मिठास यहाँ जो जन समुदाय है उसमें दिख रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को संबोधित और इस समय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो संबोधित करने के लिए आए हैं।
3: वंदे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लौह प्रणाम। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लौह प्रणाम। भारत केसरी, लौह प्रणाम। स्वामी प्रणवानंद, लौह प्रणाम। सम्मानीय देशेर यशस्वी प्रधानमंत्री, गोटा पृथ्वीर सबचेये जनप्रिय नेता, जिनी 140 कोटि भारतवासीर हृदयेर अंतरेर आत्मीय, जिनी निजे के प्रधानमंत्री बोलेन ना, प्रधान सेवक बोलेन, उनाके बाबा तारकनाथेर पुण्यभूमि तारकेश्वरे पश्चिम बंग दिवसे पश्चिम

0: अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: The release of the PM Kisan Nidhi, the 23rd installment being done by the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi with a smile on his face and a confident handshake. Now, this has been released. Various beneficial scheme for the people of the country. Various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways. So many things together being released by the Honorable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
1: इट रिलेट्स टू द गुड प्रोडक्शन, द लेबोरेटरीज दैट आर देयर, इट रिलेट्स टू द पोर्ट्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड, इट रिलेट्स टू द फार्मर प्रोड्यूसर्स।

0: that will be given a fair share in the market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is, of course, of Viksit Bharat for developed India by 2047.
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई। आज 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं।
0: एंड सिद्धार्थ, मोर देन 2 crore वुमेन बेनिफिशरीज आर अमंगस्ट दोज फार्मर्स हु विल बी गेटिंग दिस डायरेक्ट ट्रांसफर, दिस इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि। इमेजिन द लेवल एट विच दिस स्कीम इज नाउ ऑपरेशनलाइज्ड, इज फंक्शनल, इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग। And now, the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is, on stage, Prime Minister Modi.
2: Mahadev. Manch par virajman, Rajpal R.N. Ravi ji. यहाँ के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल

लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की ये तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया।

इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे और आज भी वो मूल्य, इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी। और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, किससे कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को

की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे इसके लिए भी

पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काठमांडू से काज शुरू होए गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी। गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धन्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के 4 जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थामबे ना, एखन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी

जुड़े हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं, देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं, और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं, हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं, हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें, और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है, हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है, जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने, इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं, तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए, और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो। मेरे साथ

0: माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat, developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:32 हो चुके हैं। लीजिए, प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत।

कार्यक्रम अनुरोध गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा। आप हैं कोडवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुविहार नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर। आप हैं जसपुर उत्तराखंड से। परीमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान। ये पत्र हम तक पहुंचा औरंगाबाद से राजेश ताबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश का। नरियावल से तुफैल अहमद अंसारी, नाजमा अंसारी, मीना शर्मा, मस्तान कश्यप और जोगराज शर्मा। मोहल्ला तलैया उल्ला जागीर से फजुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म काला बाजार का ये गीत जिसको गाया है नितिन मुकेश ने। गीत के बोल हैं पयम सईदी के और संगीत निर्देशन राजेश रोशन का।

0: देश के विकास में सहभागी बने।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 एफएम और सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से जनहित में जारी एक सूचना।
2: नमस्कार, मैं सफदर हुसैन, जनसंपर्क अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर मंडल। नीट 2026 परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। परीक्षार्थियों की सुविधा और समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर मंडल द्वारा 21 जून 2026 को कासगंज रावतपुर कासगंज के मध्य विशेष परीक्षा सवारी गाड़ी का संचालन किया जा रहा है। ये विशेष ट्रेन कासगंज से प्रातः 6 बजे प्रस्थान कर गंज डुंडवारा, कायमगंज, फरुखाबाद, कन्नौज एवं बिल्लौर सहित विभिन्न स्टेशनों पर ठहरते हुए पूर्वाह्न 11:05 पर रावतपुर पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन रावतपुर से शाम 7 बजे प्रस्थान कर रात्रि 00:30 पर कासगंज पहुंचेगी। रेलवे प्रशासन का निरंतर प्रयास है कि किसी भी अभ्यर्थियों को आवागमन संबंधी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और वो समय से अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंच सके। सभी परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों से अनुरोध है कि इस विशेष रेल सेवा का अधिकतम लाभ उठाएं तथा यात्रा के लिए समय से स्टेशन पहुंचें। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर मंडल सभी परीक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य एवं परीक्षा में उत्कृष्ट सफलता की मंगल कामना करता है। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आइए अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर, जिसको सुनने का अनुरोध किया है हमारे आप सभी श्रोताओं ने। बरेली जंक्शन से गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, विक्की भारद्वाज, वीरेज सिंह चौहान, सोनू मिश्रा और अजय माथुर। आप हैं दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा और आदिबा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली और कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा, उल्ला आसमा बेलदार। आप हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, रानी, तबस्सुम, रुखसार और मोहम्मद आसिफ। ये पत्र हम तक पहुंचा लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और थनक्ष आरू साहू का। कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से इस गीत को सुनना चाहते हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य। पीर बहोड़ा बरेली से आजाद खां, दिलशाद, मुस्तकीम, तबस्सुम, मेहरुन्निशा। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म बहारों के सपने का ये गीत, जिसको गाया है लता मंगेशकर ने। गीत के बोल मजरू के हैं और संगीत निर्देशन राहुल देव बर्मन का।

श्रोताओं, आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर। आप हैं वार्ड नंबर 16 ककराला बदायूं से मसरूर खान, फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल टिवानसी, शालनी, अरबी खेड़ा, लाडी खेड़ा, जीवन सिंह बूक और समस्त परिवार। ये पत्र हम तक पहुंचा अलीगंज रोड ग्राम मोहलिया से हसरत खान, हशमत खान, अजमत खान, डालमिया, नसरीन, रईस बानू का। खुर्जा उत्तर प्रदेश से इसी गीत को सुनना चाहते हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू साजदा रानी और हिना कौसर। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। और ये पत्र हम तक पहुंचा है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा, सालिया, शोएब खान, साइमा, मुस्तवा, अफिया खान, रऊफ भाई और शहीद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। आप सभी को सुनवाते हैं आप सभी के अनुरोध पर फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई का ये गीत जिसको गाया है लता मंगेशकर ने। गीत के बोल शैलेंद्र के हैं और संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का।

कार्यक्रम का ये गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू निहारिका और वंश बत्ता। आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। गैगटा काशी धर्मपुर बरेली से फहीम खां, सिद्दी गली साबिया। दूनी नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया। आप हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर।

मोहम्मद अलकमा खत्री, अल्तमज खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। ये पत्र हम तक पहुंचा छावनी अशरफ खां पानी की टंकी के पास होली चौक बरेली से। लिखने वाले हमारे श्रोता राम प्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना मनोरमा देवी, अजय पाल, रीता, विनोद, आंता और आपके परिवार के सभी लोग। करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, जगमोहन प्रजापत। आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। लुधियाना पंजाब से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आदिबा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्ला फकीर, डब्लूउल्ला, परवीन, असमा फकीर। बुलंदशहर से बद्रू वली, फर्जू वली और फर्जी वली अंसारी। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म अनपढ़ का ये गीत, जिसको अपनी आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। गीत के बोल राजा मेहंदी अली खां के और संगीत निर्देशन मदन मोहन का।

आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। साथियों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम अनुरोध गीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे युवा

हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, और वेलकम है हमारे सभी लिसनर्स का प्रोग्राम योर वाणी में आपकी आज की रेडियो फ्रेंड नेहा सिंह के साथ। दोस्तों, आज है 20 जून और आज के दिन मनाया जाता है एक बेहद ही स्पेशल डे जो कि है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस। शरणार्थी का मतलब है कि वो लोग जो अपने देश में उत्पीड़न, युद्ध या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण जान बचाकर दूसरे देश में शरण लेने को मजबूर हो जाते हैं, उन्हें हम शरणार्थी यानी कि रेफ्यूजी कहते हैं। इसलिए रेफ्यूजीज को दूसरे देशों में जाकर काफ़ी सारी समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भी यही है कि लोगों को रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम्स के प्रति जागरूक किया जा सके और साथ ही विस्थापित लोगों को सम्मान दिलाना एंड इंटरनेशनल समुदाय ये उनके पुनर्वास व सहायता के लिए सहयोग मांगना। और दोस्तों, ये जो दिवस है ना, वो पहली बार 20 जून साल 2001 को मनाया गया था। यूनाइटेड नेशंस महासभा ने दिसंबर 2000 में एक प्रस्ताव पारित कर इसे आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया था, और ये डेट 1951 के कन्वेंशन रिलेटेड टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चुनी गई थी। और फिर साल 2001 से ये दिवस आज के दिन यानी कि 20 जून को अब से मनाया जाता है। श्रोताओं, अपने प्रोग्राम को हम यूं ही कंटिन्यू रखेंगे, बट युवाणी में आज डांस परेली डांस म्यूजिकल सेगमेंट, तो चलिए सुनते हैं अब कार्यक्रम में आज का पहला गीत।

0: सरकारी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.telilaw.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से जनहित में जारी अब एक सूचना सुनिए।
2: नमस्कार, मैं सफदर हुसैन, जनसंपर्क अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर मंडल। नीट 2026 परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। परीक्षार्थियों की सुविधा और समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर मंडल द्वारा 21 जून 2026 को कासगंज रावतपुर कासगंज के मध्य विशेष परीक्षा सवारी गाड़ी का संचालन किया जा रहा है। ये विशेष ट्रेन कासगंज से प्रातः 6 बजे प्रस्थान कर गंज डुंडवारा कायमगंज फरुखाबाद कन्नौज एवं बिल्लौर सहित विभिन्न स्टेशनों पर ठहरते हुए पूर्वाहन 11:05 पर रावतपुर पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन रावतपुर से शाम 7 बजे प्रस्थान कर रात्रि 00:30 पर कासगंज पहुंचेगी। रेलवे प्रशासन का निरंतर प्रयास है कि किसी भी अभ्यर्थियों को आवागमन संबंधी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और वो समय से अपने परीक्षा केंद्र तक पहुँच सके। सभी परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों से अनुरोध है कि इस विशेष रेल सेवा का अधिकतम लाभ उठाएं तथा यात्रा के लिए समय से स्टेशन पहुंचें। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर मंडल सभी परीक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य एवं परीक्षा में उत्कृष्ट सफलता की मंगल कामना करता है। धन्यवाद।
1: दोस्तों, हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारी हेल्थ। अगर हम फिजिकली हेल्दी नहीं तो हम और भी किसी काम पे फोकस नहीं कर पाते, इसलिए अपनी हेल्थ पर ध्यान देना बेहद ही ज़रूरी है। और आजकल तो हम सबके लाइफस्टाइल भी कितने ख़राब और डिफरेंट हो गए हैं। दिन भर बैठे रहना या फ़ोन चलाते रहना, और आजकल तो बच्चे भी ज़्यादा बाहर नहीं खेलते। फिजिकल मूवमेंट जो है हम सब में ना के बराबर हो गया है, जिससे ओबेसिटी, जॉइंट पेन होना, हाई ब्लड प्रेशर रहना, ऐसी बीमारियाँ भी

0: काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, और ये सब चीज़ें हम सब अपनी डाइट से तो इम्प्रूव कर ही सकते हैं, और इसके साथ साथ योगा के साथ भी इसको हम बेटर बना सकते हैं। ये प्राचीन अभ्यास लोगों को एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, तनाव कम करने और मन, शरीर व आत्मा के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रेरित करता है। और कल तो 21 जून है, और कल के दिन मनाया जाता है एक बेहद ही खास दिवस, यानी कि योग दिवस। ये दिवस हर साल 21 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे हम ग्रीष्म संक्रांति यानी कि समर सोल्स्टिस भी कहते हैं। और योग के दृष्टिकोण से ये दिन आध्यात्मिक जागृति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। और योग के हम सबके जीवन में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, चलिए जानते हैं अब इस वार्ता में हर्षिता के साथ, जो कि एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं।
1: हेलो दोस्तों, मैं हूँ हर्षिता सिंह और मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। योगा करना, हेल्थ पर ध्यान देना स्टार्टिंग से ही मुझे बहुत पसंद था, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा। और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, आई रियलाइज्ड कि क्यों ना इसी फील्ड में अपना कैरियर बनाया जाए, अपनी पढ़ाई की जाए। सो मैंने इंटरमीडिएट के बाद में BSc इन योगा किया और फिर इंटर्नशिप की, और अब मैं खुद योगा क्लासेस लेती हूँ। आज के समय में हमारा लाइफ स्टाइल, ईटिंग हैबिट, सब कुछ बहुत डिफरेंट है। मोस्टली लोगों की जॉब तो बस 8 से 10 घंटे बैठने वाली है, जंक फूड खाना एंड देन फ्री टाइम भी यूं ही वेस्ट कर देना। काफ़ी लोग तो वॉक भी नहीं करते, ना तो खाना खाने के बाद, ना सुबह उठकर, किसी भी समय नहीं। सो ये सब चीज़ें हमारे लिए दोस्तों बीमारियाँ तो लेकर आएंगी ही। ऐसे में योगा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, चाहे आप प्रोफेशनल एथलीट हों या होम मेकर हों या स्टूडेंट हों। ये सबके लिए ज़रूरी है। एंड इसको रेगुलरली करने से हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, जिस कारण शरीर का जो मूवमेंट है वो सुधरता है। हमारी बॉडी के जो पॉस्चर्स हैं वो भी अच्छे होते हैं, जॉइंट पेन में भी रिलीफ मिलता है, हमारी मसल्स टोन्ड होती हैं और उसमें जो शक्ति है वो भी बढ़ती है। दमा, BP जैसी बीमारियों में भी हमें काफ़ी आराम मिलता है, खासकर जिन लोगों को हाई BP की प्रॉब्लम होती है ना, वो भी मेंटेन रहने लगती है। हमारा जो बीपी है वो भी मेंटेन हो जाता है, वेट मैनेज रहता है, हमारी हार्ट हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि हमारे शरीर की जो आर्टरीज हैं उनमें जो भी ब्लॉकेज रहती है वो खुलने लगती है। और अगर आप एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी ज़रूर, और इंजरी के चांसेस भी कम होंगे। एंड नॉर्मली भी आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में सुधार आने लगते हैं, आप अपना काम इजीली कर पाते हैं, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी इम्प्रूव होने लगता है, जिस कारण हमें भूख भी अच्छे से लगती है। एंड कई बार लोगों को प्रॉपर नींद नहीं आती, आपने देखा होगा सोने में परेशानी होती है, तो ये प्रॉब्लम भी योगा करने से दूर होती हैं। फिज़िकल हेल्थ तो इम्प्रूव करता ही है योगा। योगा हमें टेंशन, डिप्रेशन, इस सब से भी बाहर निकालने में मदद करता है। जिन लोगों को मोस्टली हेडेक रहता है या माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है या हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है, योगा एक हद तक उससे भी हमें क्योर दिलाता है। सो इसके जो भी लाभ हैं वो एंडलेस हैं, उनकी हम गिनती ही नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप योगा डेली बेसिस पर अच्छे से करो ना, तो आपको वो बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। लेकिन योगा करते समय एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि जो हमारे पोस्चर्स हैं, हमारे जो योगा आसन हैं वो सही हों, सही से करें उनको, क्योंकि अगर हम उनको ठीक से नहीं करेंगे तो वो हमें फ़ायदे की जगह नुकसान भी पहुँचा सकता है, आपको इंजरी हो सकती है। इसलिए हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए ख़ुद तो योगा करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको भी करने के लिए योगा मोटिवेट करें, बिकॉज हेल्थ कम्स फर्स्ट। अगर आप स्वस्थ हैं तभी तो सब कुछ ठीक है, बट अगर हेल्थ ही नहीं है तो हम किसी भी चीज़ में हम फोकस नहीं कर पाते। अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं होती है तो फिर हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं दोस्तों।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: श्रोताओं, आपको हमारा आज का सवाल याद है ना, जो कि हमने अपने AIRFB बरेली के सोशल मीडिया के पेज के थ्रू पूछा था। हमारा आज का सवाल था कि महाभोज उपन्यास किसने लिखा था। तो आप सभी ने इसका उत्तर ढूंढा कि नहीं? और अगर नहीं भी ढूंढा है तो चलिए हम आपको थोड़ा सा समय और दे देते हैं, इसका आंसर हम आपको बताएंगे डांस बरेली डांस में इस गाने के बाद।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था आज का सवाल कि महाभोज उपन्यास किसने लिखा था, तो ये उपन्यास मन्नु भंडारी जी ने लिखा था एंड 1979 में ये प्रकाशित हुआ था। और ये समकालीन राजनीति में भ्रष्टाचार, सत्ता की लालसा और अपराधियों के साथ राजनेताओं की मिलीभगत पर आधारित एक सशक्त राजनीतिक उपन्यास है। मन्नु भंडारी हिंदी साहित्य की नई कहानी आंदोलन की एक प्रमुख हस्ताक्षर थी और महाभोज के अलावा भी इन्होंने कई सारी कहानियां वे उपन्यास लिखे, जैसे कि आपका बंटी उनका दूसरा सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। और जो हमारे आज का सवाल है उसका जवाब हमारे काफी सारे लिसनर्स ने अपने कमेंट्स के थ्रू बिल्कुल ही सही दिया है, जो कि है जिशान वारसी, हीरामणि वर्मा, अशीति, सुनील सिंह, नंद कुमार ठाकुर, नानक खन्ना, रवि कुमार राहुल, राजवीर सिंह, दिग्दर्शन कौर, लाल मोहम्मद अंसारी, भूपेंद्र जुनेजा और अन्य कई सारे लिसनर्स ने हमारे आज का सवाल

बिल्कुल ही ठीक दिया है। और दोस्तों ऐसे ही कमेंट्स करते रहें और हम आपके नामों को भी यूं ही शामिल करते रहेंगे। वेल डांस बरेली डांस में अब हम सुनते हैं आज का आखिरी गीत।

श्रोताओं, युववाणी कार्यक्रम का समय आज बस यहीं तक सीमित था। अपनी रेडियो साथी नेहा सिंह को दे अनुमति। बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी 100.4 FM पर। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। अब हमारे किसान साथी सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम किसान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: कार्यक्रम किसानवाणी सुन रहे सभी किसान भैया और बहनों, आप सभी को आपके भैया धारा सिंह
2: और भैया कृष्णपाल की
1: राम राम, राम। स्वागत करते हैं भैया बहनों हम आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम किसानवाणी में। जैसा कि कृष्ण भैया आज दिन है शनिवार को और आज के दिन हम पहुंचते हैं अपने किसान भैया बहनों के गांव में और उन लोगों से बातचीत करके फिर हम अन्य किसान भाइयों को सुनवाते हैं। बिल्कुल इसी तरह आज भी गांव में पहुंचेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी अपने भैया बहनों से करेंगे।
2: लेकिन धारा भैया आपको मालूम है कि कार्यक्रम के शुरू में तो अपने भैया बहनों के समक्ष अपने एक सवाल लेके आते हैं।
1: हाँ बात आपकी बिल्कुल ठीक है, तो आज भी हम सवाल पूछेंगे। सवाल है भैया बहनों, काला सोना किस भैंस को कहा जाता है? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, काला सोना किस भैंस को कहा जाता है? इस बारे में आप लोग ढूंढ कर रखिए, हम आपके जवाब से अपने जवाब का मिलान अवश्य कराएंगे और सोशल मीडिया पर भी हमारे किसान भाई इस सवाल के जवाब को दे सकते हैं।
2: धारा भैया देखो, अपने जो किसान भैया बहन हैं सब खेती बाड़ी करते हैं और हर संभव प्रयास जय रहते हैं कि जो खेती बाड़ी कर रहे हैं वास्तव उनको अच्छी आमदनी प्राप्त हो, अच्छा लाभ हो। लेकिन आपको मालूम है कि जो सरकार है हमारी वो भी पूरा जोर दे रही है कि जो हमारे किसान साथी हैं उनकी आय दोगुनी हो, वो तरक्की करें और अच्छे तरीके से अपनों विकास करें। इसीलिए जो है कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं।
1: देखिए योजनाएं तो जो भी चल रही हैं सरकार हम लोगों के भले के लिए चला रही है, लेकिन हम लोग लापरवाही कर जाते हैं कि उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। अब जैसे कि किसान सम्मान निधि योजना की बात करें, बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिनके पास में खेतीबाड़ी है, खतौनी है, उसके बावजूद भी समय से वो उसका लाभ नहीं ले पाए। कारण यही कि उनको या तो सही से जानकारी नहीं हो पाई या उन्होंने कोई लापरवाही की। दूसरा जैसे कि फसल बीमा योजना की बात करें, समय रहते अगर हम लोग अपनी फसलों का बीमा करा लेंगे तो जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई हमारे लिए बीमा कंपनी के माध्यम से हो सकती है।
2: ये बात तो भैया सही कह रहे हो, क्योंकि जो हम फसल अपने खेत में लगाते हैं और कभी कभी देखी हुई कि भैया हमारी फसल जो है चौपट हो जाती है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, जल भराव हो जाता है या फिर बाढ़ के कारण जो फसल मारी जाती है, तब हमें नुकसान हो जाता है और तब भैया हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं धारा भैया और सोच जाते हैं कि अब क्या करो जाए।
1: हाँ भैया, तो अब इसीलिए तो आपको पहले से ही आगाह किया जाता है और हर बार बताया भी जाता है कि अपनी फसल का बीमा अवश्य कराएं, जिससे कि कोई आपदा अगर आ जाए और हमारी फसल खराब हो जाए तो हमारे लिए सरकार के माध्यम से ये क्लेम मिल सके। तो ये योजना का लाभ वही लोग उठा सकते हैं जिनके पास में खेतीबाड़ी है और जागरूक कृषक हैं, जिनके पास में आधार कार्ड, पासबुक, खतौनी और बुवाई का प्रमाण पत्र, फसल का विवरण ये सब देंगे, है ना, और बीमा कंपनी में जाकर के या फिर बैंक के माध्यम से भैया ये फसल बीमा वो करा सकते हैं। दूसरी एक बात और यहाँ कहना चाहेंगे अपने किसान भाइयों से कि हम लोग खेतीबाड़ी करते हैं और खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी एक ऐसा व्यवसाय है जो हम करते हैं, तो अगर कभी खेतीबाड़ी में कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हमारे पशुओं के माध्यम से हो जाती है। अब अगर मान लिया पशु को कोई अगर किसी प्रकार का नुकसान है तो उसकी भरपाई हमारे लिए खेतीबाड़ी के माध्यम से हो जाती है।
2: बिल्कुल सही कह रहे हो, इसीलिए भैया कहते हैं कि खेतीबाड़ी और पशुपालन एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। यानी खेती के बिना जो हमारे पशु अधूरे हैं और पशुओं के बिना हमारी खेती अधूरी है।
1: और खेती में हमारे पशुओं का बहुत बड़ा योगदान भी रहा है, चाहे वो जुताई या फिर गन्ने की या किसी फसल की ढुलाई हो और खेतों में जो है वो देसी खाद की जरूरत पड़े, तो ये सब भैया पशुओं से ही पूर्ति होती है और हमारे घर की आमदनी को बढ़ाने में भी पशुओं का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो कृष्ण भैया देखिए, बहुत अधिक बात इस संबंध में नहीं करनी है क्योंकि हमें अपने भैया बहनों के गांव पहुंचना है और किसान भाइयों आज हमारे कृष्ण भैया पहुंचे हैं ग्राम मुड़िया भीकमपुर, तहसील नवाबगंज, जिला बरेली का ये गांव है।

0: हमने गांव में प्रवेश किया तो देखा कि गांव के किनारे ही एक मंदिर बना हुआ है और वहां पीपल का वृक्ष है, बड़ा अच्छा लग रहा था। और इसके बाद जब गांव में और भ्रमण के लिए अगले बढ़े तो हम देख रहे हैं कि एक पाकड़ है जहां पर बहुत सारे किसान भाई यहां पर बैठे हुए हैं। तो आप सभी के लिए हमारी राम राम।
1: राम राम।
0: आकाशवाणी बरेली से आए हैं तो सबसे पहले हम आपको नाम जानना चाहेंगे, आपको नाम क्या है?
1: मेरा नाम लोकेश।
0: जिस गांव में हम खड़े हैं आपसे बातचीत हो रही है, क्या नाम है गांव को?
1: इस गांव का नाम मुड़िया भीकमपुर है, इसका ब्लॉक नवाबगंज लगता है।
0: जिला बरेली को गांव है।
1: जी जी।
0: अच्छा ये बताओ,

0: बना हुआ है और वहाँ पीपल का वृक्ष है, बड़ा अच्छा लग रहा था। और इसके बाद जब गांव में और भ्रमण के लिए अगले बढ़े तो हम देख रहे हैं कि एक पाकड़ है जहाँ पर बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप सभी के लिए हमारी राम राम।
1: राम राम।
0: आकाशवाणी बरेली से आए हैं तो सबसे पहले हम आपको नाम जानना चाहेंगे, आपको नाम क्या है?
1: मेरा नाम लोकेश।
0: जिस गाँव में हम खड़े हैं आपसे बातचीत हो रही है, क्या नाम है गाँव को?
1: इस गांव का नाम मुड़िया भीकमपुर है, इसका ब्लॉक हुआ नवागंज लगता है,
0: जिला बरेली का गांव है।
1: जी जी।
0: अच्छा ये बताओ, जैसे हम तो आपके गांव में आए पहुंचे हैं, अगर हमारे उच्च अफसरान आपके गांव में आना चाहें तो रास्ता किधर से है?
1: आप जब बरेली से आएंगे तो आपका रास्ता जो है राजघाट से ही है, फैक्ट्री होते हुए।
0: यानी राजघाट से गाँव के लिए रास्ता आया है?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा आने जाने के लिए साधन कहाँ है?
1: आने जाने के लिए साधन टुक टुक वगैरह चल रहे हैं, उससे आ सकते।
0: बाकी अपनी जो सवारी है वो तो
1: है।
0: तो यहाँ से लगभग बरेली कितनी दूर हुए?
1: बरेली 30 किलोमीटर है।
0: कुछ अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताओ, पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ तक भाई?
1: मैंने इंटर कलर्स तक पढ़ाई कर रखी है।
0: अच्छा अगले ना पढ़े?
1: अगले ना पढ़े।
0: अच्छा उम्र कितनी हुई चली हुई है?
1: उम्र हमारी इस समय 44 साल हो रही है।
0: तो अब तो खेती बाड़ी वगैरह कर रहे होंगे?
1: हाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं।
0: खेती बाड़ी में कौन कौन सी फसलें उगाते हो?
1: खेती बाड़ी में हमारे साथ गन्ना उगाते हैं और धान भी उगाते हैं और गेहूँ होता है समय समय।
0: अच्छा तो गन्ना इस समय खड़ो हुए?
1: हाँ गन्ना खड़ा है।
0: कैसे हुआ गन्ना?
1: गन्ना लगभग ठीक है जैसी स्थिति है।
0: हम जो देख रहे हैं कि आपके क्षेत्र में गन्ना ज्यादा उगाया जाता है।
1: हाँ फैक्ट्री की वजह से ही ज्यादा गन्ना उगाया जाता है।
0: और वैसे भी कहते हैं ना कि ओले हैं या बारिश से अगर कोई परेशानी आ रही है तो गन्ना की फसल में कुछ ना कुछ मिल जाता है।
1: हाँ कुछ ना कुछ मिल जाता है, उसे पक्की फसल मानते
0: हैं। नकदी फसल होती है, अपने जाओ और अपने तुलाओ और पैसा ले लो। अच्छा अब जो बताओ, जैसे 44 साल की आपकी उम्र हो चली है, पहले जो हमारे किसान साथी अपने खेतन में हरी खाद ही, ढेंचा की खाद ही, पटसनी, लोबिया ही, ये ऐसी फसलें अपने खेत में करते और पलटाई करते थे, लेकिन आज किसान भाई ऐसे मुख मोड़ रहे हैं, क्या बात है?
1: ये प्राकृतिक चकाचौंध की सब बात है। अब कोई मेहनत करना चाहता ना, मान के चलो आपने कंपोस्ट की खाद तैयार करी, उसके लिए आपको पशु भी पालने पड़ेंगे, आपको समय भी देना पड़ेगा। उन सारी चीजों से निजात पाते हुए मतलब आज का किसान ये चाहता है कि मुझे सब पैकेट बंद चीजें मिले और मुझे ज्यादा मेहनत ना करना पड़े।
0: लेकिन एक बात तो आप मानोगे कि जो पशु हमारे किसान भाई पालते हैं तो बात से बहुत सारा फायदा हो।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: देसी खाद खेतन में डालते हैं
1: जी, जी, जी।
0: और दूध वगैरह भी मिल जाते।
1: जी, जी, जी, जी।
0: तो आपने कोई पशु पालो ना?
1: हमारे पास में साहब 3 पशु हैं, एक पड्डी है उसकी, एक भैंस है और एक जो मतलब उसका कटरा है, पड्डा जिसे बोलते हैं।
0: अच्छा तो भैंस दूध दे रही ना?
1: इस समय ना दे रही है, ज्ञापन है।
0: पशु हमारा स्वस्थ रहे, बीमार न पड़े, जागे का ध्यान रखते हैं,
1: उसके लिए हमारे मतलब डॉक्टर हैं, समय समय पर उनसे मतलब सलाह लेते रहते हैं। कभी टीका वगैरह हुआ तो उसके इंजेक्शन लगवा दिए, इस तरह से मतलब अपना उसका बचाव करते हैं।
0: जी कुछ किसान भाई कहते हैं आजकल खेती बाड़ी बचना रहो।
1: देखो साहब कोई भी काम करो उसमें अगर आपको जो है समय देंगे, मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर बचेगा। तो भैया जिस काम में आप जितना समय दोगे, जितनी मेहनत करोगे, उस हिसाब से आपकी बचत होगी। मैं साहब जो है इधर मेरठ साइड में भी जाता हूँ, मेरे मिलने वाले हैं वहाँ पे, मैंने देखा बहुत सारे युवा काश्तकार ऐसे हैं जो अपने खेती से ही आजीविका चला रहे हैं, उनके अच्छे मकान भी खड़े हैं, उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अगर भैया बच नहीं रहा तो कैसे कर रहे हैं?
0: बिल्कुल।
1: तो ये तो कहना सर्वथा गलत है कि खेती से कुछ बचता नहीं।
0: अच्छा सरकार हमारे विकास के लिए, ग्रामीण भैया बहनों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजना चला रही है, तो कोई ऐसी योजना है जिसको लाभ आपके लिए मिलो?
1: ना उसका अभी तक हमें कोई लाभ नहीं।
0: अच्छा किसान सम्मान निधि?
1: ना ना
0: किसान सम्मान निधि तो हर किसान को मिल रही है, जिसके पास में जो है जमीन है, तो फिर आप जैसे कैसे वंचित रह गए?
1: ऐसा था पहले हमारे पिताजी के नाम थी, अब पिताजी के जाने के बाद हमारे नाम आई, अब उसका आवेदन पता नहीं क्यों कट जाता। फिलहाल उसके प्रयास में हम लगे हैं।
0: जी आपकी 44 साल की उम्र है, आपने जब होश संभालो हुए तब जब गांव को देखो हुए, हाँ। आज गांव को देख रहे हो, हाँ। का अंतर नजर आ रहा हो?
1: काफी परिवर्तन है। पहले गलियां भी मतलब जो है कच्ची थी, जल भराव रहता था और गांव में मतलब कच्चे मकान होते तो छप्पर आदि, आज वो नहीं है।
0: आपसे बातचीत हुई और आपने बहुत ही अच्छे अपने खेती बाड़ी और पशुपालन के अनुभव हमारे किसान साथियों के साथ साझा किए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों लोकेश से बात करने के बाद यहीं पर एक साथी हमारे और बैठे हैं, आप इन्हों से बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपको?
2: मेरा नाम बाबूराम है।
0: अच्छा कुछ अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताओ, पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ तक हुई है?
2: मैंने इंटर कर लिया।
0: और उम्र कितनी हुई चली हुई?
2: हमारी 48 साल है।
0: क्या कुछ चल रहा है?
2: खेती कर रहे हैं।
0: तो खेती में कौन कौन सी फसलें उगाते हैं?
2: कभी कभी तो हम मिर्च भी कर लेते हैं।
0: अच्छा
2: और धान है, गन्ना है, लाई भी है और फिर गेहूँ भी है।
0: तो मिर्च की जो आप खेती करते हैं तो मिर्च से फायदा हो जाता है आपके लिए?
2: हाँ, मिर्च से फायदा होता है।
0: तो आपके मन में ये बात कैसे आई कि मिर्च की खेती करिए?
2: हमने सोचा कि अलग से कुछ सोच के देखें, इसलिए हमने मिर्च करना शुरू कर दिया। अच्छा। उसमें हमें फायदा मालूम पड़ा, तब से हम मिर्च करने लगे।
0: लेकिन मिर्च में देख रेख बहुत करनी पड़ती है।
2: हाँ वो तो है, जो लबेड़ा है और भटपुरा है, यहाँ देख कर खेती हम करने लगे।
0: अच्छा धानों आप उगा तो, खेतन में गन्ना उगा तो और गेहूँ उगा तो आपको मिर्च की खेती में ज्यादा फायदा है या जो खाद्यान्न वाली फसलें हैं उनमें ज्यादा फायदा महसूस?
2: हमें मिर्च में ज्यादा फायदा है।
0: अच्छा तो मिर्च को हरी बेच देते हैं या कुछ सुखाए उगाए?
2: सब जो है हरी बेचते हैं और जब उजाड़ने पोते हैं, जो सूख गई मिर्च और पक गई वही हम केवल तोड़ते हैं, वरना जो सब जो जात के उसमें धान कर देते हैं।
0: अच्छा जब स्प्रे

0: करते हो अपने खेतन में, तो क्या बात ध्यान रखते हो?
1: सबसे पहले हमें अपनी ऑक्सीजन की विशेषता रखनी पड़ेगी कि कहीं जो है हमारी तरफ जो है दवा का असर नाक द्वारा या मुंह तरफ नहीं जाए। आंखों पे भी ध्यान रखने पड़ेगा कि कहीं छींटे उठे आंख पर नहीं जाए।
0: बिल्कुल बात सही है। खेती के संग संग पशु भी पालते होंगे?
1: हाँ, हम पालते हैं। हमारे पास 2 भैंसे हैं, 1 लभारू है बढ़िया, 1 बड्ढा है, 4 डंगर है।
0: दूध दे रही भैंसी ना?
1: हाँ, दूध देती है एक भैंसिया।
0: कितना दूध मिल जाता है?
1: करीब 2-3 लीटर अभी दे रही है। अब तोड़ पर है, अगली भैंसिया जो है गाभिन है, 1-1.5 महीने बाद दूध वो भी देने लगेगी।
0: तो पशुपालन का फायदा तो है?
1: फायदा है, एक तो लभारे भी बचते हैं, दूसरा दूध भी मिलता खाने को, तीसरा खाद हमारी होती है वो मिर्च उर्च में हम डालते हैं, उसमें हमारी अच्छी वृद्धि होती है।
0: अच्छा जी बताओ, जो आपको गाँव है, गाँव कैसे है?
1: बड़ो गाँव है और आबादी काफी है।
0: बालकन की पढ़ने के लिए क्या व्यवस्था है?
1: पढ़नदाई 8वीं तक सरकारी स्कूल है।
0: और बाकी बाल फिर बालक कहाँ जाते हैं?
1: नवाबगंज जाते हैं, हरदुआ जाते हैं।
0: चलो बाबू राम जी, आपसे बातचीत भाई और आपने बहुत सारी बातें हमें हमारे सुनने वाले सभी साथियों के लिए बताइए, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, बाबू राम जी से बात करने के बाद जब हम गांव में और आगे बढ़े तो हम देख रहे हैं कि एक सज्जन आ रहे हैं। आप वो इन्हों से बात करते हैं। जी भैया, आपको नाम कहाँ है?
2: धनपाल।
0: धनपाल जी, खेतीबाड़ी वगैरह होती है?
2: खेतीबाड़ी हो रही, धान गेहूँ गन्ना राई।
0: अच्छा, तो कुछ धनपाल जी अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताओ, पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी बहुत करी ना?
2: हाँ, 8वीं तक गए स्कूल।
0: अच्छा, फिर नहीं पढ़े आगे?
2: गए ही नहीं।
0: क्यों, ऐसी क्या बात रही?
2: बीड़ी तम्बाकू पड़ गए।
0: बीड़ी तम्बाकू पड़ गए। और जब तो हम अबू देख रहे हैं कि आप जो है तम्बाकू निकाल के हाथ पे मसल रहे हैं, मगर ये चीजें तो गलत हैं।
2: गलत का आदत पड़ गई तो खा रहे हैं।
0: तो ये तो वैसे मानते हो कि जो बीड़ी तम्बाकू आप खाते हो जो नुकसान देती है?
2: नुकसान देता
0: है, इनको छोड़ दो।
2: छोड़ देंगे आपका,
0: क्योंकि नुकसानदायक है, शरीर को हमारा नुकसान देती है और पैसों हमारा बर्बाद हो रहा है। तो इन चीजों को छोड़ो, जिससे कि जो हमारा शरीर है वो सही बनो रहे। अच्छा, जो खेती बाड़ी की बात आप बता रहे हैं कि धान गन्ना गेहूं की खेती आप करते हो, देसी खाद भी ना डाल रहे हैं?
2: देसी खाद ना डाल, मिले डंगर ना पाल लो आदमी तो देसी खाद।
0: वही तो बात है। पहले देखिए आपने कितने कितने पशु हमारे बुजुर्ग पालते,
2: पशु से ज्यादा फायदा, गोबर पड़ेगा तो जमीन ताकतवर बनेगी।
0: अच्छा, जो सरकार योजना चला रही है, कोई योजना को लाभ आपके लिए मिल रहा है?
2: सम्मान निधि मिल रही है।
0: अच्छा, तो वह पैसा को तो अपने खेती बाड़ी के काम में ले ले, तो
2: खेती बाड़ी काम आ जाए,
0: तो अपने बीज लाने हैं या खाद लाने हैं तो अपने निकाले और अपने ले आया जाए।
2: हाँ, यही काम में ले लेते।
0: अब जी और बताओ, जैसे आपने जो पहले गाँव देखो हुए वो, तो पहले गाँव कैसे हो और आज कैसे हो?
2: पहले से बहुत बदलाव, पहले छप्पर भाव थे, अब छप्पर कहूँ ना है। मकान कच्चे सच्चे भी कम हो गए, अब सब पक्के हो गए सभी के।
0: अब लगभग पूरा गांव जो है अपने पक्के मकान में।
2: हाँ, पक्के
0: लग रहा है। अच्छा, सरकार द्वारा जो आवास वगैरह बनवाए गए, ऐसे लोग हैं जो गांव में आपके आवास बनवाए गए हैं?
2: हाँ, बने हैं, बने बहुत बने हैं।
0: अच्छा, और शौचालय वगैरह?
2: हाँ, शौचालय बने, हमारे बनो।
0: अच्छा, आपको बनो। चलो धनपाल जी, आपसे बातचीत भाई और आपने बहुत सारी बातें बताई है, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, धनपाल जी से बात करने के बाद गाँव में ही हम और आगे बढ़े तो हम देख रहे हैं एक चाचा आ रहे हैं तहमत पहने हुए, शर्ट पहने हुए। आओ, इन्हों से बात करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपको?
3: नथुलाल।
0: कहाँ जा रहे हो?
3: पुणे ही में आए।
0: अच्छा, तो यहीं बैठोगे आराम से? तो जब बताओ, उस समय आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी ना करी?
3: हाँ, पढ़े थोड़ी।
0: कितने तक?
3: ऐसे बड़े 8वीं।
0: और उम्र कितनी हुई हुई आपकी?
3: उम्र हुई हुई 65 साल।
0: तो जब बताओ, 65 साल की आपकी उम्र है, खेतीबाड़ी आप कर रहे हो, पहले तो पशु आपने खूब पाले होंगे?
3: पहले पाले,
0: अब क्यों नहीं पाल रहे हो? क्या बात है?
3: अब ट्रैक्टर चल पा रहे हैं, ट्रैक्टर से याद हवा कौन ढंगे
0: खेत को जाता है। लेकिन आपने जो देखी हुई कि जो पहले जैसे अपने पशु पाल रहे तो खूब सुबह को अपने चटनी मिलाई मठा में और अपने बैठ के खा रहे हैं रोटी।
3: सही,
0: लेकिन मठा तो फिर मिला ही नहीं जब पशु न पालोगे तो, न दही मिले। गांव के बारे में बताओ आप, कुछ अंतर नजर आ रहा हो गाँव में आपके लिए?
3: अंतर तो है, पहले मेरे फरका आए, अब जगह बन गई लोगों
0: ने। मतलब फरका जो है 56 कहते, मगर एक बात सुनो चाचा, पहले जो फरका है, जो छप्पर है, लोग चढ़वा देते, और आज के अगर बालकन को ले गए छप्पर चढ़वाने तो नीचे खींचेंगे चढ़ाने की जगह,
3: नीचे पहलू खाई जाते हवाई का।
0: अच्छा, पहले
3: चलो चलो
0: छप्पर चढ़ते है तो बाकी बाद में जो सतुआ या जो मिठाई को शरबत घुरते सब लोग बैठ के पीते
3: लगा दो।
0: अब जो चीजें ना है,
3: अब कहा
0: पहले हमने सुनी कि जो बुजुर्ग लोग है, बड़े बूढ़े लोग है, चौपाल बैठ जाते, गौनाई बजनी होती, निंदना हो तो अपने आला चल रही है।
3: अब कुछ ना बोलते, मोबाइल मोबाइल ढोला उला सब चीज।
0: अच्छा, और लोग एक दूसरे के पास बैठने तो पसंद नहीं कर रहे हैं?
3: पहले प्रेम हो, अब प्रेम कहाँ रहो आदमी के अंदर, पहले प्रेम ज्यादा हो तो अपने बैठ उठे।
0: अब जो भैया से बात, भाई धनपाल जी से तम्बाकू बीड़ी वगैरह पी लेते हैं, आप तो ऐसा
3: ना
0: करते हो?
3: ना, बीड़ी तो हूँ पी लिया था।
0: अरे, मगर बीड़ी से तो नुकसान होते काफी।
3: अब नुकसान है तो फिर क्या करो जाए,
0: पहले से पीते छोटे बन से?
3: छोटे बन से तो ना पी, इसी बात में पीने लगे
0: ना, तो सीखे कहाँ से बीड़ी पीने, जाओ और बताओ।
3: एक दूसरे प्याज जाते सीख गए तो पीने लगे।
0: अच्छा, फिर बन गई आदत?
3: आदत
0: तो अब छोड़ लो, जहाँ छोड़ सकते ना,
3: अब कहा छोटेगी मार्केट में जाने वाले।
0: ना, हम तो ये कहेंगे भाई ईश्वर से दुआ करेंगे कि आप लंबी आयु जिए अपने, ऐसी ही बने रहे।
3: अरे ना, लंबी जिए तो कोई फायदा ना है।
0: क्यों?
3: अरे अब दुखा दुखा है ससुर का, तुम्हारा काम गन्ना छोड़ो, काम करो, जो करो वो करो।

0: पहले तो मेहनत करनी पड़ती, पहले
1: खान पान अच्छो, अब कहाँ का धरो खान पान।
0: हाँ जी बात सही है, लेकिन पहले के लोग गौत्र बहुत खाते,
1: गौत्र का खाते हमने धान गेहूँ करते फसल है,
0: और आज आदमी जा रहा हो सुबह को शाम को वापस आ रहा
1: हूँ, फसल है ना रोटी खाई और चलो चालू।
0: तो पहले अच्छे लगते हो आज अच्छे लगते हैं आपको, जो और बता दे।
1: पहले अच्छो लगा तो आपका अच्छो लगा
0: क्यों, अब तो जैसे पहले पैदल जाने पड़ते हो जूता
1: लगा, अरे आप बराते जाओ भाई छठे आड़े खाया वो, अब चले आओ भाई लेडू से जाते बैठ आराम से जाते,
0: पंगत बैठा खवाते बैठा
1: और बिस्तर ले जाते अपनो।
0: ये तो बात है कि अब लोग जो है खड़े खड़े खवाते हैं क्यों, पहले पंगत बैठे खाते सब लोग। चलो चाचा नथुलाल जी आपसे बातचीत हुई और आपने बहुत सारी बातें बताई हैं, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों चाचा नथुलाल जी से बात करने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ही एक सज्जन और आ रहे हैं जो कि चश्मा लगाए हुए हैं, आप उनसे बात करते हैं। जी भैया क्या नाम है आपको?
2: हमारा नाम सीताराम।
0: तो आप आए हो निकल के घर से, तो आपको जानकारी होगी क्या बात की आकाशवाणी की टीम आई हुई है या वैसे आप घूमना है?
2: जानकारी ना होगी, बंदर देखना है।
0: तो बंदर काफी है यहाँ पर?
2: बंदर बहुत दे रहे हैं, बाजार बहुत दे रहे हैं।
0: तो खेती बाड़ी करिए रहे हैं आप बता रहे हैं, पशुपालन भी करते होंगे?
2: हाँ पशुपालन करते हैं।
0: पशु हमारे स्वस्थ रहे, कोई बीमार ना पड़े, का ध्यान रखते हैं जाके लिए?
2: बाकी कीड़ों ने दवाई दे देते हैं और खान पान को चारा पत्ता को ध्यान रखते हैं, खास बात तो कीड़ी दवाई और लीवर ऊपर दवाई वाई दे देते।
0: और जाके साथ साथ जो बाहर परजीवी जैसे जू है किल्ली है उनको भी ध्यान रखने पड़ते हैं?
2: हाँ उनके लिए लगाव उनकी दवाई होती है, हल्की फुल्की भी लगा देते हैं।
0: कुछ अपने गाँव के बारे में बताओ, गाँव आपको कैसे हुआ?
2: गाँव ठीक है।
0: सीताराम जी आपने बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हमें हमारे सुनने वाले सभी साथियों को बताई हैं, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों सीताराम जी से बात करने के बाद यहीं पर एक सज्जन और बैठे हुए हैं, आप उनसे बात करते हैं। जी भैया आपको नाम क्या है?
3: मदन लाल।
0: मदन लाल जी जयगांव के रहने वाले हैं?
3: हाँ मुड़िया भीकमपुर।
0: अच्छा जागो ब्लॉक कहाँ लगता है?
3: नवाबगंज
0: जिला बरेली गुआ है। तो कुछ पढ़ाई लिखाई के बारे में बताओ अपनी।
3: एमए कर लो।
0: एमए कर लो, अच्छा तो उम्र कितनी हुई?
3: उम्र 65 साल।
0: 65 साल की, लेकिन लग ना रहे हो 65 साल, क्या बात है? है? तो हमें लग रही दूध मठा ज्यादा खा रहे हो, क्या बात?
3: दूध मठा पहले काफी खाओ, अब तो खाना है।
0: अच्छा तो खेती बाड़ी तो करते हो गए?
3: हाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं।
0: अच्छा कौन कौन सी फसल उगा रहे हो खेत में?
3: हम तो 3 साल से गन्ना उगा रहे हैं।
0: अच्छा अपने क्षेत्र में गन्ना बहुत ज्यादा उगा जा रहे हो, क्या बात है?
3: पास में पड़ जाता है।
0: तो गन्ना आपको कैसे हुआ?
3: गन्ना सही है।
0: परिवार में कौन कौन है?
3: परिवार में लड़का है 3 और 5 भाई हम है।
0: भरोपूर परिवार है काफी। तो आप 5 भैया अलग अलग हो गए साझे हैं?
3: अलग अलग
0: है। अलग क्यों हो जाते हैं?
3: अरे ये औरत आती है जे इनमें अलग साझ हो जल्दी हो जाता है, भाई भाई में तो ना हुआ था।
0: इन्हें जब शादी भैया की भाई तो ये अपनी अपनी पति ली लेगी और अलग हो गए। और जो लोग शादी ना हो तो लोग सब इकट्ठे रहते हैं। अच्छा जो आपके बालक हैं वे इकट्ठे हैं, वे अलग हो गए?
3: ना वे तो सब शामिल है।
0: अच्छा वे शामिल है, शादी होगी बालक नहीं ना?
3: हाँ हो गई।
0: अच्छा देखो संयुक्त परिवार भी बहुत बड़ी चीज है।
3: हाँ।
0: तो जो बताओ जो गांव आपको है जो पहले देखो है आपने?
3: हाँ,
0: और आप देख रहे हो का कुछ अंतर नजर आ रहा है?
3: पहले काफी सही हुई गाँव है।
0: अच्छा
3: रास्ता भी सही हुई गई है। छप्पर पहले परे भाई अब ना छप्पर ये गाँव है।
0: पहले देखते हैं कि गर्मी के मौसम हो तो कभी कभी जैसे लू चलती हवा चलती और कभी कभी बहुत सी ऐसी अप्रिय घटना हो जाती,
3: आग लग जाती थी लगी पछाओ से अब रसूलाम रुकी जाए
0: आपके गाँव?
3: हाँ हमारे हियन से।
0: अच्छा लेकिन अब जो समस्याएं दूर हुई?
3: हाँ समस्याएं ये दूर हो गई हैं।
0: अच्छा सरकार भी तो हम किसान भाइयों की ग्रामीण भैया बहनों की मदद कर रही है?
3: हाँ हाँ कर रही है, काफी लैटरिंग बन गई है, सम्मान निधि आ रही है।
0: अच्छा मगर जी बताओ जैसे जो आजकल जो प्रेम की भावना है आपस में वो कम हो जा रही है, पहले गौने बजनी होती बैठ के बैठकन पे बना रही है?
3: बहुत बदलाव होगा, एक दूसरे की बुराई एक दूसरे करने लगा था, पहले इतनी बुराई ना करते एक दूसरे,
0: इसीलिए आदमी कहोगे ढिंग बैठना।
3: हाँ ढिंग बैठना है।
0: मगर जी बालकों तो आजकल कहना ना मान रहे हैं
3: बालक का, पहले जा अपने एक दूसरे के हियन बैठत थे शिक्षा सिखाते, अब तो जो मोबाइल है देख रहे हैं,
0: मतलब मोबाइल कम ना कम फायदों की चीज है।
3: हाँ।
0: भाई पहले हम देखते कोई घटना हो जाती तो पहले सूचना देने ही आते, खबर हो जाते हो लेके।
3: हाँ, हाँ, हाँ।
0: आज मोबाइल पे हाय हेलो करी।
3: हाँ, हाँ।
0: और बताया दी भैया ऐसी सी बात है। हाँ। भाई वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से वाक प्रयोग कर रहे हो।
3: हाँ,
0: है ना,
3: गलत के लिए मोबाइल ना है लेकिन गलतों प्रयोग कर रहे हैं
0: वो आपके ऊपर है। हमने बताया ना कि भाई आपको कैसे प्रयोग करने वो आपके ऊपर है। तो अब आपको अच्छे लगते गाँव में अपने?
3: और गांव में बढ़िया लगा,
0: लेकिन पहले लोग गौत्र बहुत खाते,
3: पहले का भैंसा रखा थे चारा बहुते रो हो, चौमासे में खाली रहे थे आदमी, तो कहा चलो चार के गौतरिया खाया हमें, तो इतना टाइम है ना मिलता आदमी, तुरंत मोटरसाइकिल तैयार है खाना खाओ लौटे आए वापस।
0: मदनलाल जी आपसे बातचीत हुई और आपने जानकारी दी, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथी जो हो हमारो आज को क्षेत्र संकलित कार्यक्रम आकाशवाणी आपके बीच, और आज को हमारो सफल रहो जिला बरेली के विकासखंड नवाबगंज के गांव मुड़िया भीकमपुर में। प्रतिभागी है लोकेश आर्य, बाबूराम, धनपाल, सीताराम, नथुलाल और मदनलाल। कार्यक्रम की प्रस्तुति मिथिलेश श्रीवास्तव की, और प्रस्तुति सहयोग हो आपके भैया कृष्णपाल और धारा सिंह को और

0: भैया बहनों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम किसान वाणी गांव में किसानों के साथ, ये क्षेत्र संकलित कार्यक्रम जिसकी प्रस्तुति रही मिथिलेश श्रीवास्तव की और प्रस्तुति सहयोग रहा कृष्णपाल और धारा सिंह का। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया किसान भाई मदनलाल, नथुलाल, लोकेश, बाबूराम और धनपाल ने। भैया बहनों, ये कार्यक्रम जब आपने अच्छी तरह से सुन ही लिया है और आपके मन में ये ललक हो रही है कि हमारे यहाँ भी इस प्रकार का कार्यक्रम होना चाहिए, तो फिर देर न करते हुए हमारे लिए एक छोटा सा पत्र लिख भेजिए या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हमें अपने गांव का पूरा पता मोबाइल नंबर सहित लिख करके भेज दीजिएगा, जिससे कि हम आप लोगों से संपर्क करें और आपके गांव पहुंच सकें, आपके गांव पहुंचकर आपसे आपकी खेतीबाड़ी, पशुपालन और जो भी व्यवसाय आप करते हैं उसके बारे में जान करके हम अन्य किसान भाइयों तक पहुंचा सकें। और कृष्ण भैया, देखिए बातचीत का दौर तो चल ही रहा है हमारे किसान भाइयों के साथ में, मन कर रहा होगा आपका भी और हमारा भी, साथ ही साथ किसान भाइयों का, तो क्यों ना उनकी पसंद का एक लोकगीत सुनवा देते हैं।
1: और बिल्कुल भैया, और देखो लोकगीत सुनने के लिए फरमाइश भी हमको मिली है सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ पत्र भी हमको प्राप्त हुए हैं। ये पत्र हमको मिलो जिला बदायूं ग्राम दूनानगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार कठेरिया, सत्येंद्र कुमार कठेरिया, गुड्डू विशाल, संगम, वैभव, आदर्श, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, निव्या, सरता और अंतमा को। और ये फरमाइश हमको मिली है ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसाबा जिला बदायूं से लिखने वाले हैं सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद यादव, सनोज यादव और अमन यादव की।
0: सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम, सद्दाम। और ग्राम करेली जिला बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, समीम अंसारी, माहनूर अंसारी, नसरीन अंसारी, समा अंसारी। तो आइए आप सभी को सुनवा देते हैं सरोज श्रीवास्तव के मधुर स्वर में ये प्यारा सा लोकगीत।
1: गोरी चली नहरवा, बलम सिसकी दे दे रोवा।

0: भैया बहनों, मनोरंजन की बात भी हो गई और अब कार्यक्रम में समय भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। आज की नसीहत है कि किसान भाई अपने खेतों में अधिक से अधिक जैविक खादों का प्रयोग करें और भूमि की सेहत का विशेष ध्यान रखें।
1: और धारा भैया, देखो, अब कार्यक्रम किसानवाड़ी से विदा लेने की बेला आ चुकी है, लेकिन चलते चलते हम ये जरूर कहेंगे कि भैया देखो, तेज गर्मी पड़ रही है और ऐसी तेज गर्मी में हमारे किसान साथी अपनी सेहत के साथ साथ जो हमारी फसलें खेतों में लगी हैं उनको विशेष ध्यान रखें, और जाके साथ ही साथ जो हमारे पशु पाले हैं भैया, उनकी भी देखभाल नियमित रूप से करते रहें, उनके लिए ताजा पानी पिलावें। और अब बारी
0: उस सवाल की जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में पूछा था। सवाल था, काला सोना किस भैंस को कहते हैं?
1: और धारा भैया, देखो, जब सवाल को जवाब हमारे बहुत से किसान भैया बहनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी लिख के भेजे हुए। गांधी चौक वार्ड में राजस्थान से बबलेश पवार लिख रहे हैं, और मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड ने भी सही जवाब लिख के भेजे हुए।
0: दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, और कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखेलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य और बहुत से इनके परिवार के लोग हैं। और साथ ही साथ लाल मोहम्मद अंसारी जी ने भी हमारे सवाल का बिल्कुल सही सही जवाब दिया है। आप सभी ने बताया है कि काला सोना मुर्रा भैंस को कहते हैं, तो आप लोगों का भी बिल्कुल सही जवाब रहा। और अब कृष्ण भैया, अधिक समय नहीं बचा है कि हम अपने भैया बहनों से आज और बात कर सकें। आज के कार्यक्रम से अपने भैया धारा सिंह
1: और भैया कृष्णपाल को देव अनुमति, और करो स्वीकार भैया बहनों,
0: राम राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी 100.4 FM पर। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। अब हमारे ग्रामीण साथी सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कृष्णा भैया, हम लोग कार्यक्रम ग्राम जगत में भी अपने भैया बहनों को समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाते रहते हैं और बातचीत भी हम करते रहते हैं। आज की चर्चा का विषय हमारा सिर्फ यही है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अगर महिलाएं मिलजुल कर काम करेंगी तो वो अपना विकास कर सकती हैं।
1: बिल्कुल। और जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उनके माध्यम से जैसे बेचारी जो महिलाएं होती हैं अपने घर पर बैठी हैं, कोई काम ना कर पा रही हैं, तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वो अपने कहीं अचार बना रही हैं, मुरब्बा बना रही हैं, इस तरीका से कहीं कढ़ाई बुनाई को कारी करके और स्वयं सहायता समूह बनाकर अपनों अच्छे तरीका से विकास कर रही हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। और इस तरीके से काम करके वो अपने घर के विकास के बारे में भी अच्छी सोच रख सकती हैं।
1: फिलहाल भैया बहनों बातचीत और करेंगे, लेकिन अब अपने भैया बहनों को सुनवाई दे रहे हैं क्षेत्र संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत करें योग रहें निरोग, श्री राजेंद्र प्रसाद योगाचार्य से जो धारा सिंह भैया ने बातचीत करी है वो अपने भैया बहनों तक पहुंचा रहे हैं।
2: आज हम हैं योगाचार्य जी के साथ और आज आपसे हमारी बातचीत का विषय है करें योग रहें निरोग। तो किस प्रकार से हम योग की क्रियाएं कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। अपने सभी सुनने वालों के लिए आपका परिचय।
3: जी, मेरा नाम राजेंद्र योगाचार्य है। वैसे अधारा सिंह जी, आपने बहुत अच्छा विषय चुना है आज, और मैं यहाँ इस कार्य के लिए बहुत समय से कर रहा हूँ। 20 वर्ष से मैंने बचपन से योग को अपनाया है और जन जीवन तक उसको पहुंचाने का प्रयास किया, जन जन तक उसको पहुंचाने बहुत सारे कैंप लगाए हैं।
0: विस्तार से हम बात करेंगे तो, लेकिन सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो योग है इसके संबंध में बताइएगा कि इसकी क्या महत्वता है व्यक्ति के जीवन में।
3: योग तो भाई साहब आदिकालीन है, शास्त्रों में बहुत वर्णन है इसका, और योग जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है जैसे कि शरीर के लिए भोजन, नींद, जल, जैसे शरीर को जल की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसी श्वास की आवश्यकता होती है।
0: जी,
3: तो श्वास का जो सही क्रम है वो योग सिखाता है, वो जीवन में बहुत लाभकारी है। योग हमारी दैनिक जीवन में उसका एक बहुत बड़ा भाग है। हम लोग उसको केवल कुछ समय के लिए आवश्यकता पड़ने पर लेते हैं, ये ऐसा नहीं है, मतलब एक भाग है। जैसे भोजन भाग है, नहाना भाग है, पानी पीना भाग है, ऐसे ही हमारे जीवन में नींद हमारा हिस्सा है, ऐसे ही योग हमारा हिस्सा है।
0: भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्योंकि व्यक्ति अपने लिए काम काज के सिलसिले में योग को करने का समय नहीं निकाल पाता है, जबकि बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है कि अगर आदमी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग और व्यायाम करे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है?
3: इसके बारे में तो मेरा ये वैसा, मुख्यतः लोग केवल शारीरिक क्रियाओं को योग मानते हैं, जबकि योग जीवन में हर क्षण जिया जाता है। हम जब भोजन कर रहे हैं तो सख्त में ध्यान रखना है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, वो भी योग का पार्ट है। भोजन में हम ले रहे हैं तो उसके साथ जैसे पानी को वर्जित कहा गया है कि पानी भोजन के साथ नहीं लेना चाहिए, थोड़ा बाद में लेना चाहिए, आधा पौन घंटे बाद, तो लोग जानकारी के अभाव में उसको ले लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं भोजन में, खाद्य उनका कब लिया जाए भोजन कब, मैंने रोज देर रात तक 11-12 बजे तक खाते हैं, रात में भी खाते हैं, सुबह का कुछ पता नहीं है, उठते ही कुछ ले लेते हैं खाते, मतलब ये कुछ सिस्टम नहीं, ये सिस्टम को जीवन में लाना भी योग है।
0: जी, ऐसी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिनमें योग करके अपने आप को निरोग रखा जा सकता है?
3: योग तो वैसे बचपन से शुरू हो जाता है क्योंकि बच्चे जो खेल कूद का क्रम करते हैं वो भी योग का ही पार्ट है, लेकिन उसको स्कूलों में पीटी के रूप में, अन्य चीजों के रूप में शुरुआत करते हैं, और कुछ गेम्स होते हैं जो बच्चों को खेल में उनको वो चीज देते हैं, तो वो भी योग का पार्ट है। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, समझदार होता है, किशोरावस्था में आता है, तो उसको उसको जीवन में अपना लेना चाहिए।
0: जी,
3: और उसके बाद तो फिर वृद्धावस्था पे चलता है, जीवन के अंत समय तक योग चलता है।
0: अच्छा, ऐसी कौन कौन सी ऐसी योग की मुद्राएं हैं, ऐसे कौन कौन से योग किए जा सकते हैं जो व्यक्ति के लिए, उसकी दिनचर्या के लिए बहुत जरूरी है?
3: तो कुछ ऐसा है कि शरीर की मूवमेंट के लिए थोड़े से शरीर को संचालित करने वाले संधि, जितनी हमारी जोड़ है ना, इनसे संबंधित छोटी छोटी क्रियाएं हैं उनको कर लिया जाए, और उसके साथ में प्राणायाम है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है उसका, और कपालभाति बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है उसका। तो ये चीजें कुछ कर ली जाए तो मैं समझता हूँ कि 10-15-20 मिनट भी अगर आप पर डे देते हैं शरीर के लिए तो ये सफिशियंट है आपके लिए, अगर आपको कोई विशेष समस्या नहीं है तो।
0: जी, हम आपसे वो योग की क्रियाएं जानना चाहेंगे जो आसानी से की जा सकती हैं और शरीर को स्वस्थ रख सकती हैं। बताइएगा कि किस तरीके से, जैसे लोग करना शुरू कर देते हैं लेकिन वो सही तरीके से कर नहीं पाते हैं, मान लिया प्राणायाम वाली बात है या कपालभाति वाली बात है, तो ये नहीं कर पाते हैं, तो किस तरीके

0: अच्छा प्रश्न है आपका जी, क्योंकि जब तक उस बारीकी से उसकी जानकारी नहीं होगी तो लाभ कम मिलता है, अगर जानकारी होगी तो लाभ अच्छा मिलता है। बहुत सच्ची क्रिया है, मैं आपको कुछ तो बैठ करके बता देता हूँ। जैसे हम लोग कोई भी योग की क्रिया करते हैं तो हमें कहा जाता है कि कमर को सीधा रखें। उसको सीधा रखने के पीछे कारण है जो हमारे अंदर जो बैकबोन है, बैकबोन से होकर के हमारी सारी नसें गुजरती हैं महत्वपूर्ण, जिनमें सुषुम्ना इंद्रिय पिंगला जो नाड़ियां होती हैं, सर्कल पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, वहीं से होकर जाती हैं। जब नस सीधी होती है कोई भी तो उसमें ब्लड का जो फ्लो है वो तीव्रता से होता है, जो हम चाह रहे हैं वो पूरा हो जाता है। तो हमने श्वास को लिया है और उस श्वास के साथ में जो ब्लड का फ्लो है तो उसमें अगर कोई अवरोध नहीं है तो वो शीघ्रता से हमारे मस्तिष्क तक जाता है और फिर वहां से रिटर्न होकर शरीर के विभिन्न पार्टों में चला जाता है
1: जी।
0: तो ये करने का तरीका सबसे पहले महत्वपूर्ण है। संबंधित योग को हम कर रहे हैं उसका हमको नॉलेज की कैसे करें
1: जी।
0: तो जोड़ों के हमारे बहुत सारी छोटी छोटी क्रियाएं हैं, मूवमेंट वाले हैं, बहुत सिंपल है। जैसे जितने हमारे जोड़ हैं ये हमारे सभी जोड़ चल जाने चाहिए। तो जैसे हमने उंगलियों को ऐसे करके लिया है तो हमने बहुत सिंपल तरीके से लिया, अब इसको थोड़ा सा फोर्सली लेंगे, दबा कर लेंगे तो ऐसा लगेगा हम किसी चीज को पकड़ रहे हैं।
1: जी जी।
0: तो एक नॉर्मल फोर्स से थोड़ा ज्यादा हो गया
1: जी।
0: ज्यादा हो गया तो ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है, जैसे ही हमने उसके फोर्स को रोका तो ब्लड यहाँ बंद गया। अब जैसे खोलेंगे एकदम दौड़ेगा
1: जी जी।
0: तो वो जो हल्के से चलने वाली क्रिया है उसको जैसे रोक करके करते हैं तो ब्लड का फ्लो आ जाता है। तो फ्लो में क्या होता है, जो उसमें टॉक्सिन्स होते हैं, जो कुछ भी उसमें जमाव होता है वो बह जाता है
1: जी जी।
0: जैसे आपने कभी देखिए पानी से हम लोग फर्श धोते हैं, सामान नहीं धुल रहा है तो थोड़ा सा दबा दिया उसको
1: जी जी जी,
0: और प्रेशर पड़ा तो वो बह गया
1: जी।
0: तो ऐसे ही हम अंदर कैसे दबाएं, तो हमने किसी भी क्रिया को किया उसको थोड़ा फोल्ड कर प्रेशर के साथ किया और जैसे ही रोका छोड़ा
1: मतलब उसका रक्त का जो है वो बहाव तेजी से
0: झटके के साथ तेजी से देने की क्रिया है। ऐसे कपालभाति में यही क्रम होता है, कपालभाति में सिंपल क्रम होता है।
1: किस प्रकार से कपालभाति के बारे में लोगों को बड़ी भ्रांतियां हैं कि किस तरीके से करना चाहिए, कौन सी नाक से जो है छिद्र से श्वास लेना चाहिए, किससे छोड़ना चाहिए।
0: कपालभाति में तो दोनों नाक से श्वास को आवागमन होता है, श्वास को आपको लेना नहीं होता है, नॉर्मली श्वास थोड़ी सी अंदर पहुंची होती है उसको झटके के साथ बाहर फेंकना होता है। जैसे हम नॉर्मल सांस लेते हैं
1: किस प्रकार से करते
0: तो
1: हैं?
0: मैं बताता हूँ आपको, करके दिखाता हूँ। कमर को सीधी कर लेंगे, हाथों को इस प्रकार रख लेंगे और जो भी श्वास आपके अंदर है पहले तो नॉर्मल सांस अंदर लेकर के बैठते हैं, फिर श्वास को बाहर फेंकते हैं झटके के साथ, पेट पे कंपन होगा और श्वास बाहर जाएगी ऐसे।
1: ये एक साधारण सी जो है वो कपालभाति।
0: हाँ, कपालभाति में क्या होता है, जैसे लोग बहुत समय करते रहते हैं और बहुत लगातार करते रहते हैं तो पहले तो उसको समझना है कि कपालभाति जब कर रहे हैं तो पेट में झटका सा लग करके पीछे की ओर पेन पहुंचेगा।
1: अच्छा,
0: तो स्टार्टिंग में आप नए हैं तो 10-15 बार पहला श्वास को छोड़े, फिर रोक लें, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाए, फिर उसके क्रम को 20-25 बार बढ़ाएं और ऐसे हर रोज हर स्टेप में आप इसको 10+ करते जाइए, 10-15+ करते, और ये 100 को पार कर जाए, 200 को पार कर, लोग हजारों को पार कर जाते हैं, घंटों घंटों बैठ के प्राणायाम करते हैं। ऐसे ऐसे मोटे लोग हैवी हो गए, वो कर करके पतले हो गए
1: जी।
0: तो कहने का मतलब है कि वो ब्रेन को पूरा शरीर को एक्टिव करने में, ब्लड को सर्कुलेट करने में मदद करता है।
1: हाँ। इस प्रकार से अनुलोम विलोम के बारे में भी थोड़ा सा किस तरीके से किया जाए कि
0: ऐसे ही आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या है, हम लोग बहुत सिंपल सी मुद्रा ये ऐसे बना लेते हैं और इसको दोनों उंगलियों को इस प्रकार से मोड़ के बना लेते हैं
1: इस तरह से।
0: हाँ, चिन्ह मुद्रा प्रणव मुद्रा के अंदर, और इसको बाई नासिका को सबसे पहले दाहिने को बंद करके बाई से श्वास लेते हैं। तो बाई से हमने श्वास ली, अंदर घेरी खींची। अब क्या होता है, अंदर श्वास को होल्ड करना होता है, जो ऑक्सीजन आपके अंदर गई है वो अंदर में और ब्लड में घुल जाए, इतना टाइम दीजिए उसे। जब आपको लग रहा है कि श्वास नहीं रोक पाएंगे तो फिर श्वास की नाक को चेंज कर लीजिए, जिससे आपने श्वास ली थी उसको बंद कर दीजिए, दूसरी नासिका से धीरे धीरे श्वास को निकालिए, थोड़ा बिना श्वास के रहने का प्रयास करिए, फिर उसी नासिका से श्वास को भरिए। ये क्रम हुआ आपका
1: जी।
0: जैसे श्वास भरेंगे तो पेट भी फूलेगा, चेस्ट फूलेंगे, आपको श्वास को अंदर होल्ड कर दीजिए। जो श्वास का पार्ट गया जिसमें ऑक्सीजन लेवल है, ऑक्सीजन हमारे शरीर को चाहिए, वो ब्लड में मिल जाती है और जैसे ही मिलती है तो ब्लड धीरे धीरे करके प्योरीफाई होने लगता है
1: जी।
0: और इसको हम जब रोजाना 10-20-15 मिनट करते हैं और रोज करते हैं तो जो आजकल डॉक्टर लोग चिकित्सा के दौरान ब्लड को चेक करते हैं तो उसमें बहुत सारी कमियां आती हैं, ये अशुद्धि उसके लिए टेबलेट्स दुनिया भर की डिमेडिसिन देते हैं, स्वाभाविक है कि आप इसको नियमित करिए तो ये ब्लड इतना शुद्ध हो जाएगा कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी दवा की।
1: जी जी
0: जो उसमें

0: की थी वो तो उसने निकाल दी, ऑक्सीजन का लेवल उसको बढ़ा रहा है, और ब्लड का अशुद्ध होना ही सबसे रोग का कारण है शरीर के। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है ना कि सबसे पहले किसी ना किसी योगाचार्य से इन नियमों क्रियाओं के बारे में सीख लेने के बाद ही जो है वो करना चाहिए, वरना तो इसका विपरीत असर भी हो सकता है।
1: ना बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन आधुनिक समय में मैं समझता हूँ कि योगाचार्यों की कमी नहीं है, बहुत लोग हैं, क्योंकि अब तो ये पूरे विश्व में फैल चुका है
0: जी, और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को बड़ी जानकारी मिल रही है
1: जी, जी। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक तरह से त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है जगह जगह, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज हो गई और हर आदमी जागरूक हो गया।
0: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में काम और काम, पैसा और पैसा, इसके पीछे जब भागदौड़ में लगा हुआ है व्यक्ति तो ना तो अपने सोने का, खाने का, इन सब का ध्यान रख पाता है, तो ऐसे में थोड़ा सा हमें बताइएगा कि भोजन का किस प्रकार से ध्यान रखा जाए, किस समय भोजन किया जाए, किस प्रकार का भोजन किया जाए जिससे कि हमारा स्वास्थ्य भी सही रहे।
1: ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, शास्त्रों में योग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये
0: जी।
1: क्या होता है कि शास्त्रों में कहा खाद्य और अखाद्य, खाद्य वो पदार्थ है जो शरीर के लिए पोषकता देते हैं, जो हमारे शरीर को पोषकता चाहिए, जिनमें हमारे पास जैसे विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, 18 पोषक तत्वों का वर्णन है, वो हमारे शरीर को मिलने चाहिए। तो ऐसी चीजें ही हम खाएं जो हमारे शरीर को पोषकता दे रहे हैं, ऐसी चीज ना खाएं जिसमें पोषकता नहीं है। अब बहुत सारे लोग इसके जीव के स्वाद के चक्कर में जो कुछ भी ले ले रहे हैं। दूसरा बात यह कि हम ये कैसे जज करेंगे कि इसमें है कि नहीं है, तो इसके लिए कहा गया कि जितनी प्राकृतिक चीजें हैं जो अन्न के रूप में है, कैसे के रूप में, सीधे हमको फल के रूप में प्राप्त हो रही है,
0: उन्हीं को सेवन करें,
1: उनको ज्यादा सेवन करें, और जो हमको फास्ट फूड है ये सब जल भून करके, तल करके, ये बहुत ज्यादा गरिष्ठ हो जाता है, ये इसमें पोषकता नष्ट हो जाती है, तो वो उतना उपयोगी नहीं है। हाँ, लोगों के ये लगता है कि थोड़ा जीभ के लिए, खाने के लिए स्वाद चाहिए, तो कभी कभार ले लीजिए, लेकिन ज्यादा मात्रा में समझता हूँ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो कारण क्या है कि शरीर के अंदर जा करके उससे कुछ मिलेगा नहीं, एनर्जी और खर्च हो जाएगी, उसमें जो गंदगी जा रही है वो अंदर स्टोर हो जाती है, तो वो रोग का कारण
0: जी। जैसा कि खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन और वैसा ही रहेगा तन
1: जी जी जी।
0: तो इस ओर विशेष ध्यान रखना है कि हमें खान पान पर अपना नियंत्रण बना करके रखना है।
1: तो शास्त्र कहते हैं कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त होने के बीच में भोजन का नियम है, रात्रि भोजन का नियम नहीं है। लेकिन कभी कभार क्या है कि आजकल देर रात काम करके लोग लौटते हैं, तो कोशिश करें कि वो अपना टिफिन ले जाएं, दिन में खा लें और रात्रि में हल्का भोजन लें, सुपाच्य कुछ थोड़ा
0: जी।
1: भोजन करने के बाद आधा एक घंटा कम से कम वो टहल लें, घूम लें, और सोने के बीच में 1 से 1.5 घंटे का गैप हो जाए
0: जी।
1: तुरंत सो जाओगे तो कारण बनेगा कि वो रोगों को लाए
0: जी। योगाचार्य जी, आपने योग के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, साथ ही साथ किस प्रकार का भोजन करें जिससे कि हमारा तन मन स्वस्थ रहे। कल अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस है
1: जी।
0: तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: कल तो एक त्योहार के रूप में मैं समझता हूँ पूरा विश्व उसको मनाएगा
0: जी,
1: और हर व्यक्ति को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए केवल त्योहार के रूप में मनाने तक नहीं सीमित है, बल्कि त्योहार इसलिए आते थे कि उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में अपनाए
0: जी।
1: तो हर व्यक्ति इससे जुड़े और अंतर्राष्ट्रीय योग के माध्यम से शिक्षण ग्रहण करे, शिक्षा प्राप्त करे, जो प्रोटोकॉल बनाया गया है विद्वानों द्वारा, सरकार के द्वारा जो समाज को दिया जा रहा है, उसका पालन करे और सहजता से अपने घर में प्रतिदिन योग करके अपने को स्वस्थ बनाए, ऐसा मेरा संदेश
0: जी। जी, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो भैया बहनों, देखो अभी आपने सुनी क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता, करें योग रहें निरोग। जानकारी दे रहे थे श्री राजेंद्र प्रसाद और आपसे बातचीत कर रहे थे भैया धारा सिंह, और हम भी भैया चलते चलते जय गाएंगे कि आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और योग करते रहें। फिलहाल अगले कार्यक्रम में हम दोनों भैया नई नई जानकारी लेकर आपके बीच फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अपने भैया कृष्णपाल
0: और धारा सिंह को दीजिए अनुमति। भैया बहनों
2: राम राम, राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुनिए।

प्रमोद गंगवार पुत्र नन्हेलाल ग्राम कन्हू नगला थाना शाही जनपद बरेली से सूचित करते हैं कि उनकी बहन लता गंगवार 21 मई 2026 से लापता हैं, जिसकी आयु लगभग 27 वर्ष, ऊंचाई 4 फुट 10 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा गोल, बाल काले, ये टी शर्ट जीन्स की पैंट और जूते पहने हैं। यदि किसी को इनके बारे में कोई जानकारी हो तो कृपया इस पते पर सूचित करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली।

खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक अन्य सूचना, ग्राम पनबड़िया थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली से सुरजीत पुत्र कल्याण सिंह सूचित करते हैं कि उनका भाई संजू 14 मई 2026 से लापता है, जिसकी आयु लगभग 25 वर्ष, रंग सांवला, इखरा मजबूत जिस्म, चेहरा लंबा, आंखें काली, ये कुर्ता पजामा पहने हैं। जिस किसी को यदि इनके बारे में कोई जानकारी हो तो कृपया इस पते पर सूचित करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक

0: कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा बुंदेलखंड में बनेगा प्रदेश का पहला फार्मा पार्क। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों में होगी आयोजित। प्रदेश में अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किरायों में मिलेगी 50% की छूट और प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य पूरा। दूसरा चरण अगले वर्ष 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होगा सम्पन्न। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मुक्ता शर्मा, समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के हुगली में तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। इनमें उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं, जिनके खातों में 4,352 करोड़ रुपए की राशि पहुंची है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशभर के किसानों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया।
1: आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रदेश भर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी से इस कार्यक्रम में सहभागिता की। श्री योगी ने प्रदेश के किसानों की ओर से इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि अन्नदाता के परिश्रम, सम्मान और समृद्धि के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। प्रदेश के किसानों ने खुशी व्यक्त करते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। जौनपुर के एक लाभार्थी ने कहा,
2: किसानों को बहुत फायदा मिलता है, बीज लेने के लिए, खाद लेने के लिए, जुताई देने के लिए काम आ जाता है। उसके लिए हम प्रधानमंत्री के आभारी हैं। जैसे छोटे मोटे किसान हैं, उनको फायदा हो जाता है, इससे किसानों को आसान हो जाता है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ललितपुर में 1,766 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड विकास का एक मॉडल बन रहा है। उन्होंने कहा कि हर घर नल योजना बुंदेलखंड में साकार हो रही है, शुद्ध पेयजल लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है।
3: अब मुझे अच्छा लगता है कि हमारी बहन और बेटियां, हमारी माताएं सिर में घड़ा लेकर के नहीं, हर घर नल की योजना साकार हो रही है। बुंदेलखंड के अंदर शुद्ध पेयजल उनके घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है, तो बुंदेलखंड अब एक मॉडल बन रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी अगर हम कहीं बसाने जा रहे हैं, तो वहां भी बुंदेलखंड में बसाने जा रहे हैं।
0: श्री योगी ने कहा कि ललितपुर में प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है।
3: आज ललितपुर बदल चुका है। अब ललितपुर के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है, अटल आवासीय विद्यालय भी है, और अभी 1,500 एकड़ क्षेत्रफल में हम उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क आपके ललितपुर जनपद में बनाने जा रहे हैं।
0: मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,69,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को इस बार परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। इससे पहले 3 मई को हुई नीट की परीक्षा कथित पेपर लीक विवाद के कारण रद्द कर दी गई थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और नकलविहीन ढंग से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। केंद्रों पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती के साथ पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। प्रदेश में 59 जिलों में नीट की पुनर्परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश रेलवे लखनऊ मंडल विशेष अनारक्षित स्पेशल रेलगाड़ियां चला रहा है।

पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। मुख्यमंत्री ने ललितपुर में राजकीय मेडिकल

0: वहीं प्रवेश पत्र दिखाने पर अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराये में 50% की छूट मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में भी योग के दिवस के अवसर पर सभी जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश में सभी जनपदों में योग दिवस के अवसर पर कल योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में योग दिवस पे होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं लखनऊ स्थित राजन भवन में इस अवसर पर महिला योग सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाएं योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करेंगी। इसी तरह विभिन्न जनपदों में प्रदेश सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। योग दिवस पर विद्यालयों में सामूहिक योगाभ्यास और योग से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां विद्यार्थियों को योग के शारीरिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी। समाचार कक्ष से सुषमा कुकरेती।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और समावेशी विकास की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुलामी की मानसिकता को लेकर कोई समाज स्वावलंबी नहीं हो सकता, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। आत्मनिर्भरता के लिए गुलामी की मानसिकता को दूर कर अपनी विरासत के प्रति गौरवान्वित होना चाहिए। मेरठ की ग्राम पंचायत फफुंडा स्थित प्राथमिक विद्यालय में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉ सोमेंद्र तोमर ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि आज प्रदेश विकास, निवेश और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है।
2: सरकार आपके द्वारा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के द्वारा हमेशा प्रयास यही है कि सरकार अपने जो सम्मानित नागरिक है उनसे संवाद करके उन सुझावों के साथ हम लोग प्रदेश और देश के विकास में उनकी सहभागिता हो। आज भी हम लोगों ने यहाँ पर जो स्टॉल्स के माध्यम से जो जिले के अलग अलग विभाग है उनकी सबकी स्टॉल्स लगी और यहाँ पर जो उनके सुझाव है, यदि कोई पेंशन के लिए था तो उसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है। लेकिन हमारी स्वयं सहायता समूह, 32 स्वयं सहायता समूह इस गांव के अंदर है, उसकी जो मातृशक्ति का योगदान हमारे इस गांव के लिए, इस मेरठ के लिए हो रहा है, उसका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार के परिवर्तनकारी पहलों की जानकारी दे रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान जनगणना का काम 100% पूरा कर लिया गया है। पहले चरण में निर्धारित 22 मई से 20 जून 2026 तक घरों की गणना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। राज्य के जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार प्रदेश के सभी 75 जिलों, 350 तहसीलों और 1,00,000 से अधिक गांवों में मकान सूचीकरण के लिए 5,00,000 से अधिक प्रगणकों और पर्यवेक्षकों ने सक्रिय भूमिका निभाई। जनगणना का दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की गणना होगी। इसी चरण में जाति गणना की भी की जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। मुख्यमंत्री ने ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बुंदेलखंड में बनेगा प्रदेश का पहला फार्मा पार्क। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों में होगी आयोजित। प्रदेश भर में अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में मिलेगी 50% की छूट। और प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य पूरा। दूसरा चरण अगले वर्ष 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होगा संपन्न। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: APJ अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।
2: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन, जिसमें आज का विषय है नवजात बच्चों के इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका, शंकाएं व समाधान। कार्यक्रम में विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कुलदीप गंगवार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
4: गंगवार हॉस्पिटल, निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
3: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा,
4: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी,
3: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड,
4: सांस नियंत्रण के लिए CPAP, वेंटिलेटर, HFNC और ईयर वो मशीनें।
5: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए बिना खून निकाले पीलिया की जाँच,
4: खास तरह के वेंटिलेटर HFO ऑक्सीलेटर, थेरेप्यूटिक हाइपोथेरेमिया बाय क्रिटिकूल,
3: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM, बेड साइड इको, अल्ट्रासाउंड की सुविधा।
4: साथ ही बच्चों में पीलिया, सेप्टिक इन्फेक्शन, निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा।
5: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चैरिटेबल OPD,
4: बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय,
3: गंगवार हॉस्पिटल,
4: निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
5: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
6: श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि आपकी विभिन्न समस्याओं के समाधान हम करें। विशेष तौर से अगर हम बात करें स्वास्थ्य समस्याओं की, तो स्वास्थ्य समस्याओं के लिए एक ऐसा मंच है हमारा ये कार्यक्रम, जहां फोन के माध्यम से भी आप अपनी समस्याएं डॉक्टर्स के सामने रखते हैं, हम उनके उचित समाधान करते हैं। और इसी क्रम में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका।
7: श्रोताओं, आपको पांडे जी, आपको मेरा नमस्कार।
6: और डॉक्टर साहब, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो मूल मुद्दा है नवजात बच्चों के इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की भूमिका के विषय में हम बात करेंगे। शंकाओं के समाधान हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं की जरूर करें। हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि जो नवजात शिशु या नवजात बच्चा कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, उसकी परिभाषा किस तरह दी जाए।
7: देखिए, नवजात शिशु जो बच्चा पैदा होने के बाद
6: जी
7: और 1 महीने तक का जो बच्चा होता है उसको हम लोग नवजात शिशु बोलते हैं या न्यू बॉर्न बोलते हैं
6: जी।
7: और इन बच्चों की जो समस्याएं हैं वो थोड़ा बड़े बच्चे होते हैं उनसे थोड़ी अलग होती हैं।
6: अच्छा।
7: और जो न्यू बॉर्न बच्चे, नवजात शिशु बच्चे, वो भी हम 2 कैटेगराइज में कर सकते हैं। एक बच्चे जो समय से पहले पैदा हुए जिनको हम लोग प्री टर्म बच्चे बोलते हैं, एक जो समय से पैदा हुए फुल टर्म बेबी है
6: जी।
7: और फिर उनका आगे क्लासिफिकेशन बच्चों के वजन के हिसाब से।
6: डॉक्टर साहब, एक श्रोता इसी बीच लाइन पर आ गए हैं, इनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, रेडियो हेल्पलाइन में स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न है और कहां से बोल रहे हैं।
7: हाँ बताइए मुन्ना लाल जी, क्या प्रश्न है आपका।
6: बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे आज के कार्यक्रम के लिए, क्योंकि विषय भी यही है हमारा
7: जी। जी, देखिए, जो वेंटिलेटर्स मशीन है, ये मशीन है बच्चों को कृत्रिम सांस देने की मशीन है। और कृत्रिम सांस देने की उन बच्चों को जिनको एक तो सांस की परेशानी हो या दिल की परेशानी हो या बच्चे का परफ्यूजन बहुत अच्छा नहीं है और बच्चा कोलैप्स करने वाला हो, बच्चा बहुत सीरियस हो, तो जिस बच्चे को बीमारियां हैं जिनकी, नवजात शिशुओं की, जिनमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, जैसे बच्चा पैदा होने के बाद रोता नहीं है या ठीक से नहीं रोया, तो जिसको हम लोग बर्थ एस्फिक्सिया बोलते हैं, उन बच्चों में सांस कई बार बहुत खराब सांस होती है, कई बार वो सांस रोकते हैं या सांस तेज होती है या सांस में बहुत गड्ढे पड़ते हैं या सांस झटके से लेते हैं, और बच्चे फिर कई बार

अब ऑक्सीजन की कमी होने लगती तो ये बच्चे नीले पड़ने लगते हैं, और तो एक तीन बच्चों की जरूरत पड़े। दूसरे बच्चे जिनको सांस में गंदा पानी ले लेते हैं, तो गंदा पानी जिसको हम लोग कहते हैं मीकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, बच्चा जो अपना माँ के घर में ही और जो फ्लूड होता है जिसमें होता है एमनेटिक फ्लूड बोलते हैं, इसके बच्चे के चारों तरफ ही फ्लूड होता है माँ के गर्भाशय में, उस फ्लूड में अगर बच्चा अपना स्टूल पास कर दे, लैटिन कर दे, तो उसको मीकोनियम बोलते हैं। जो शुरू का लैटिन होती है बच्चे की उसको मीकोनियम बोलते हैं, और अगर वो मीकोनियम वाले फ्लूड बच्चे के फेफड़ों में चला जाता है जब बच्चा पैदा होता है या पैदा होते समय, तो वो बच्चे को सांस में परेशानी कर सकता है। तरह तरह से बच्चे की सांस खराब हो सकती है, बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, और बच्चे की सांस बहुत गड्ढे पड़ सकते हैं। तो मीकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम वाले बच्चों में वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है।

0: मिकुनियो एस्पिरेशन सिंड्रोम वाले बच्चों में वेंटिलेटर जरूरत पड़ती है, या फिर वो बच्चे जिनको सेप्टिक शॉक है, जिनको सेप्सिस है, जो बच्चे दूध पीना छोड़ देते हैं, बच्चे फिर शॉक में चले जाते हैं, उनका परफ्यूजन बहुत खराब हो जाता है और बच्चे की सांस तेज चलने लगती है, एसिडोटिक कई बार ब्रीदिंग होती है इन बच्चों की, तो उन बच्चों में वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ जाती है। या फिर जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के बच्चे होते हैं, जिनके कोई दिल की परेशानियां होती हैं, उन बच्चों को जरूरत पड़ती है। या फिर जो बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं, जिनको हम लोग प्री टर्म बच्चे बोलते हैं या प्रीमेच्योर डिलीवरी बोलते हैं, जो 7 महीने 8 महीने के पीरियड के बाद ही पैदा हो जाते हैं, उन बच्चों की लंग्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते, तो उन बच्चों को एक तकलीफ हो जाती है जिसको हम लोग हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज बोलते हैं। उस सिंड्रोम की वजह से बच्चे का जो प्रेजेंटेशन होता है, बच्चा किन्हाता है तो या कराहता है, और कराहने के साथ बच्चा ग्रोन तो करता ही है, साथ में बच्चे की सांस तेज चलने लगती है, चलने के साथ सांस में गड्ढे पड़ने लगते, और जब ये तकलीफ बहुत ज्यादा होती है तो उसमें फिर बच्चा नीला पड़ने लगता है, बच्चा शॉक में चला जाता है। तो इन बच्चों में भी वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ती है, और खासतौर से इन बच्चों को एक दवाई फेफड़ों में दी जाती है जिसको हम लोग सर्फेक्टेंट बोलते हैं, तो सर्फेक्टेंट देने के लिए बच्चों को वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो और या कई बार बच्चों का पीलिया बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उन बच्चों को वो बच्चे सांस रोकने लगते हैं, तो उन बच्चों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाती है। या कुछ बच्चे जो पैदा होने के बाद कई बार जिनको कई बीमारियों के कारण दौरे पड़ सकते हैं, और वो दौरे इतने ज्यादा पड़े कि बच्चा, अगर आप दवाई देते हैं बच्चों को दौरे रोकने की, तो उसके दौरान बच्चे सांस रोकने लगते हैं, तो उन बच्चों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। या फिर वो बच्चे जो निमोनिया के बच्चे हैं, जिनकी सांस बहुत खराब है, तो उन बच्चों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ खास बीमारियां जिन्हें बच्चों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो एक तो हम ध्यान रखें कि हमारा बच्चा अगर किन्हा रहा है, या बच्चा कराह रहा है, या बच्चे की सांस खराब है, बच्चे की सांस बहुत तेज है, या बच्चा नीला पड़ रहा है, या बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है। कई बार कुछ बच्चे जो पैदा होने के बाद नहीं रोते, लेकिन बाद में बहुत अधिक रोते हैं, और फिर इतना रोते हैं कि वो रोते रहते हैं और दूध भी बहुत कम पीते हैं, तो उन बच्चों को तुरंत डॉक्टर को दिखा के अच्छे सेंटर पे इलाज कराना चाहिए, कि इन बच्चों में वेंटिलेटर्स की जरूरत भी पड़ सकती है। ठीक है,
1: जी स्क्रीनिंग मशीन की सुविधा उपलब्ध,
0: जी जी जी जी,
1: एबीजी मशीन की सुविधा उपलब्ध,
0: जी जी,
1: अच्छा मशीन की सुविधा उपलब्ध, ये मशीन क्या है?
0: चलिए, आपका बड़ा उत्सुकता है इन मशीनों को जानने के बारे में,
2: बहुत बड़े जानकार हैं ये।
0: जानकार नहीं है, ये अखबार बड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, जितना आपका वो एडवर्टीजमेंट होते हैं उस पर बड़ा ध्यान रखते हैं, कहाँ क्या अवेलेबल है।
2: अच्छी बात है।
0: तो देखिये, जो आपने पूछा ओई मशीन है, ओई मशीन क्या है, एक हियरिंग स्क्रीनर है, बच्चे की हियरिंग चेक करते हैं, बच्चे को सुनाई ठीक से पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, क्योंकि सुनाई पढ़ना बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक है, अगर बच्चा ठीक से सुन नहीं पा रहा है तो आगे चलकर ये बच्चे बोल भी नहीं पाएगा। तो खासतौर से वो बच्चे जो समय से पहले पैदा हो जाते हैं, उनकी हियरिंग चेक होना चाहिए, या जो बच्चे बहुत प्री मेच्योर हैं, उनकी कई बार हियरिंग को नुकसान हो सकता है, उनका इस मशीन से टेस्ट होना चाहिए, या उन बच्चों जिनको मेनिनजाइटिस हो गई, दिमागी बुखार है, उन बच्चों को हियरिंग चेक होना चाहिए, या और बच्चे जिनको लगातार दौरे पड़ रहे हैं और बच्चे पैदा होने के बाद नहीं रोए हैं, बर्थ एस्फिक्सिया है, तो उन सब बच्चों को हियरिंग चेक होना चाहिए। दूसरा, आपने पूछा था कि ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनमीटर, ये एक ऐसी मशीन है जिससे कि हम लोग बच्चों का बिलिरुबिन नापते हैं,
2: मतलब लिवर की समस्या,
0: हाँ, जो जॉन्डिस हो जाता है, जिसको पीलिया बोलते हैं, उस पीलिया को नापने के लिए, खासतौर से जो नवजात शिशुओं को पीलिया होता है, ये जो बड़ों में पीलिया होता है, उस पीलिया से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इन बच्चों का जो पीलिया होता है उसमें मेनली इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ता है। बिलिरुबिन जो होता है वो दो तरह का होता है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट। तो जो नवजात शिशुओं का पीलिया होता है, उसकी जांच के लिए ये ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनमीटर, और इस मशीन की खास बात यह है कि इसमें बच्चे का खून नहीं लेना पड़ता है, तो ये स्किन को टच करके ये रीडिंग दे देता है, जिससे कि, और दिन में आप इसको 10 बार 20 बार नाप सकते हैं, क्योंकि जब पीलिया बहुत तेजी से बढ़ता है तो वो पीलिया बहुत खतरनाक पीलिया होता है। अब आप जानना चाहेंगे किन बच्चों में पीलिया बढ़ता है, खासतौर से प्रीमेच्योर बच्चे हैं, या जो डिफिकल्ट डिलीवरी है, या जिन बच्चों को कहीं से सिर के अंदर कैफेले हेमेटोमा हो गया, सिर में सूजन आ गई, सिर में ब्लीडिंग हो गई, या फिर बच्चों जिनकी माँ, बच्चों का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है,
2: अच्छा,
0: ये बच्चों का और माँ का ब्लड ग्रुप अलग अलग है, तो उन बच्चों में पीलिया होने की संभावना अधिक होती है, या फिर कुछ बच्चे जिनको एक एंजाइम होता है जी 6PD डेफिशिएंसी, वो अगर कम होता है तो उन बच्चों को भी पीलिया अधिक होता है। तो पीलिया जिन बच्चों को अधिक

0: होने के चांस रहते हैं, या जैसे किसी बच्चे का जो पहला वाला बच्चा है उसको पीलिया था तो दूसरे बच्चे को भी पीलिया होने के चांस रहते हैं। तो उन बच्चों को बिलोबिन नापने के लिए, और इसमें खून की आवश्यकता नहीं होती तो बच्चे को दर्द नहीं होता और बच्चे का खून नहीं लेना पड़ता, क्योंकि खून बार बार लेने से बच्चे को कई बार इन बच्चों को खून की कमी भी हो जाती है, तो वो ब्लूनोमीटर है। तो ये जो नवजात शिशु होते हैं जो वेंटिलेटर्स होते हैं, तो जब हम इनको वेंटिलेट करते हैं मतलब बच्चे को सांस देते हैं, तो उस सांस को हमें ये देखना होता है कि हम सांस वो पर्याप्त दे रहे हैं, बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन लेवल ठीक है, बच्चे के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ठीक है। तो उन गैसेस को नापने के लिए आर्टेरियो ब्लड गैस एनालिसिस होती है, जिसको हम लोग ABG मशीन बोलते हैं। इस मशीन का एक फायदा ये है कि ये गैसेस तो देती ही देती है, साथ में आपको इलेक्ट्रोलाइट्स भी देती है, जिससे हम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में एक और चीज देती है ये, जिसको हम लैक्टेट बोलते हैं। तो लैक्टेट का ये फायदा है, जो बच्चे शॉक में होते हैं जिनका सर्कुलेशन या परफ्यूजन अच्छा नहीं है, जिनका खून का दौरान अच्छा नहीं है, तो हमें पता लग जाता है कि बच्चा शॉक में तो नहीं आ रहा है, तो लैक्टेट देती है, ब्लड शुगर भी देती है, और क्रिएटिनिन या रीनल फंक्शन के बारे में भी बताती है मशीन। तो इस मशीन का ये फायदा है कि इसमें आपको रिपोर्ट तुरंत मिल जाती है, वरना अगर लैब से आप जांच कराते हैं तो रिपोर्ट आपको 4 से 6 घंटे बाद मिलती है, और जो ABG मशीन होती है उसके आपको विदिन 2 मिनट्स आपको रिपोर्ट मिल जाती है।
1: जी मुन्ना लाल जी, और कोई भी प्रश्न है आपके पास?
2: धन्यवाद सर, बहुत बहुत जानकारी।
1: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ऐसी चीजों को उठाते हैं, ऐसी बातें आप सोच करके डॉक्टर साहब से हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से पूछ लेते हैं, जिनकी जानकारी एक आम आदमी को होना बड़ी मुश्किल बात है, और बहुत सी शंकाओं के समाधान आप अकेले ही कर देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। वेंटिलेटर के विषय में जो आपने बताया, तो वेंटिलेटर बुजुर्गों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, वेंटिलेटर जो है वो युवाओं में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जहां तक बुजुर्ग और युवा और बच्चों की बात है, तीनों की शारीरिक संरचना में, तीनों के अंगों में बहुत फर्क होता है। तो बच्चों के साथ जो वेंटिलेटर इस्तेमाल हो रहे हैं, ये वेंटिलेटर क्या वही वेंटिलेटर हैं जो आम आदमी के साथ इस्तेमाल होते हैं?
0: देखिए आप उससे अलग है? जी पांडे जी, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। जो बच्चों में वेंटिलेटर इस्तेमाल होते हैं, उनकी खासियत ये होनी चाहिए, उनकी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज बच्चे के लंग्स को डैमेज हो सकते हैं। कुछ वेंटिलेटर्स ऐसे होते हैं जो कि डेडिकेटेड है, मतलब वो टोटली समर्पित हैं बच्चों के लिए, खासतौर से नवजात शिशुओं के लिए,
1: विशेष तौर से बच्चों के लिए।
0: जैसे बेबीलॉक मशीन है ड्रेगर की, तो वो मशीन एक तरह से बिल्कुल डेडिकेटेड न्यूनेटल वेंटिलेटर्स हैं, और उसमें फायदा ये है कि वो बच्चे का टाइडल वॉल्यूम है वो बिल्कुल एक्यूरेट नापते हैं। जैसे हमें 800 ग्राम के बच्चे है उसको टाइडल वॉल्यूम 2.5 ml 3 ml देना है, एक ब्रेथ जो सांस दे रहे हैं हम, उस सांस का वॉल्यूम क्या है, ऑक्सीजन और हवा मिक्स करके वेंटिलेटर मशीन देती है, तो उसमें हम लोग ऑक्सीजन सेट कर देते हैं कि इतनी FiO2 दे रहे हैं, इतने प्रेशर पे दे रहे हैं और इतनी पीप दे रहे हैं। तो उस मशीन की खासियत यह है कि वो मशीन बिल्कुल एक्यूरेट आपको बता देती है कि इसको 2 ml कितना वॉल्यूम हुआ, जब बहुत जरा सा वॉल्यूम हुआ 2 ml 3 ml वॉल्यूम जो होता है उसको भी मेजर करते हो, उसको नाप के देती है। तो आपको 1 मिनट में कितनी ब्रेथ दे रही है, 1 मिनट में आपका कितना मिनट वेंटिलेशन है, तो बिल्कुल एक्यूरेट नापती हैं जो छोटी मशीन होती है। अगर हम कुछ वेंटिलेटर्स ऐसे हैं जिनको वो छोटे बच्चों में भी इस्तेमाल हो जाते हैं, पीडियाट्रिक्स में भी इस्तेमाल हो जाते हैं, एडल्ट्स में भी हो जाते हैं, उनकी सेंसिटिविटी वो नहीं रह पाती। उनको अगर हम नियोनेट्स में या नवजात शिशुओं में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कई बार रीडिंग्स इतना सेट नहीं आती जो हम चाहते हैं। तो जो कुछ न्यूनेटल वेंटिलेटर्स हैं, कुछ पीडियाट्रिक्स हैं, जिनमें कि टाइडल वॉल्यूम आपको फिर से एक्यूरेट नापना होता है, और जो एडल्ट वेंटिलेटर्स हैं उसमें 10-20 ml अगर टाइडल वॉल्यूम, मतलब जो एक सांस में हम वॉल्यूम दे रहे हैं, सांस का हवा कितनी दे रहे हैं, ऑक्सीजन कितनी दे रहे हैं, अगर वो 2-4 ml इधर उधर भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं,
1: बहुत फर्क नहीं पड़ता
0: एडल्ट्स में। लेकिन अगर बच्चों में और खासतौर से नवजात शिशुओं के लिए मशीन ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल एक्यूरेट नाप दे। और एक मशीन और जिसको हम लोग कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर,
1: जिसके बारे में
0: HFO, ये मशीन तब इस्तेमाल आती है जब हम जो कन्वेंशनल जो हमारे परंपरागत वेंटिलेटर्स हैं वो काम नहीं कर पाते, वो जब फेल होने लगते हैं, और तो ये फायदा है।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ जो बात की हमारी शुरुआत हुई थी वो हुई थी नवजात शिशुओं से, विशेष तौर से आपने बताया कि नवजात शिशु उन्हें भी कहते हैं जो कि समय से पूर्व पैदा होते हैं, और जो समय पर पैदा होते हैं उनकी अवधि आपने बताई कि 1 माह तक के शिशु को नवजात शिशु कहते हैं। लेकिन जो समय से पूर्व बच्चे पैदा हो रहे हैं,
0: नॉर्मली जो बच्चे पैदा होते हैं 37 वीक्स यानी 9 मंथ्स एंड 7 डेज, लेकिन अगर बच्चा 9 महीने से और 7 दिन से पहले पैदा हो जाता है, 37 मतलब 37 हफ्ते से पहले पैदा हो रहा है, तो वो प्रीमैच्योर बच्चा।

0: नेचुरली
1: और उस प्रीमेच्योर में भी फिर कई कैटेगरी हैं, जैसे कि अगर बच्चा 1 किलो से कम का है
0: अच्छा वजन का भी होता
1: जी,
0: है अच्छा
1: उसमें हम उसे बोलते हैं एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज
0: जी जी
1: ELWL।
0: अच्छा
1: और फिर 1 किलो से 1.5 किलो तक के बच्चे को बोलते हैं वेरी लो बर्थ वेट बेबी,
0: जी
1: और 1.5 किलो से 2.5 किलो तक के बच्चे को बोलते हैं LBW मतलब लो बर्थ वेट बेबीज, 2.5 किलो से ऊपर के बच्चे को हम एक नॉर्मल न्यूनेट मानते हैं।
0: अच्छा।
1: दूसरे कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं जो समय से तो पैदा हो रहे हैं
0: जी,
1: प्रीटर्म नहीं है लेकिन फिर भी उनका वजन कम,
0: वजन कम होता है,
1: उनको बोलते हैं IGR बेबीज। ग्रोथ रिटार्डेशन है माँ के शरीर के अंदर उन बच्चों को जो परिस्थितियां मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ इंट्राउटराइन ग्रोथ यानी गर्भावस्था के दौरान जो वृद्धि होनी चाहिए थी उतनी वृद्धि नहीं हुई,
0: यानी जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसके अनुरूप उन्हें नहीं मिल पाया,
1: मिल पाया।
0: वो प्राकृतिक चीजों को
1: वंचित रह गए,
0: वंचित रह गए
1: माँ की किसी तकलीफ की वजह से
0: जी,
1: या
0: जी,
1: किसी अन्य कारण से
0: जी, जी जी उसे कृत्रिम रूप से जो है वो इन मशीनों के द्वारा उपलब्ध कराया।
1: हाँ, उन बच्चों की भी IGR बच्चे जो होते हैं उनकी भी अपनी एक प्रॉब्लम होती है जिनको हम SGA भी बोलते हैं, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज।
0: जी जी
1: उन बच्चों की कई बार ब्लड शुगर कम हो जाती है और इस तरह की परेशानियां होती हैं, और जो प्रीटर्म बच्चे होते हैं उनमें उन बच्चों को सांस में परेशानी ज्यादा होती है या फिर उनका दूध डाइजेस्ट करने में परेशानी होती है, टेम्परेचर मेंटेन करने में परेशानी होती है, इसलिए टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो मशीन इस्तेमाल करते हैं इनको हम लोग रेडिएंट वार्मर्स या इंक्यूबेटर्स बोलते हैं। और चूंकि ये बच्चे बहुत छोटे होते हैं इनका जो फ्लूइड रिक्वायरमेंट है और जो दवाइयों की डोजेस है बहुत कम होती
0: है
1: तो उनको एक्यूरेटली मेजर उनको सही सही बिल्कुल नाप सही समय में और सही मात्रा में तो उसको देने के लिए सिरिंज पंप इस्तेमाल होते हैं।
0: अच्छा अच्छा, इन मशीनों का साथ साथ इस्तेमाल
1: जी सिरिंज पंप से या फिर वॉल्यूमेट्रिक पंप से IV फ्लूड देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब आपको कितना ग्लूकोज कितने घंटे में देना है
0: जी।
1: जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जैसे 1 किलो के बच्चे उनको 1 घंटे में आपको 4 या 5 ML फ्लूड देना होता है,
0: 1 घंटे में 4 या 5 ML।
1: हाँ, तो वो नापना वैसे नामुमकिन है,
0: नामुमकिन ही है,
1: कैसे दे सकते हो आप 4 ML 1 घंटे का
0: जी, जी, जी।
1: तो वो मशीन ही दे पाती है।
0: अच्छा, ये मशीनों के द्वारा संभव हो जाता है।
1: जी बिल्कुल संभव हो जाता है। और सांस के लिए जो एक तो जैसे वेंटिलेटर्स मशीन इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरी जो नॉन इन्वेजिव मशीन है जैसे हम जिनको CPAP मशीन बोलते हैं, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर मशीन, या एक और नई मशीन अभी आई है HFNC यानी हाई फ्लो नेजल कैनुला।
0: अच्छा,
1: ये मशीन है जिसमें Airvo 2 के नाम से आती है और CPAP मशीन है, तो ये मशीन है जिनको बच्चे जो थोड़ा जिनकी कम सांस खराब है
0: जी।
1: अगर इन मशीनों पे मेंटेन हो जाते हैं तो वेंटिलेटर से बचाने के लिए इन मशीनों का इस्तेमाल करते हैं।
0: अगर हम उपलब्धता की बात जानना चाहें तो ये सारी मशीनें क्या डॉक्टर बरेली में उपलब्ध हैं?
1: हाँ नहीं नहीं, ये सारी मशीन हमारे यहाँ उपलब्ध है।
0: अच्छा,
1: एक ECMO को छोड़ के।
0: अच्छा,
1: ECMO को छोड़ के ये सारी मशीनें उपलब्ध है और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जैसे वेंटिलेटर्स भी मेरे यहाँ करीब 20-22 वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं, CPAP मशीन भी 8-10 CPAP मशीन है, HFNC भी 8-10 मशीनें हैं। तो ये इन मशीनें सब उपलब्ध हैं और इन मशीनों से इलाज में बड़ा कहना चाहिए जो एक परंपरागत तरीके थे उनके अब आज के तरीकों में बहुत फर्क आ गया।
0: डॉक्टर साहब, चूंकि आपके यहाँ तो नवजात शिशु ही आते हैं ज्यादातर इलाज के लिए, प्री मैच्योर भी आते हैं, मैच्योर भी आते हैं, सर्जरियन बेबी भी आते हैं, तो अगर हम सफलता की बात जानना चाहें कितना सफल इलाज आज हो पा रहा है जो बच्चे जन्म के समय ही किसी न किसी समस्या से।
1: देखिए, 2-3 चीजें हैं सफलता के लिए जरूरी है कि बच्चा हमें सही समय पे मिल जाए।
0: अच्छा,
1: जो बच्चे हमारे शहर से दूर पैदा होते हैं या इंटीरियर पैदा होते हैं, अनअटेंडेड पैदा होते हैं कि डाई पैदा हो रहे, मतलब डाई हैंडल्ड है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, गांव में अगर बच्चा नॉर्मल पैदा हो रहा है, बच्चे को कोई रुकावट नहीं हुई तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बच्चा फंस गया
0: अच्छा,
1: किसी कारणवश से बच्चे पैदा नहीं हो पाया तो फिर समस्या हो गई, फिर वो ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर हो गई, उसमें दाई कई बार खींचतान करती हैं, या फिर वो अगर ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर होने के बाद भी सीजरिन हुआ तब भी बच्चे का पता नहीं किस हालत में बच्चा मिले, किस हालत में निकले, तो उसके लिए जरूरी है कि आप पहले से माँ का चेकअप कराते रहें और चेकअप के साथ साथ कोशिश ये रहे कि आप ऐसे अस्पताल में डिलीवरी करें जहाँ पे बच्चे के
0: नवजात शिशुओं का इलाज करने का माहिर कोई डॉक्टर जरूर,
1: अगर डॉक्टर नहीं भी हो तो मतलब वो शहर में हो तो ये कि सुविधाएं पहुंच जाएं जल्दी से जल्दी, और पैदा होने के बाद इन बच्चों को अननेसेसरी ज्यादा ठोकरा ठाका ना जाए, ज्यादा मारा पीटने की कोशिश ना करें, रुलाने की कोशिश ना करें, कई बार ये जैसे पिक्चरों में उल्टा लटका देते हैं
0: जी,
1: या
0: जी,
1: फिर
0: जी।
1: बच्चे को पीठ पे खूब तेज मारते हैं या पैर, वो नहीं करना चाहिए, और प्रीमेच्योर बच्चे उनको बहुत इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे ठंडे ना हो।
0: अच्छा,
1: बच्चे का तापमान बने रहे तो उनको आप किसी पॉलीथीन में पॉलीथीन बैग आते हैं जिनमें आप नवजात शिशु को अंदर रख सकते हैं।
0: अच्छा।
1: जिससे उसका टेम्परेचर कम नहीं हो, है ना, तापमान कम ना हो।

0: और बच्चे को हाइपोथर्मिया ना हो,
1: जी
0: और उसके दौरान, या फिर आप हमारे यहाँ एम्बुलेंस है जिसमें वेंटिलेटर, सीपैप और ये सारी मशीनें उपलब्ध हैं,
1: यानी ऐसे एम्बुलेंस भी आज उपलब्ध हैं
0: जी, आप हमें कॉल कर सकते हैं, एम्बुलेंस बुला सकते हैं, तो हमारी टीम वहाँ पे जा सकती है और जब बच्चे की पैदाइश हो रही है तो वहीं से ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है।
1: अच्छा।
0: बच्चे को पैदा होने के तुरंत बाद बच्चा अगर एक सुरक्षित हाथों में आ जाए और हमें वहाँ पे मिल जाए तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है कि बच्चा ठीक हो जाए,
1: यानी इलाज में जो देरी एक वजह बनती है बच्चे की तकलीफ बढ़ाने में, वो देरी भी कम करने के साधन उपलब्ध है, वेंटिलेटर जो है वो एम्बुलेंस में भी उपलब्ध हो गए। क्या डॉक्टर साहब समस्याएं आती है उन बच्चों को जिन्हें पैदा होते ही कि बच्चा अगर रोए ना ढंग से या बच्चा उस समय सांस न ले पाए, तो ऐसे बच्चों का भविष्य क्या होता है?
0: देखिए, अगर कोई बच्चे पैदा होने के बाद नहीं रोया, इसका मतलब बच्चे का जो इस धरती पर जो आगमन है वो ठीक से नहीं हो पाया। उसको पैदा होने के तुरंत बाद बच्चे को जोर से रोना चाहिए।
1: अच्छा।
0: और बच्चा बिल्कुल गुलाबी रंग का हो जाना चाहिए।
1: अच्छा, इतना रोए कि वो गुलाबी रंग का,
0: गुलाबी रंग का हो जाए
1: जी।
0: और बच्चे को अगर ठीक से नहीं रोया तो उसके जो दिमाग को ऑक्सीजन मिलती है पैदा होने के बाद वो नहीं मिल पाती है। बच्चा जब तक माँ की पेट में है तब तक तो उसको सब चीजें ऑक्सीजन है, उसका जो न्यूट्रिशन है वो माँ से मिल रहा है, लेकिन पैदा होने के तुरंत बाद अगर उसकी अपनी व्यवस्था ठीक से नहीं हुई तो वो सब चीजों से वंचित रह जाता है।
1: अच्छा।
0: और जब दिमाग को अगर ऑक्सीजन 2-3 मिनट प्रॉपर ना मिले तो दिमाग को नुकसान होने लगते हैं। तो उस समय नुकसान ना हो, एक नई पद्धति या एक नया तरीका शुरू हुआ इन बच्चों का, थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: जिसमें पूरे बच्चे को हम ठंडा करते हैं।
1: अच्छा।
0: ठंडा करने से ये फायदा होता है कि बच्चे के शरीर की जो जरूरतें हैं वो कम हो जाती हैं।
1: अच्छा।
0: और बच्चे के जो ब्रेन में फ्री रेडिकल्स हैं और बच्चे के जो डैमेज होता है, जो दिमाग को नुकसान होता है, वो नुकसान कम हो जाता है अगर इन बच्चों को हम शुरू में 72 घंटे ठंडा करें, जिसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं, थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया। इसकी मशीनें हमारे यहाँ उपलब्ध है।
1: अच्छा
0: जी,
1: आपने पहले तो ये कहा कि बच्चा ठंडा नहीं होना चाहिए, अब आप
0: ये बहुत बड़ा सवाल है
1: कि आप ठंडा करते हैं, ऐसा क्यों डॉक्टर?
0: जो टर्म बेबी हैं जिनका वजन सही है,
1: मतलब अच्छा।
0: जो नवजात शिशु समय से पैदा हुए हैं, उनको अगर बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, मतलब वर्थ एस्फिक्सिया है, तो उन बच्चों को हम लोग ठंडा करते हैं।
1: अच्छा, अच्छा। ना विशेष परिस्थितियां होती हैं जब बच्चे को ठंडा करना होता है।
0: और बाकी जो बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं, प्री मेच्योर है, प्री टर्म बेबी है, उनको ठंडा नहीं करते है ना। जो बच्चे 2 किलो से ऊपर होते हैं उन्हीं को ठंडा करते हैं, और खासतौर से जो बच्चे पैदा होने के बाद नहीं रोते हैं, जिनको एस्फिक्सिया हो जाता है, जिनको वर्थ एस्फिक्सिया बोलते हैं या हाइपोक्सिया बोलते हैं।
1: आपने डॉक्टर साहब कई बातें बताई थी जो हमारे श्रोता से आप बात कर रहे थे। आपने कहा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि म्यूकेनियम पास कर देते हैं माँ के पेट में, गर्भ में ही, जिस थैली में वो रहते हैं उसमें, और वही उनके फेफड़ों में चला जाता है, उनके अलग सिम्टम्स होते हैं। वहीं कुछ बच्चे सांस नहीं ले पाते, उनकी सांस में दिक्कत आती है, बच्चे करहाने लगते हैं, किनहाने लगते हैं। तो ये सारी परिस्थितियों के विषय में थोड़ा सा ये जरूर बताएं कि अगर ऐसे हालात किसी बच्चे के साथ रहे हैं तो बाकी का जीवन उसका कैसा हो जाता
0: है। देखिए, अगर किसी बच्चे को वर्थ एस्फिक्सिया, सीवियर वर्थ एस्फिक्सिया हो गया, हाइपोक्सिया हुआ
1: जी,
0: और उसका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ, तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा होती है कि उस बच्चे को सेरेब्रल पैल्सी हो जाए। सेरेब्रल पैल्सी क्या है, एक दिमाग का जो कास है वो प्रॉपर नहीं होता और बच्चे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। वो बच्चे देर से बैठते हैं, देर से चलते हैं, देर से उठते हैं, देर से बोलते हैं,
1: जीवन ही अभिशाप जैसा।
0: जी जी, अभिशाप हो जाते हैं और वो हमेशा के लिए कहते हैं कि बच्चा अगर पैदा होने के बाद नहीं रोया तो जिंदगी भर फिर माँ बाप को रोना,
1: बच्चों का जीवन अभिशाप न होने,
0: अभिशाप न हो जाए, और फिर माँ बाप को हमेशा के लिए एक सिरदर्दी हो जाती, रोना हो जाता है कि उनका बच्चे को ये परेशानी है कि बच्चा चल नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, अपने आप खा पी नहीं पा रहा, बच्चे को कई बार दौरे पड़ने लगते हैं, शरीर के किसी हिस्से में नुकसान होने लगता है, या उसके हाथ पैर टाइट हो जाते हैं और बच्चा टो वॉकिंग हो जाती है। तो सेरेब्रल पैल्सी होने के खासतौर से हाइपोक्सिया वाले बच्चों को बहुत ज्यादा चांस होते हैं।
1: इन सब परिस्थितियों से बचाने के लिए चिकित्सा जगत ने जो नए अनुसंधान किए हैं, जिन मशीनों का जिक्र किया आपने, ये सब मशीनें उन समस्याओं को जीवन में आने से रोकती हैं, नियंत्रित करती हैं। निश्चित ही अगर समय पर बच्चों का इलाज हो जाए और जन्म के तुरंत बाद एक चिकित्सक की देखरेख बच्चे को मिल जाती है, अच्छे चिकित्सक की जो कि नवजात शिशुओं का विशेषज्ञ, तो जीवन दुष्कर
0: देखरेख के साथ साथ मशीनों की बहुत आवश्यकता होती है।
1: लेकिन डॉक्टर साहब, मैन बिहाइंड द मशीन,
0: ये बहुत जरूरी, सही कहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो मशीन को चलाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मशीन नुकसान भी दे देगी अगर प्रॉपर सही से नहीं उतारा गया। तो इन मशीनों को चलाना भी बहुत प्रॉपर तरीके से करना होता है, और उनको आपको अपने स्टाफ को पूरी ट्रेनिंग देनी होती है, पूरा उस मशीन के बारे में सिखाना होता है कि मशीन कैसे चलेगी, क्या है, क्या इसका रोल है। और तो

0: ये भी एक बहुत बड़े, सिर्फ मशीन को ले लेना आवश्यक नहीं है, मशीन को सही तरह से चलाना भी बहुत
1: जी
0: आवश्यक
1: बिल्कुल
0: है, और मैन बिहाइंड मशीन जो आप कह रहे हैं वो
1: जी
0: बहुत जरूरी बात है,
1: जी
0: क्योंकि अगर मशीन को चलाने वाला ठीक नहीं, मशीन कितनी भी अच्छी हो
1: जी
0: वो ठीक काम नहीं
1: कुशल
0: करेगी, तो
1: संचालन ही अच्छे
0: हाँ
1: परिणाम दे
0: जी
1: पाता है,
0: जी
1: यहाँ ये बात तय हो जाती है। डॉक्टर साहब, कई बातें हर बार छूट जाती हैं।
0: जी
1: अल्ट्रासाउंड की बात की जाती है बहुत छोटे बच्चों की, तो छोटे बच्चों में या नवजात शिशुओं में जो अल्ट्रासाउंड की प्रक्रिया है वो क्यों अपनाई जाती है, कौन से हालात होते हैं, और क्या ये अल्ट्रासाउंड मशीनें भी कुछ अलग होती हैं?
0: देखिए, जो अल्ट्रासाउंड मशीन होती है इनको बेड साइड अल्ट्रासाउंड हम लोग करते हैं, उससे कई फायदे होते हैं।
1: जी
0: एक तो आप प्रॉपर लंग का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, ब्रेन का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, और साथ में आप इको मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन मिक्स भी आती हैं, जिनमें आप बच्चे का इको मतलब बच्चे की दिल की भी जांच कर सकते हैं, तो जो कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम है वो आप पहचान सकते हैं, और आपका जो हार्ट की एक्टिविटी है, दिल की कॉन्ट्रेक्टिलिटी कैसी है, दिल किस क्षमता से काम कर रहा है,
1: जी
0: उसका इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है, तो वो आप पता कर सकते
1: डॉक्टर
0: हैं।
1: साहब, चूंकि समय सीमित है, अभी भी बहुत से प्रश्न बाकी रह जाते हैं, इतनी ज्यादा मशीनों की चर्चा हमें करनी थी आज, भविष्य में जरूर इनके विषय में भी बात करेंगे। अंत में हम जरूर चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को एक खास बात आज के कार्यक्रम से बताएं, एक खास मैसेज दें, ताकि जो नवजात है जिसने अभी आंखें खोलनी है संसार में या खोल ली है, वो सुरक्षित जीवन जी पाए, क्या खास बात कहना चाहेंगे?
0: देखिए, मैं सभी श्रोताओं को, खास तौर से माता पिता को और घर में जो दादी दादा नाना नानी हैं, उनको बताना चाहूँगा, वो कम से कम इतना जरूर सीख लें कि ये पहचान लें कि बच्चा उनका सामान है या नहीं है।
1: नहीं,
0: अगर एक जो सामान्य बच्चा होता है उसको माँ का दूध पीना चाहिए पैदा होने के तुरंत बाद, दूसरा दूध पी उस बच्चे को 24 घंटे के अंदर टट्टी पेशाब का लेना चाहिए, बच्चे का रोना होना चाहिए, बच्चा सुस्त नहीं होना चाहिए, और बच्चे का बेवजह बहुत अधिक रोना भी नहीं होना चाहिए, और बच्चा को दौरे वगैरह ऐसी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, बच्चे का तापमान नॉर्मल होना चाहिए, बच्चे को अगर हम छुएं तो हमेशा बच्चा गर्म लगना चाहिए, मतलब
1: ये
0: उसका
1: सामान्य
0: हाँ
1: लक्षण है।
0: ठंडा बच्चा नहीं लगना चाहिए।
1: इसके विपरीत अगर कोई
0: हाँ,
1: परिस्थिति
0: इसके
1: है,
0: विपरीत बच्चा किनारा है, बच्चा कराह रहा है, उसकी सांस बहुत तेज चल रही है, उसकी सांस में गड्ढे पड़ रहे हैं, बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, या दूध पीने में उसे ओछू या फंदा पड़ रहा है,
1: तो ये मान
0: हाँ,
1: लें
0: और
1: कि बच्चे
0: पेशाब
1: को
0: बहुत
1: तकलीफ
0: कम
1: है
0: हो रही है, या
1: जी।
0: बच्चे को लैटिन नहीं हुई, बच्चे का पेट फूल गया है, या बच्चा सफेद लगने लगा, या बच्चा बहुत अधिक पीला हो गया है,
1: जी
0: या शिशु नीला होने लगा, तो ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक लक्षण है, या कहीं से ब्लीडिंग होने लगी है बच्चे को, तो उस बच्चे को बिल्कुल भी गांव में इंतजार न करें, तुरंत एक बहुत अच्छे नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ को दिखाएं और उसके देखभाल में ही बच्चे को रखें।
1: यानी हमारी जागरूकता ही हमारे बच्चों का
0: जी जी
1: भविष्य उज्जवल बना सकती है। हमें विश्वास है डॉक्टर साहब कि आपकी बताई हुई बातें हमारे श्रोता जरूर मानेंगे, और जब भी विपरीत परिस्थितियां उन्हें उत्पन्न होती दिखाई देंगी किसी नवजात शिशु के साथ, तो उसका उचित इलाज कराएंगे। डॉक्टर कुलदीप गंगवार, आप हमारे स्टूडियोज में आए और हमारे श्रोताओं को नवजात बच्चों के इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की भूमिका के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पांडे जी, आपको सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
3: गंगवार हॉस्पिटल, निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
2: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा,
3: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी,
2: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड,
3: सांस नियंत्रण के लिए सीपैप वेंटिलेटर, HFNC और ईयर वो मशीनें,
4: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए बिना खून निकाले पीलिया की जांच,
3: खास तरह के वेंटिलेटर, HFO ऑक्सीलेटर, थेरेप्यूटिक हाइपोथेरेमिया बाय
5: की पूर्व संध्या पर माननीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की बातचीत सुनिए।
6: हमारी भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा में हम यह पाते हैं कि जब कोई बड़ा हमें आशीर्वाद देता है तो यही कहता है आयुष्मान भव। यह आयुष्मान भव की परंपरा हमारी पुरातन परंपरा में से एक है जो आज तक चली आ रही है। गुरुओं द्वारा देवी देवताओं की जब हम स्तुति करते हैं तब भी यही अपेक्षा करते हैं आयुष्मान भव का हमें आशीर्वाद मिले। और इसी आयुष शब्द से जो हमारे ऋषि महर्षि प्रतिपादित किए हैं एक स्वस्थ रहने की कला और स्वस्थ रहने की उपायों को जड़ी बूटियों के माध्यम से या उनके निकले हुए अर्क से हमें प्राप्त होते रहे हैं, और हम दीर्घायु होने के लिए जो कुछ प्रयत्न हो सकते हैं उस दिशा में आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन आयुष मंत्रालय भी अब भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। सौभाग्य की बात यह है कि आज हमारे बीच में माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष डॉक्टर

0: दया शंकर मिश्र दयालु जी हैं, और दयालु जी के बारे में आप लोग जितना जानते होंगे मंत्री के रूप में, उससे पीछे की थोड़ी सी बात हम करना चाहेंगे कि आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी डिग्री धारक हैं बॉटनी में। इस पीएचडी बॉटनी करते समय भी आपने आयुष के क्षेत्र में, यानी आयुर्वेद के रूप में कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, उसमें काफी कुछ कार्य किया है, काफी उपलब्धियां रही हैं। प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य के साथ साथ आप शिक्षा को प्रगति का मूल मानते हैं, शिक्षाविद के रूप में आपकी जो पहचान है उसे भी हम लोग बखूबी जानते समझते हैं। इसी बीच स्वागत करते हैं मंत्री साहब आपका, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हमारे श्रोताओं के लिए कि आज हमारे बीच हैं, आपके शब्दों आपकी वाणी से हम दो चार होने की कोशिश के क्रम में आपसे जानना समझना चाहेंगे कि क्या स्थिति है आयुष की अपने प्रदेश में।
1: सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनका नारा है विरासत भी विकास भी।
0: जी,
1: आयुर्वेद हमारी विरासत है। आयुर्वेद ही नहीं बल्कि आयुष की जितनी भी विधाएं हैं ये सब बिखरे हुए थे, बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर उन्होंने आयुष के रूप में एक माला पिरोने का काम किया। 9 नवंबर 2014 को जब इस देश में पहली बार वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आयुष के सारी विधाओं को, होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, इन सारी विधाओं को उन्होंने आयुष से जोड़ते हुए एक मंत्रालय का गठन किया। तो आपको पता है कि इस देश में पहली बार, चूंकि हृदय स्थल प्रदेश माना जाता है इस देश की, कहीं ना कहीं से आत्मा उत्तर प्रदेश में बसती है, भगवान राम, भगवान कृष्ण और शिव की नगरी उत्तर प्रदेश में ही है, जन्मस्थली है भगवान लोगों की। सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में जब हमारे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो 2017 से उसकी पारी आयुष की उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, और तब से लेके ये पिछले 9 वर्षों की यात्रा है आयुष की उत्तर प्रदेश में, और 12 वर्षों की यात्रा है केंद्र में मंत्रालय बनने के बाद से। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से ही 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र के 177 देशों ने इस विश्व योग दिवस को मान्यता प्रदान किया, और आज भारत की एक उस विधा को योगियों की, ऋषियों की, महर्षियों की, मुनियों की, साधकों की, तपस्वियों की, इस विधा को जिसको कहते थे योग योगियों की चीज है, उसको सारी दुनिया ने स्वीकार किया। हम इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं, और उत्तर प्रदेश का तो गौरव है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी योगी हैं। तो इन 12 और 9 वर्षों की यात्रा प्रदेश के लिए हम बड़े गौरव से कह सकते हैं कि एक सब कुछ बिखरा था। हम स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत जो है लोग काम करते थे, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बनने के बाद से हमारे भी सपनों को पंख लगे, और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 3959 से ज्यादा हॉस्पिटल हमारे पास है, 2111 अस्पताल हमारे आयुर्वेद के हैं, जिसमें 4 बेड के, 15 बेड के, 25 बेड के, 30 बेड के, और मंत्रालय बनने के बाद प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, उत्तर प्रदेश के अब तक 16 जिला मुख्यालयों पर 50 बेड के इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल बन चुके हैं, नए जो बन रहे हैं। पुराना मैंने कहा कि 2111 अस्पताल पुराने आयुर्वेद के हैं, 1585 हॉस्पिटल पुराने होम्योपैथ के हैं, 258 हॉस्पिटल हमारे पास यूनानी के, जो पुराने अस्पताल हैं। जब से मंत्रालय बना तो फिर हमने उसको नए को, क्योंकि हमको अपनी जमीन पे ले जाना था, अपने कैंपस में उसको शिफ्ट करना था, चाहे वो पीएससी में हो, सीएससी में हो, ग्राम समाज की जमीनों पर हो, किराए के भवन में हो, दान की जमीनों पर हो, तो वह जो परिवर्तन, देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम वेलनेस की बात करें, हम रोग और इलाज की तरफ न जाके हम व्यक्ति को निरोग और स्वस्थ रखने के लिए उसके वेलनेस की बात करते हैं, तब फिर सारी विधाएं मिल के काम कर रही हैं। अब इंटीग्रेशन पे काम हो रहा है। हमारे जितने मेडिकल कॉलेज थे उत्तर प्रदेश में, 19 राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 8 मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद के हैं, 9 मेडिकल कॉलेज होम्योपैथ के हैं, 2 मेडिकल कॉलेज यूनानी के हैं, और 2 नए मेडिकल कॉलेज हमारे उत्तर प्रदेश में नए मिले हमको, बल्कि आप कहिए 3 मिले। एक आयुर्वेद का नया मेडिकल कॉलेज अयोध्या में बन के तैयार है, और एक बरेली में यूनानी का मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के शिलान्यास की हम लोग समय मांग रहे हैं, जिस दिन मिलेगा वो ओपन हो जाएंगे। काशी में चूंकि पहले से आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज था तो वहाँ एक होम्योपैथ का मेडिकल कॉलेज बन रहा, तो 21 मेडिकल कॉलेज मैंने आपसे बताया कि वो इंटीग्रेटेड अस्पताल 16 जिले के मुख्यालयों पर बन चुके हैं, 8 हमारे अस्पताल जिसमें 4 इनॉग्रेट होने जा रहे हैं, शिलान्यास जिनका होने जा रहा है, 4 भी बहुत जल्दी वो भी मिल जाएंगे। तो हर वर्ष अब तक करीब 1000 से ज्यादा हम अपने पुराने अस्पतालों में, जैसे 4 बेड के जो हमारे अस्पताल हुआ करते थे, उनको आयुष वेलनेस सेंटर के रूप में परिवर्तित कर चुके हैं। 225 योग वेलनेस सेंटर अब तक हम नए भवन, नए परिसर में बना चुके हैं। और जगह की आपने, मैंने कहा कि वो समस्या थी, तो अब बहुत सारी जमीनें जैसे जैसे मिलती जा रही हैं,

0: वैसे वैसे
1: वैसे
0: आगे
1: वैसे
0: बढ़ते
1: हम
0: हैं।
1: अपने नए सेंटर्स बनाते जा रहे। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक चिकित्सा का कोई अस्पताल नहीं था, तो काशी में प्राकृतिक चिकित्सा का एक सेंटर, वो भी मात्र 2 महीने बाद, मुझको लगता है कि वो भी शिलान्यास के लिए तैयार है। आयुष का विश्वविद्यालय नहीं था, विश्वविद्यालय न होने से हमारे पढ़ाई प्रभावित होती।
0: इस विश्वविद्यालय से क्या जितने कॉलेजेस का आपने नाम लिया आयुष
1: जी,
0: से जुड़े हुए हैं, इनकी संबद्धता भी उसी से हो गई है या फिर अलग अलग और
1: 19 राजकीय
0: विश्वविद्यालय?
1: मेडिकल कॉलेज और 86 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 105 मेडिकल कॉलेजों का एफिलिएशन वो हमारे विश्वविद्यालय से हो गया। अब उनकी परीक्षाएं, उनकी कापियों का जांचना, उनका रिजल्ट का बनना, सब कुछ विश्वविद्यालय के तहत हो गया, आयुष विश्वविद्यालय के साथ
0: बहुत
1: हो
0: बढ़िया,
1: गया।
0: इंटीग्रेटेड हो गया एक जगह
1: अब
0: से क्या
1: सब
0: कि
1: एक
0: सब
1: जगह
0: कुछ।
1: हो
0: हाँ
1: गया
0: हाँ
1: और बहुत सारे डिग्री और डिप्लोमा के कोर्सेज भी विश्वविद्यालय ने शुरू कर दिया, पीजी शुरू कर दिया, यूजी की मान्यता मिल गई, अब यूजी भी शुरू हो जाएगा। तो एक फुल फ्लेज्ड काम करने वाला विश्वविद्यालय
0: जी,
1: उत्तर प्रदेश में आयुष का मिल चुका
0: जब
1: है।
0: आपने विश्वविद्यालय की बात कर ही दी और उस पर हम आना चाह रहे थे, लेकिन आपने पहले बता दिया और अच्छी बात है कि एक विश्वविद्यालय अब हो चुका है, तो फिर रिसर्च की भी संभावनाएं ज्यादा जगेंगी। और इस दिशा में कार्य करने के लिए अपना उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से सटा होने के कारण काफी कुछ संसाधन ऐसे हैं, औषधीय पौधों के आधार पर वहाँ रिसर्च भी हो सकता है, नई नई जो दवाएं हो सकती हैं विकसित करने के, कहने को तो सीमैप भी है, सीडीआरआई भी है, लेकिन राज्य स्तर पर कुछ इसका प्रयास?
1: देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष भी बजट में अपने 3 नए अय्या बोल,
0: जी
1: इसके पहले अय्या दिल्ली में और अय्या जयपुर में, उन्होंने इसके पहले 2 अय्या और उद्घाटन कर दिया, एक गोवा में बन चुका है। तो आयुर्वेद के नए इंस्टीट्यूशन की स्थापना लगातार हो रही है और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथ कलकत्ता में है, उसकी सब ब्रांच दिल्ली में खुल गई, उसकी एक सब ब्रांच लखनऊ में खुल गई और एक केंद्रीय संस्थान आयुर्वेद का वो पहले से झांसी में काम कर रहा है आयुर्वेद का। हम सबका प्रयास ये है, अखिल भारतीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी वो गाजियाबाद ने बन के काम करना शुरू कर दिया। तो हर विधा के शोध पर लगातार
0: कार्य हो
1: काम हो
0: रहे हैं।
1: रहा है और शोध के बगैर दुनिया आजकल प्रमाण चाहती है, लेकिन जिस विधा का जन्म वेदों से हुआ हो, अथर्ववेद की उपशाखा
0: जी
1: मानते हैं आयुर्वेद को, हम महर्षि सुश्रुत से दुनिया ने कभी नहीं पूछा कि आपने जो पहली सर्जरी किया उसके पीछे
0: जी
1: आधार क्या था, उसके पीछे किस इंस्टीट्यूट का। तो उनको भी आज भी मॉडर्न मेडिसिन भी उनको फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहती है,
0: बिल्कुल
1: महर्षि सुश्रुत को, वो भी उत्तर प्रदेश में काशी में जन्मे थे। चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, और जितने भी, चाहे वो महर्षि नागार्जुन का काम हो, चाहे वो जितने भी लोगों ने इस विधा में काम किया है, उनके लिए उनकी शरीर ही प्रयोगशाला थी, समाज पे काम किया, वर्षों वर्षों की साधना के बाद, तपस्या के बाद। सिद्ध हमारा एक विषय है जिसके महर्षि अगस्त, उनकी भी जन्मस्थली उत्तर प्रदेश और काशी है, तो उस महर्षि अगस्त की एक विधा है सिद्ध।
0: जी,
1: उस सिद्ध के बारे में यह है कि सिद्ध किसने इंट्रोड्यूस किया, तो सिद्ध सिद्धों ने, जो सिद्ध पुरुष थे, साधकों ने, वर्षों की तपस्या का ये परिणाम है। ये हमारे ऋषि मुनियों के जीवन की, वर्षों की साधना। योग क्या है? योग हमारे योगियों के अपने को स्वस्थ और निरोग रखने के, जो योग और आसन ध्यान इन सब का वो सहारा लेते थे, प्राणायाम, उसी योग को प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से
0: जी
1: मान्यता मिली।
0: मान्यता मिली है और जन जन तक ये उसको पहुंचाने में आप लोगों का जो योगदान रहा है उसको भी भुलाया नहीं जा सकता है। अभी अब 21 जून की तारीख बिल्कुल सामने है हमारे, इसमें अगर योग की बात हम आगे बढ़ाना चाहें तो ये पूछना चाहेंगे आपसे कि इस बार ये कहा जा रहा है कि जो सरोवर हैं गांव गांव में बने हुए उस पर भी योग शिविर लगाए जाएंगे, जैसे वेलनेस सेंटर की बात आपने कही कि गांव गांव तक पहुंच चुके हैं, तो ये अमृत सरोवरों पर ये है कि 21 तारीख को सब लोग योग करेंगे, इसकी क्या तैयारी शासन प्रशासन की
1: देखिए,
0: तरफ से भी अलग
1: अब
0: से है
1: तो
0: क्या?
1: पूरा देश इसमें जुड़ जाता है, संसार जुड़ जाता है, दुनिया के 177 देश योग करते हैं। विश्व योग दिवस के दिन की भी विशेषता है कि वो 365 दिनों का सबसे लंबा दिन होता है, योग दिवस का 21 जून, और 21 जून को सारा संसार आपको योग करता दिखाई देता है। तो क्या नदी, क्या तालाब, क्या पोखर, क्या सरोवर, क्या नदियों का किनारा, क्या पौराणिक स्थल, क्या धार्मिक स्थल, जितने भी ऐतिहासिक, काशी में अगर वो होता है तो भगवान गौतम बुद्ध की उपदेश स्थली, भगवान गौतम बुद्ध को स्वरूपा का जन्म माना जाता है,
0: जी
1: जो देश के पर्वतीय अंचलों में कश्मीर से लेकर लाहौल स्पीति घाटी से होते हुए हिमाचल होते हुए पूर्वोत्तर राज्यों तक एक विधा प्रचलित है, जिसको
0: बिल्कुल
1: स्वरूपा कहते हैं। उत्तर प्रदेश को एक और सम्मान अभी हुआ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने काशी में तिब्बती विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में स्वरूपा का बहुत ही एडवांस हॉस्पिटल उन्होंने अभी देश को, उत्तर प्रदेश को दिया है। तो हर विधाएं अब मिल के समाज को स्वस्थ और निरोग बनाए रखने के लिए, मन को, शरीर को, आत्मा को खुश बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए, आप उसकी सबसे बड़ी ताकत योग

0: होगा है, और योग कहीं भी किया जा सकता है। और ये जो नदियों का आह्वान है, पौराणिक स्थलों का आह्वान है, ऐतिहासिक स्थलों का आह्वान है, शहर के पार्कों में है, गांव के मंदिरों पर है, तो जहां व्यक्ति एकत्र हो सके, जहां उसको बैठना, जहां नेचर हो, जहां प्रकृति हो, शुद्ध सुबह की हवा मिले उसको, तब उसकी प्राणवायु जब उसको मिलेगी तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी और वह स्वस्थ मन से, अच्छे मन से योग करेगा। और एक दिन का योग नहीं, ये तो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, जैसे सप्ताह व्यापी, इसके पहले हम लोग 1 महीने का शेड्यूल बनाते थे, 15 दिन का शेड्यूल बनाते थे। तो योग को अपने जीवन शैली में शामिल करना
1: शामिल करना
0: है,
1: है।
0: योग को अपनाना है। योग सिर्फ एक दिन करने से कोई व्यक्ति स्वस्थ निरोग नहीं होगा,
1: बिल्कुल
0: लेकिन जब आपने उसको अपने जीवन में अपना लिया तो निश्चित ही आपका मन, आपका शरीर, आपका तन, और कहते हैं ना कि आत्मा तक आपकी खुश होगी, पवित्र होगी, शुद्ध होगी, और एक अच्छे मन से, एक अच्छे स्वस्थ नागरिक के रूप में आप इस देश के हित में काम कर सकेंगे।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। और मुझे लगता है कि जिन शब्दों का प्रयोग आपने किया है, इन शब्दों को सुनते हुए या प्रस्तुत करने की जो कला आपके पास है, इसी से मंत्रमुग्ध होकर के आदमी योग तो करेगा ही करेगा, आयुष्य भी जुड़ेगा। क्योंकि बॉटनी से पढ़ा हुआ छात्र अगर साहित्य और संस्कृत की भी बात बेहतर ढंग से रख सके, बेहतर ही नहीं बहुत अच्छे ढंग से, उसके लिए तो फिर सुनने को जी चाहता ही है। और सुनते रहने की बाध्यता हमारी यहीं समाप्त हो जाती है क्योंकि समय की सीमा में हम लोग बंधे रहते हैं। अब आकाशवाणी से तो आप जानते ही हैं, छोटेपन से ही सुनते रहे होंगे। फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर आपसे अपेक्षा होगी कि आप हमारे स्टूडियो इसी तरह से पधारेंगे और आयुष के तमाम जो इसके बिंदु हैं
0: ये
1: उन पर
0: हजारों
1: भी।
0: साल की विरासत है,
1: इसीलिए
0: देश के
1: तो
0: प्रधानमंत्री जी ने उसको विकास में उपयोग किया
1: अब
0: है।
1: काशी का जन हमारे बीच है तो बार बार तो वो अपेक्षा होगी ना कि हाँ हमारे साथ साथ जुड़ते रहें। बहुत अच्छा लगा वास्तव में, और आपकी वाणी के जो भी ये शब्द हमें प्रेरित कर सकते हैं वो बहुत प्रेरित कर रहे हैं। और लोगों से भी अपेक्षा, अपने श्रोताओं से, कि आप आयुष को अपनाएं, अपनी जीवन शैली को बेहतर से बेहतर
0: करें,
1: बनाएं।
0: योग रहे निरोग का नारा देते हुए
1: बिल्कुल,
0: अपनी
1: आपका
0: बात
1: ये
0: समाप्त
1: नारा
0: करिए।
1: पहले से भी चल रहा है, आप
0: जी
1: द्वारा दिया जा रहा है, तो और प्रभावी होगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ कि आपसे पुनः मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की बातचीत। ये विशेष कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: आपन माहे बहार कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोकगीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो।
2: सुनिए कहानी कविताएं नाटक मिलिए बाल प्रतिभाओं से और रूबरू होइए बाल दोस्तों की कला से। साथ ही खुलेगा मनोरंजन जानकारियों का पिटारा होगा बाल दोस्तों की बातों का चटखारा। सुनिए हर रविवार दोपहर 12 बजे आकाशवाणी लखनऊ के मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज न्यूज ऑन AIR और DTH के द्वारा। तो सुनना ना भूलिएगा अपना ये कार्यक्रम प्यारा बाल मंच।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी लीवर हार्ट कॉर्निया इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है बढ़ रही है जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है व्यर्थ मनुष्य डरता है।

0: दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इसमें सुनिए कबीर वाणी, कलाकार हैं जगजीत।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह के स्वर में कबीर वाणी। इसी के साथ सुगम संगीत का एक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडिया वेब पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं फिल्म शिकारी के इस गीत से। आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की है, शब्द रचना फारूक कैसर के और संगीत जीएस कोहली।

उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

0: कार्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: और अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम ससुराल, शब्द रचना शैलेंद्र के, संगीत शंकर जयकिशन का। एक सब

0: ब्लैक कैट फिल्म के लिए यह आवाज़ थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, गीत जानिसार अख्तर का और संगीत एन दत्ता का। इसी के साथ चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करवा दिन
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का

0: नेतृत्व करते रहे।
1: यह हमारे आंतरिक कामना।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
2: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
2: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों

0: मैं तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
2: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: We have been able to achieve that in the first.
5: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
4: They are all designed in India now.
3: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
6: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन मिशन कर रहे हैं।
3: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष

0: क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। रात्रि के 9 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। ये स्वर है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है त्रिशूल। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार हयाम।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था त्रिशूल। कार्यक्रम का अगला गीत नौशाद साहब का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लता मंगेशकर की आवाज, और ये फिल्म है साथी।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था साथी। इसी आवाज को सुनिए, फिल्म का नाम है लव इन टोक्यो। गीतकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में ये था हसरत जयपुरी का लिखा गीत, स्वर मोहम्मद रफी का था और फिल्म का नाम था यकीन। लता मंगेशकर की आवाज है फिल्म उलझन के लिए।

ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था उलझन। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है यादों की बारात। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत राहुल देव बर्मन का है।

इस युगलगान के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अद्भुत यादें।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे निर्माता और निर्देशक पर जिसने अपनी फिल्मों में जिंदगी के यथार्थ को दिखाया।

बासु भट्टाचार्य का जन्म सन 1934 में कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार कासिम बाजार पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। बहुत बचपन में जब बासु भट्टाचार्य ने सत्यजीत रे की फिल्में देखी तो उनका फिल्मों से लगाव बढ़ गया। खास तौर पर 1956 में आई फिल्म अपराजितों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और उन्होंने ये तय कर लिया था कि जीवन में वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे कि फिल्मों में काम करने की स्थिति बन जाए।

0: सना।
1: वासु भट्टाचार्य जब मुंबई आए तो उनका मकसद था राज कपूर के साथ काम करना, क्योंकि आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया।

बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय की फिल्म टोली में एज असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हो गए। सन 1958 में आई मधुमती और सन 1960 में आई फिल्म सुजाता में बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय के सहायक निर्देशक रहे।

जाहिर है कि अब बासु भट्टाचार्य का फिल्म करियर धीरे धीरे अपनी दिशा ले रहा था। इसी बीच जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने फिल्म बनाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने चुनी एक अनमोल कृति, हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु की मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम।

फिल्म तीसरी कसम का निर्माण शुरू हुआ और इसके लिए बासु भट्टाचार्य को बतौर निर्देशक चुना गया। जो बासु भट्टाचार्य राज कपूर के साथ फिल्में बनाना सीखना चाहते थे, आखिरकार उनकी फिल्म यात्रा एक तरह से राज कपूर के साथ ही शुरू हुई और उन्होंने फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर को डायरेक्ट किया। तीसरी कसम के बनने में कई परेशानियां आईं। इस फिल्म का निर्माण एक तरह से संघर्षों से भरा रहा था, पर यह फिल्म हिंदी की एक कालजयी फिल्म साबित हुई। फिल्म तीसरी कसम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ था। चलत

देश विदेश में फिल्म तीसरी कसम की बहुत ज्यादा तारीफ हुई। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने सन 1966 में ही एक और फिल्म बनाई, उसकी कहानी। मुख्य कलाकार थे अंजू महेंद्रू और दीना पाठक।

बनाई अनुभव। साल 1971 में आई फिल्म अनुभव के मुख्य सितारे थे संजीव कुमार और तनुजा। बासु भट्टाचार्य की खासियत रही है वैवाहिक रिश्तों की जटिलता और वैवाहिक रिश्तों के तनाव पर वो बहुत बारीक काम अपनी फिल्मों में करते रहे हैं। फिल्मों के जानकार ये कहते हैं कि बासु भट्टाचार्य ने जीवन में वैवाहिक संबंधों की पड़ताल पर एक ट्रायोलॉजी बनाई है और 1971 में आई फिल्म अनुभव इसी ट्रायोलॉजी का यानी इस फिल्म त्रयी का पहला हिस्सा साबित हुई।

बासु भट्टाचार्य को ये समझ में आ गया था कि उनकी एक खास तरह की शैली है, फिल्में बनाने का उनका अपना एक खास मुहावरा है, और इसीलिए बासु भट्टाचार्य ने अपनी तरह का सिनेमा बनाया। मुंबई में फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए उन्होंने अपनी

फिल्म अनुभव के गीत गुलजार ने रची और इसका संगीत कनू रॉय का था। गीता दत्त की आवाज में इस फिल्म के गाने जैसे दिल को चीर डालते हैं।

सन 1972 में फिल्म अनुभव को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने एक फिल्म बनानी शुरू की डाकू, पर वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई। अनुभव से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में बासु भट्टाचार्य संजीव कुमार की बजाय इस फिल्म में प्राण को लेना चाहते थे। उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था, पर उन्हें लगा कि संजीव कुमार इस फिल्म के लिए बेहतरीन साबित होंगे और उनका यह विश्वास रंग लाया। फिल्म अनुभव एक बेमिसाल फिल्म मानी जाती है।

जैसा कि हमने कहा, बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता के एक अनमोल फिल्मकार हैं। अनुभव के बाद वैवाहिक संबंधों पर उनकी एक और फिल्म आई आविष्कार। आविष्कार बड़े सितारों से सजी फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने काम किया था। एक बार फिर संगीतकार थे कनू रॉय।

राजेश खन्ना को इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनय का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ था। राजेश खन्ना की करियर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्थक फिल्म मानी जाती है आविष्कार।

सन 1976 में बासु भट्टाचार्य ने फिल्म संगत बनानी चाही। हालांकि ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और सन 1979 में बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की पेचीदगी पर अपनी तीसरी फिल्म लेकर आए गृह

0: अनुभव, आविष्कार और गृह प्रवेश, ये तीन ऐसी फिल्में हैं जिनके जरिए वासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता की जांच करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं और उसके अलग अलग आयामों को सामने लाते हैं। संजीव कुमार उनके प्रिय सितारे थे, वही फिल्म गृह प्रवेश में नजर आए, साथ में शर्मिला टैगोर और सारिका। गुलजार ने इस फिल्म के गाने लिखे थे।
1: वो

0: वासु भट्टाचार्य की फिल्में अपनी कहानी, अपनी जटिलता और अपने संगीत के लिए खास तौर पर याद की जाती हैं। वासु भट्टाचार्य ने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने जो फिल्में बनाई वो अपने आप में संपूर्ण हैं। वो ऐसी फिल्में हैं जो जीवन के यथार्थ को दर्शाती हैं। सन 1986 में उनकी एक फिल्म आई पंचवटी। पंचवटी में दीप्ति नवल और सुरेश ओबेरॉय मुख्य सितारे थे। सार्थक फिल्मों की दुनिया में फिल्म पंचवटी एक महत्वपूर्ण फिल्म के तौर पर याद की जाती है। यहां एक बात और आपको बता दें, सन 1979 में वासु भट्टाचार्य निर्माता बने और उन्होंने सई परांजपे की फिल्म प्रोड्यूस की स्पर्श, नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी के बेमिसाल अभिनय वाली फिल्म स्पर्श समानांतर सिनेमा आंदोलन की एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है।
1: सच, आपकी संस्था से जो मैंने पाया है वो मैं कभी बता नहीं पाऊंगी।
2: और आपका आना संस्था के लिए कितना फायदेमंद हुआ है ये मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत खुश हैं आजकल बच्चे, जैसे पहली बार उन्हें ममता मिली हो।
0: सन 1997 वासु भट्टाचार्य ने अपनी आखिरी फिल्म बनाई आस्था। मुख्य सितारे थे रेखा, ओमपुरी और दिनेश ठाकुर।

जून 1997 को इस असार संसार को छोड़कर एक लंबी यात्रा पर चले गए बासु भट्टाचार्य। बासुदा इस दुनिया से विदा हो गए, पर रह गया उनका सिनेमा, उनका वो सिनेमा जो मानवीय संबंधों की पड़ताल करता है। ये वो सिनेमा है जो अपनी तरह से निराला है और इसीलिए लोग इन फिल्मों को खोज खोज कर देखते हैं और एक फिल्मकार के रूप में बासु भट्टाचार्य को याद करते हैं। वैसे बासु भट्टाचार्य का सबसे बड़ा योगदान कुछ फिल्म समीक्षक तीसरी कसम को मानते हैं। तो अब आपसे विदा लेने से पहले तीसरी कसम में कही गई ये सीख।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी निर्माता निर्देशक बासु भट्टाचार्य पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: ये है विविध।
1: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक करमहे का शास्त्रीय गायन।
2: नमस्कार, इन टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर गोइंग टू ब्रॉडकास्ट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय डॉक्टर विवेक करमहे।
1: सुरों के प्रति अगाध समर्पण और रागों की शुद्धता जब किसी साधक के कंठ से प्रस्फुटित होती है तो संगीत का एक नया अध्याय जन्म लेता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाशदीप पर ऐसा ही एक दैदिप्यमान नाम है डॉक्टर विवेक करमहे। 15 से अधिक वर्षों के अनवरत रियाज और देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों से आपने शास्त्रीय संगीत जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
2: When profound dedication of musical notes and the purity of ragas spring forth from the voice of a devotee practitioner, a new chapter in music is born. One such radiant name shining on the firmament of Indian classical music is Dr. Vivek Karmahe. With over 15 years of relentless practices and spellbinding performances on prestigious stages in India and abroad, he has left an indelible mark on the world of classical music.
1: स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता तथा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विवेक ने पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर, विदुषी गिरिजा देवी, श्री ओंकार दादरकर और श्रीमती कुमुदिनी मुंदकुर जैसे महान संगीत मनीषियों के सानिध्य में इस कला की सूक्ष्मताओं को आत्मसात किया है। आकाशवाणी के ए ग्रेड प्राप्त कलाकार डॉक्टर विवेक जब तानसेन समारोह और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित समारोह जैसे ऐतिहासिक मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले डॉक्टर विवेक आज के दौर में शास्त्रीय गायन की एक प्रखर और प्रेरक आवाज है।
2: A gold medalist at both the undergraduate and postgraduate levels and honored with a doctorate in music, Dr.

0: awake assimilated a subtle nuances of this art under tutelage of great musical maestros such as Padma Shri Pandit Ulhas Kashalkar, Vidushi Girija Devi, Shri Onkar Dadarkar and Shrimati Kumudini Mundukur. An A-grade artist of All India Radio, when Dr. Vivek showcases his art of historic stages like the Tansen Samaroh and Pandit Krishnarao Shankar Pandit Samaroh, the listeners are left utterly spellbound. Proudly flying the flag of Indian culture from Bhutan, Nepal and Sri Lanka to South Africa, Mauritius and United Arab Emirates. Dr. Vivek is a brilliant and inspiring voice of classical vocal music in today's era.
1: Dr. Vivek कर रहे अपनी गायन की शुरुआत राग श्री से कर रहे हैं। विलंबित रचना तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं वारी जाऊं रे तुम पे। द्वित रचना तीन ताल में है, जिसके बोल हैं चलो रे माई राम सिया दर्शन। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा।
0: डॉक्टर विवेक करमहे इज कमेंसिंग हिज रिसाइटल विथ राग श्री। द विलंबित कंपोजिशन इज सेट टू तिलवाड़ा ताल विद द लिरिक्स वारी जाऊं रे तुम पे। द द्रुत कंपोजिशन इज इन तीन ताल विद द लिरिक्स चलो रे माई राम सिया दर्शन। Accompanying him on the harmonium is Ravindra Killedar and on tabla is Nishant Sharma.

0: राग श्री में अभी आपने सुना डॉक्टर विवेक करमहे का गायन। डॉक्टर विवेक करमहे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित रचना एक ताल में है जिसकी बोल है कौन गत भई। द्रुत रचना भी एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है बेग बेग बेग बेग आओ।
1: You were just listening to Dr. Vivek Karmahe's rendition in Raag Shri. Dr. Vivek Karmahe is now going to present Raag Bageshri. The Vilambit composition is in Ektal with the lyrics Kaun Gat Bhai. The Drut composition is also set to Ektal with the lyrics Beg Beg Beg Beg Aao.

0: ये था डॉक्टर विवेक करमहे का गायन राग बागेश्री। डॉक्टर विवेक करमहे अपने गायन का समापन राग सोहिनी से कर रहे हैं। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है देख देख मन ललचाई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है रंग न डारो श्याम जी।
1: That was Dr. Vivek Karmahe's vocal rendition in Raag Bageshri. Dr. Vivek Karmahe is concluding his recital with Raag Sohini. The Madhyalay composition set to Teen Taal has the lyrics Dekh Dekh Man Lalchai. And the Drut composition set to Teen Taal has the lyrics Rang Na Daro Shyamji.

0: डॉक्टर विवेक करमहे के द्वारा प्रस्तुत ये था राग सोहिनी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was Raag Sohini presented by Dr. Vivek Karmahe. Accompanying him were Ravindra Killedar on harmonium and Nishant Sharma on tabla. This program was presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भावे दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS

आग्रह का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।